मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 14 अक्टूबर 2026। स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं सुबह के 5:56 और अब आरंभ हो रही है हमारी प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए कुछ ही देर में हिंदी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6ठें चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत

0: कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आराधना। माँ दुर्गा शक्ति, श्रद्धा और विश्वास का वह स्वरूप जिनके स्मरण मात्र से मन को शांति और हृदय को संबल मिलता है। माँ के प्रति भक्तों की आस्था ऐसी है कि कोई उन्हें शेरों वाली कहकर पुकारता है तो कोई उनके दरबार में पहुँचने के लिए उनके बुलावे का इंतज़ार करता है। हिंदी फिल्मों में भी माँ की महिमा को अनेक मधुर गीतों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ऐसे ही कुछ भक्तिमय गीतों के साथ आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको पहला गाना फिल्म सुहाग से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत सुनिए फिल्म अवतार से, आवाज़ है आशा भोसले की, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

अगला गीत सुनिए फिल्म भक्ति में शक्ति से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, बोल इंद्रजीत सिंह के और संगीत है सोनिक ओमिका।

0: अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प।
1: आइए हर घर फहराएं तिरंगा।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्रायोजित कार्यक्रम ग्लो एंड लवली मेरे अंदाज में है कुछ खास, सुनिए प्रतिदिन दोपहर 1:55 से इसी चैनल।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम विचार बिंदु, जिसमें आप सुनेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू से संबंधित विचार को।
1: पंडित मोतीलाल नेहरू नेहरू परिवार के सर्वप्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय संवेदनशीलता, जातीय गौरव एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरूपण का एहसास अपने युग में सबसे पहले किया और उतनी ही गहन भावना के साथ अपने संपूर्ण सामंती सुखों तथा राजसी ठाट बाट का सहजता से परित्याग कर राष्ट्रीय सार्वजनिक संघर्ष के जीवन को स्वीकार किया। स्वातंत्र संघर्ष के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान का उनके जीवन काल में ही अद्वितीय स्थान द्रष्टव्य है। राष्ट्रीय स्वातंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उनकी गिनती महात्मा गांधी और देशबंधु सीआर दास के साथ की जाती है। भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनका प्रमुख वैचारिक योगदान ये है कि उन्होंने भारत में संसदीय जीवन की स्थापना की और एक परिष्कृत सांसद के रूप में भारत के संसदीय जीवन में यथार्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं का सर्वथा उन्मुक्त विकास किया। श्रमपत्र उन्हीं द्वारा रखी गई नींव पर ही हम संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना में समर्थ हुए हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू का राजनीति के क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था और न ही कोई उनकी समानता करता था। प्रथित और परंपरित मान्यताओं के क्षेत्र में वे अंधविश्वास, ओझा, जादू टोना एवं असत्य प्रदर्शन के घोर विरोधी थे। वो निर्भीक योद्धा के रूप में राजनीति और धर्म दोनों ही क्षेत्र में अकृत्रिम सुधार एवं निर्बाध प्रगति के सच्चे समर्थक थे। राष्ट्रीय जीवन में सदैव अग्रणी रहकर संग्राम में रत रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि वो जातीय स्वाभिमानी से परिपूर्ण संवेदनशीलता को प्रतिहत करने वाला कोई भी कार्य सहन नहीं कर सकते थे। वो निर्मम विरोधी और उदार विजेता थे जिनके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति उनके उत्साही स्वभाव से अप्रभावित नहीं रह सकता था।

उनकी संवेदनशीलता इतनी सुदूर क्षेत्र तक फैली हुई थी कि भारतीय होने के स्वाभिमान तक को वो किसी प्रकार आँच नहीं आने देते थे। अद्भुत कुशलता, प्रदर्शन, तीव्र बुद्धि, प्रभावशाली और मधुर अभिव्यक्ति, वाद विवाद की प्रतिसंहारक शक्ति एवं विरोधियों के कमज़ोर पक्ष का आश्रय लेकर उन्हें परास्त करने में तो वो अप्रतिम समझे जाते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू भारतीय संस्कृति और उसकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता में बड़ी गहरी आस्था रखते थे। उनका विश्वास था कि भारतीय संस्कृति मनुष्यों और राष्ट्रों को शांति दे सकती है। प्रकारांतर से वास्तविक अर्थों में वो सभ्यता के पुजारी थे। उनके अनुसार सभ्यता का अर्थ है मनुष्य के महत्व को समझा जाए और लोग आपस में मिलजुल कर रहें। इस भांति पंडित मोतीलाल जी गर्व से परिपूर्ण दृढ़ निश्चयी विचारों के व्यक्ति थे, जिनका जीवन निर्भीकता, त्याग और अनन्य देशभक्ति के मिश्रित गुणों का संगम था। भारतीय राष्ट्रीय स्वातंत्र संघर्ष का जीवंत प्रतिबिंब था और उन्होंने इस संघर्ष की सफलता में अनिवार्यनीय योगदान दिया है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें बातचीत है डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी से और विषय है खेतों की मेड़बंदी एवं मृदा परीक्षण से लाभ।

आज हम किसान भाइयों के साथ चर्चा कर रहे हैं मेड़बंदी एवं मिट्टी परीक्षण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेड़बंदी बहुत ही व्यापक है कि कृषि योग्य उपजाऊ क्षेत्र की जो जमीन है उसको घेराबंदी करते हैं, चारों तरफ से मेड़ तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमारी खेती योग्य जमीन का से जो भी पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो बहकर बाहर न जा सकें, हमारे खेत का पानी खेत में रहे, हमारी उपजाऊ जमीन जो पोषण तत्व हैं वो सब जमीन में रहें, हमारे खेत में रहें। ऐसी धारणा के तहत मेड़बंदी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम मेड़बंदी नहीं करेंगे तो वर्षा का जो पानी है वो बहुत तेजी के साथ जमीन पे बहाव लेता है और उसके कारण जो है मिट्टी का क्षरण भी होता है। मिट्टी के क्षरण से गलियां बन जाती हैं और जिसमें हम खेती करते हैं वो हमारी जमीन जो ऊपरी सतह की जो उपजाऊ भूमि होती है वो बह करके जो है और नदी नालियों में चली जाती है और हमारी जमीन जो है खराब हो जाती है, हम जैसे खेती नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मेड़बंदी के जो है हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक तो छोटे छोटे खेत बना लें, श्रम परिहार के द्वारा हम जो है उसको चारों तरफ से मेड़ बना लें, एक फुट की ऊंची, जो वर्षा का पानी होगा वो हमारे खेत में एकत्रित हो जाएगा। दूसरा हम प्रयत्न ऐसा कर सकते हैं, पूरे गांव सभा की सभी लोग सामूहिक प्रयत्न से हम यदि मेड़बंदी का काम लेते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। इस कार्य के हेतु जो भी सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, कुछ संस्थाएं इस कार्य में बहुत ही तेजी से संलग्न हैं। जैसे पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का सामना वहां की जनता कर रही है, तो जनता और पुरुषार्थ के आधार पे सभी लोगों ने एकजुटता दिखा करके मेड़बंदी का काम सामूहिक प्रयत्न से कर रहे हैं। और दूसरी एक जो व्यवस्था है कि ये जो हमारी ढालदार जमीन है उस जमीन पे भी हमारी वर्षा का जो पानी है वो बह करके तेजी से जाता है और हमारे ऊपरी हिस्से में पानी जो है कम उपलब्ध हो पाता है, नमी कम उपलब्ध हो पाती है। ऐसी स्थिति में जो ढाल के

दिशा में नीचे के क्षेत्र पे हम एक 2 फुट चौड़ी और 3 फुट गहरी सुविधा के अनुसार यदि हम नाली बना करके उसकी मिट्टी जो है वो मेड़ बना दें, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप यदि हम करते जाएंगे तो हमारे जो वर्षा का पानी है उसका जो वेग है, जो उसका प्रभाव है, वो जो बहुत तेजी से पानी बहता हुआ जा रहा है उसको हम रोक सकते हैं, और उसका प्रभाव हमारे जो जमीन के अंदर जो पानी है उस पानी की क्षमता को भी बढ़ा सकता है, और पानी को फसलों के लिए भी सिंचाई या उसके जो बहाव जो है उसको प्रभावित कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह से जब हम खेती करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी खेती में हमारी उपज में वृद्धि होती है, और पानी का जो एक समस्या दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है उस समस्या से हम निराकरण भी कर सकते हैं। इन जलाशयों को, इन पानी का जो वर्षा आधारित है उनको जलाशयों में भी हम एकत्रित कर सकते हैं, छोटे से तालाब के रूप में मीवी बना करके पानी का संचय करें, और वक्त बेवक्त वो पानी हमको सिंचाई के काम में आ जाता है। अब बात ये उठती है कि

का जो एक समस्या दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है, उस समस्या से हम निराकरण भी कर सकते हैं। इन जलाशयों को, इन पानी का जो वर्षा आधारित है, उनको जलाशयों में भी हम एकत्रित कर सकते हैं। छोटे से तालाब के रूप में मीवी बना करके पानी का संचय करें और वक्त बेवक्त वो पानी हमको सिंचाई के काम में आ जाता है। अब बात ये उठती है कि मिट्टी परीक्षण क्या है, मिट्टी परीक्षण की अवधारणा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि परंपरागत कृषि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज की वर्तमान की जो परिस्थिति, जो समस्या निर्माण हो रही है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जो हमारी भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण जो है अन्य धान की उपलब्धता, उच्च क्वालिटी की उपलब्धता जो है उसकी कमी हो रही है। साधारणतः हम देखते हैं यदि हमारी जो जमीन है, उस जमीन में जो एक अच्छी जमीन है उसकी जो संरचना जो होती है उसमें लगभग 45% जो है मिनरल पाए जाते हैं, 20 से 25% हवा होती है और 25 से 30% तक जो है उसमें पानी रहता है, 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर उस जमीन में पाई जाती है जो बहुत स्वस्थ और उपजाऊ जमीन होती है। साधारणतः हम जब इस स्थिति को जो आकलन करते हैं, उसका मृदा का, मिट्टी का जो विश्लेषण करते हैं, तो सामान्यतया हम पा रहे हैं कि जो हमारा ये ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है, वो 5% तो नहीं, 0.05% तक पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जहां पे 5% होना चाहिए, 0.05% ये आ जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी जमीन जो है वो बीमार हो रही है, उसमें समस्याओं से ग्रसित हो रही है। उसके निराकरण के लिए हम सबको, किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है। क्यों जागरूक होने की जरूरत है? क्योंकि साधारणतया जब हम खेती करते हैं तो खेती करते समय हमारी जमीन में फसलों की आवश्यकता क्या है, जमीन में उपलब्धता क्या है, इसका सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि हम नहीं बिठाते हैं तो किसी उर्वरकों की अधिक मात्रा, किसी उर्वरकों की, रासायनिक उर्वरकों की कम मात्रा हम फसलों को देते हैं, और हम आप देखते हैं कि साधारणतः फसलों के वृद्धि और विकास में लगभग 16 प्रकार के पोषक तत्व तो हैं कि जो फसलों के विकास में सहायक होते हैं। और हम आप बिना परीक्षण के आधार पे यदि हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें किसी न किसी तत्व की कमी और अधिकता हो जाती है, जिसके कारण हमारी उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है और उत्पादन हमको प्राप्त। शासन की भी मंशा है, पिछले 5 वर्षों से लगातार इस पर प्रयत्न किया जा रहा है कि हर किसान के पास उनका सॉयल हेल्थ कार्ड तैयार हो, किसान उसके आधार पे, उस मृदा परीक्षण के आधार पे फसलों का चयन करें और उसमें दी हुई संस्तुतियों को फसलों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे कि उनके उत्पादन बढ़ सके और उत्पादन खर्च उनका कम हो सके। हम देखते हैं कि किसान भाई इस विषय पे थोड़ा सा जागरूक नहीं होते हैं, वो कहते हैं साहब क्या मिट्टी परीक्षण करना, कैसे करना, ये सब एक समस्या, जबकि ये प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, वो सभी लोग मिलकर के किसानों की मिट्टी परीक्षण का काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार उनके साथ प्रयत्न करते हैं, फिर भी किसान जो है उसमें जागरूकता नहीं दिखाते हैं। मैं एक आपके सामने एक उदाहरण कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में किसी अवयव की कमी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो डॉक्टर के सलाह पे हम अपनी खून की जांच कराते हैं और अन्य विभिन्न प्रकार की जांच कराते हैं, डॉक्टर उसके आधार पे हमारा इलाज करते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन आप विचार करिए कि यदि हमारी जमीन, हमारा जो भूभाग है जिसपे हम खेती कर रहे हैं, जिसपे हमारा पूरा विश्व निर्भर है, यदि वो जमीन अनुपजाऊ हो जाएगी तो उस दशा में हम सभी को अन्य धान उपलब्ध कराने में अक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए हम हमारी खेती को, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, आय को दुगुना करने के लिए, उत्पादन खर्च को कम करने के लिए, जो लगातार अंधाधुंध खादों का प्रयोग हो रहा है उसको कम करने के लिए मिट्टी परीक्षण एक करा करके ही फिर हम फसलों के आधार पे जो जिन भी किसी तत्वों की कमी है या जिनकी अधिकता है उसके आधार पे, संस्तुति के आधार पे हम फसलों को दे करके हम उत्पादन क्षमता अपनी बढ़ा सकते हैं। अब बात यह आती है कि मिट्टी का नमूना कैसे लें, क्योंकि ये बहुत ही विषय आसान है लेकिन इसका जो वैज्ञानिक विधि है उस वैज्ञानिक विधि से ही मिट्टी का के लिए जो नमूना लेने की आवश्यकता, समझिए एक हमारा जो है भूभाग है, एक किसी भी एक सर्वे नंबर पे हम बैठे हुए हैं, 2 बीघा 4 बीघे 5 बीघे का हमारा रकबा है, उस हम रकबे से जिस प्रकार से एक सांप सर्पिलाकार ढंग से पूरे कहीं पे भी घूमता है, या अंग्रेजी का जो जैसे हम जेड लिखते हैं उस जेड

0: आकार में हमारे जो भी सर्वे नंबर जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र से मिट्टी का नमूना लेना है। अब मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, खुरपे के आधार पे, खुरपी के आधार पे या फावड़े के आधार पे हम बी आकार के एक गड्ढा बनाते हैं। पहले तो एक सीधा फावड़ा मारते हैं, फिर तिरछा फावड़ा मारते हैं और उस बीज की बीज बी आकार जो बन जाता है उसकी बीज की मिट्टी हम पूरी तरह से हटा देते हैं। फिर ऊपर से नीचे तक उसको छीलते हुए ज्यादातर नीचे के हिस्से की मिट्टी जो है एक तसले में भर लेते हैं। यही प्रक्रिया हम जो है 10-12 स्थान पे, 15 स्थान पे कम से कम उसको करना चाहिए और वो सारी मिट्टी हमको इकट्ठा कर लेनी चाहिए। केवल इसमें सावधानी रखने की बात यह है कि हमारी मिट्टी किसी छायादार स्थान पे ना हो या जहां पे हमने गौशाला बनाया हुआ हो या यहां पे जानवर रहते हो, ऐसे स्थान का चयन ना करें, वहां से हम मिट्टी ना प्राप्त ना करें। बांध से लगभग 2-3 मीटर दूर रख करके हम मिट्टी का नमूना लें, सम्मिश्रण कर लें, उसका 4 भाग निकालें, कूड़ा कचरा सब निकाल दें। तत्पश्चात उसमें हम मिट्टी को अच्छी तरह से छान करके और 4 भाग निकाल करके बाकी हिस्सा निकाल दें। आधा किलो मिट्टी, खेत का नाम, किसान का नाम, कौन सी फसल लिया है और कौन सी फसल हम लेंगे, ये सारी जानकारियां लेकर के नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में आप मिट्टी दे दें। आपकी मिट्टी की जांच करके आपको उसका उसके आधार पे आपको फसलों का चयन बता दिया जाएगा। यदि किसान भाई इस तरह से मिट्टी परीक्षण के आधार पे चाहे जो भी फसल हो, धान दलहन हो, तिलहन हो, सभी का खेती उसके आधार पे संस्तुतियों के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन खर्च कम होगा। और
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसका विषय है सर्दी जुकाम का आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर मोनिका अग्रवाल।
2: क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें ये देखने को अक्सर मिलता है कि हमारे पास पेशेंट चल के आता है और हमसे ये बोलता है कि सर जैसे मौसम बदलता है हमें सर्दी जुखाम छींक आना शुरू हो जाती है। अब ऐसे इस वक्त पे एक चिकित्सक के रूप में आपको मैं जो 3 सलाह दे सकता हूँ उसको जानने से पहले आपको इनके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के कारण बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। बच्चे का कारण बिल्कुल अलग हो सकता है, यौवन में अगर आप हैं, युवावस्था में हैं, तो आपका कारण बिल्कुल अलग हो सकता है और प्रौढ़ावस्था में बिल्कुल अलग कारण हो सकता है। पर मूलतः जनरल वे में 3 ऐसे कारण जो हमें दिखते हैं, वो सबसे पहला होता है लो इम्यूनिटी। अगर आपका प्रारंभिक अवस्था से ही खान पान बहुत ही सादा रहा है, व्हेन आई से सादा इट मींस कि जो आपको खाना चाहिए वो उपलब्ध नहीं रहा है, उससे आपके ओज बल डेवलप नहीं होता। ओज मतलब होता है किसी भी व्याधि से लड़ने की क्षमता, अगर वो डेवलप नहीं हुई है तो उससे आपको हर मौसम में झेलना पड़ सकता है। दूसरा सबसे जरूरी चीज होता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज हैं। जैसे कि एक मजदूर है राइस मिल में काम करता है या फिर सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है, उसका इन्वायरमेंट बहुत कुछ उसकी हेल्थ के बारे में बताता है। उसका खान पान कितना भी अच्छा हो जाए, अगर इन्वायरमेंट टॉक्सिक है तो उस पे उसका शरीर का असर आता ही आता है। और तीसरा होता है आपको अनुवांशिक तौर पर जो व्याधि मिली है उसको आपका शरीर कैसे झेलता है, कैसे बल करता है। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी से बस आपको चलने का तरीका ही नहीं मिला है, उनकी कभी कभी कुछ व्याधियां भी आपको मिलती हैं, कुछ वीक ओजबल भी प्रदान होता है। तो 3 कारण जानना बहुत जरूरी है। अब आपने अगर कारण जान लिया तो आपको इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि हम तात्कालिक वे में क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हमारा ये जो लो इम्यूनिटी है जिससे हमें सर्दी जुकाम हो रहा है ये ठीक हो जाए। आयुर्वेद आपके लिए एक बहुत छोटा सा सिद्धांत बोलता है, कहने को छोटा है पर है बहुत ही विराट। वो ये है, हर 2 मास की जो ऋतु होती है उसका एक चाल चलन होता है, एक तरीका होता है। जैसे कि स्कूल में आप जाते हैं एक प्रोटोकॉल होता है, वैसे ही हेमंत ऋतु का, शरद ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वसंत ऋतु का एक प्रोटोकॉल होता है 2 मास का। अब हमें इस प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं दिसंबर के महीने में लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जुबान को पसंद है, स्वादिष्ट लगती है उन्हें। अब ऐसा कहीं भी आपको कोई भी डॉक्टर नहीं सलाह देगा कि ठंड के महीने में आप आइसक्रीम पसंद कीजिए, आपको अगले दिन निश्चित तौर पर सर्दी जुकाम होना ही है। आयुर्वेद मानता है कि जितनी भी व्याधियां होती हैं इसी प्रज्ञापराध से होती हैं। आपको पता है कि वो आपको काम नहीं करना चाहिए पर फिर भी आपको काम करते हैं। बाहर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है पर फिर भी आप एसी 28 पे नहीं करेंगे, आप 18 पे एसी करेंगे। आपको पता है कि कोई भी व्याधि आपका इंतजार कर रही है, बस वो इंतजार कर रही होती है आपकी गलती करने का, और वो गलती हम कर ही रहे होते हैं, इसी को प्रज्ञापराध बोलते हैं। तो इन प्रज्ञापराधों से आपको बचना चाहिए। इसके लिए आपको इसके परिणाम के बारे में पता होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि इंसान को अपनी गलती से ज्यादा दूसरे की गलती से देख के सीखना चाहिए, तो अगर आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें बीमारी हो रही है, तो आप उन्हें समझिए और अपने आप को सतर्क कीजिए, अपने परिवार को सतर्क कीजिए। दूसरा, ऐसे बहुत से खाने हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं उस ऋतु में, जैसे ठंडी तासीर की कुछ चीजें होती हैं और गर्म तासीर की चीजें होती हैं।

के मौसम में अगर आप ठंडी तासीर की चीजें खाएंगे आपको निश्चित तौर पे बीमारी होगी, और गर्मी में अगर आप सिरका अचार खाएंगे आपको निश्चित तौर पे बीमारी होगी, वो आपके ओझ बल को कमजोर करता चला जाएगा। मैं बात करूंगा ऐसी औषधि की जिससे आप इस पर काम कर सकते हैं, अपने गट पे काम कर सकते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा पाचन होता है उतना तेज उतना प्रबल ओझ बल होता है। ऐसी दिव्य औषधि हम सबके घर में है और वो है सोंठ। सोंठ को हम बोलते हैं विश्व भैषज्ञा संस्कृत में बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसी औषध जो पूरे विश्व विख्यात है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और हर जगह उपलब्ध है हर मौसम में। सोंठ को हम कैसे इस्तेमाल करें? अगर आपको सर्दी जुकाम है तो सबसे पहले उस दिन 24 घंटे का व्रत करें और सोंठ के काढ़े का 6 बार इस्तेमाल करें, 10-10 ml। आप देखेंगे कि अगले दिन अगली सुबह आप अपने ओरिजिनल बल में होते हैं, सर्दी जुकाम अवॉइड कर चुके होते हैं और बुखार भी अगर आपको है तो वो भी आधा हो जाता है। हमारा आदत ऐसी हो चुकी है कि अगर आपको आज बुखार है तो हम तुरंत दवा खा लें और तुरंत शांत हो जाए, भले 6 महीने बाद वो टाइफॉइड में बदल जाए। तो हमें इस आदतों को बदलना पड़ेगा, तब जाके हम अपने शरीर की भाषा को समझ पाएंगे, क्योंकि शरीर की वही भाषा है जो प्रकृति की भाषा है और दोनों की भाषा का तारतम्यता ही आयुर्वेद है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। रात के 9:30 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली के केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। सुबह 7:30 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जिसमें बांसुरी वादन हरिप्रसाद चौरसिया का राग भैरवी में है। दोपहर 12:15 पे आप सुनेंगे सितार वादन शाहिद परवेज का राग तिलक कामोद। रात के 10:30 बजे आप सुनेंगे बांसुरी वादन हरिप्रसाद चौरसिया का राग यमन में।

सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की।

सुबह 11:30 बजे, शाम 5 बजे, रात को 8 बजे और रात को 10 बजे आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

लोकगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, जिसकी प्रस्तुति है अभयकांत तिवारी की और डॉक्टर छाया मिश्रा न्यूट्रिशन से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत।

12:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। और दोपहर 1:15 बजे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं गृह लक्ष्मी। अब आप सुनिए संस्कृत में समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत है सतीश भाटिया का।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्रीराम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए फिल्मों से भजन। पहला भजन सुनिए फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, बोल पंडित नरेंद्र शर्मा के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

अगला गीत सुनिए फिल्म आदि पुरुष से। आवाज़ है साची टंडन और परंपरा टंडन की, बोल मनोज मुंतशीर के और संगीत साची परंपरा का।

0: मणि गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। प्रहरियों और उनके परिवारों को मिलेगा 5,00,000 रुपए सालाना का कैशलेस इलाज। दीपावली के बाद लागू होगा 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट। निःशुल्क रहेंगे व्यक्ति से व्यक्ति के बीच के सभी UPI लेन देन। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ग्राम प्रहरियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बरेली से प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों के लिए 5,00,000 रुपए सालाना कैशलेस इलाज की भी घोषणा की।
1: इन ग्राम प्रहरियों को हम लोग उनको और उनके परिवार को कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। कैशलेस का मतलब आप जानते हैं ना, यानी 5,00,000 रुपए प्रति वर्ष ग्राम प्रहरी और उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य के लिए एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि कोई अगर बीमार हो गया है तो परिवार के लोगों को फ्री में उपचार की व्यवस्था 5,00,000 रुपए की उसको या उनके परिवार के लोगों को 5,00,000 रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर उनको प्राप्त हो जाएगा।
0: मानदेय में 1% की बढ़ोतरी से अब ग्राम प्रहरियों को 2,500 के बजाय 3,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेन देन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा।

0: व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प निर्यात IHGF दिल्ली फेयर 2026 का उद्घाटन किया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय मेले का उद्देश्य देश के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश के हस्तशिल्प कारोबार को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है।
2: पूरी दुनिया में की लड़ाई भी छिड़ी हुई है, आवाजाही में दिक्कत है, फिर भी भारत के अंदर 125 देशों से लोग आए, 23-24% नए लोग आए और 26-27 अप्रैल से जुलाई मेरा एक्सपोर्ट भी लगभग 25% बढ़ा है और हमारा टारगेट है कि हैंडीक्राफ्ट का $1 बिलियन तक ले जाने का।
1: आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आयुष प्रभाग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एक रूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुर्गन ने कल अपने मंत्रालय और राज्यसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
3: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
4: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
3: To strengthen the party.
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन कल उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकाशवाणी से जुड़ सकें।
5: रिव्यू करने की कोशिश की कि हमारी दशा और दिशा, हम केंद्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं, केंद्र कहाँ पर है, किस तरह के प्रोग्राम्स हों, कैसे लोगों से और जुड़ाव करने की कोशिश की जाए और किस तरह से इंजीनियरिंग सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि GST परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
6: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर GST देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। GST परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य GST पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल GST में किए गए नए सुधारों के तहत GST परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि GST के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
7: GST के जरिए हमने

0: के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
2: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है।
1: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में आज सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ, बुढ़िया माई मंदिर, वाराणसी के विशालाक्षी माता मंदिर, जौनपुर के मां शीतला चौकिया धाम, बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ तथा मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में देवी भक्तों की भारी भीड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में मां कुष्मांडा से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि, ऊर्जा और सकारात्मकता के संचार की कामना की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 68,000 ग्राम प्रहरियों का मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। प्रहरियों और उनके परिवारों को मिलेगा 5,00,000 रुपए सालाना का कैशलेस इलाज। दीपावली के बाद लागू होगा 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट। निःशुल्क रहेंगे व्यक्ति से व्यक्ति के बीच के सभी UPI लेन देन। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। बांसुरी वादन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग भैरवी में।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने

0: में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खम्भात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीन फील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले

0: सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
0: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
0: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश

0: मंत्रालय ने कहा, पेजिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, एआई से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट जेई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Rahul trying to save infiltrators and his vote bank, says Shah. Most papers also report on Nandan Nilekani speaking about question paper leaks at the Bloomberg New Economy Forum 2026 in Delhi. The Hindu says, generate questions at last minute to prevent paper leaks, says Nilekani. While the Times of India in a story says, last minute paper generation can kill incentive to leak, says Nilekani. And finally, a story in the Statesman says, 10 to 5 job, desk and a laptop, once a feared Maoist, now university official. The paper adds that 70-year-old M. Venugopal, carrying a bounty of 6 crores on his head, left the Maoist top ranks and walked out to surrender exactly a year ago. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to address Brihattar Bharat International Conference in New Delhi today through video message. BIMSTEC nations strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. External Affairs Minister S. Jayashankar says India-US trade talks are heading in the right direction and a deal is being ironed out. U.S. Secretary of State Marco Rubio to visit India next week to strengthen energy cooperation and strategic partnership. 13 people killed in boat tragedy in Raghopur Diara area of Vaishali district in Bihar. And in cricket, 4th T20 international between India and the West Indies to be played in Hyderabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो वसीले से 73 भारत बैन-उल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बिम्स्टेक मुल्कों ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्ती से मजम्मत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका तिजारती बातचीत सही सिमत में आगे बढ़ रही है और जल्द ही एक समझौता होने वाला है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे, जिसका मकसद तवानाई से मुतालिक तआवुन और दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। बिहार के वैशाली जिले के राघवपुर दियारा इलाके में कश्ती के एक हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। और क्रिकेट में चौथा टी20 बैन अलावामी मैच आज शाम हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सकाफत की वजारत आज से नई दिल्ली में 73 भारत बैन अलावामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसका मौजू है दुनिया भर में भारत की सकाफती राबते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर एक खसूसी वीडियो पैगाम के जरिए इज्तिमा से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 50 मुल्कों के मंदूबीन सफ़ीर और दानिश्वर एकजा होंगे और दुनिया के साथ भारत के तारीखी और मौजूदा दौर के सकाफती रबतों पर बातचीत करेंगे। शुरू का चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल, ईरान, दीगर मुल्कों समेत मुश्तरक सकाफती विरसे और तहसीबी तबादलों पर बातचीत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस वसीतर भारतीय समाज की सदी के मौके पर मनक़द की जाए से 73 भारत परिषद के नाम से भी जाना जाता है, जो 14 अक्टूबर सन 1926 को कोलकाता में कायम किया गया था। ये परिषद भारतीय दानिश्वरों की एक नस्ल ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को अपना रूहानी पेशवा मानकर कायम किया था। कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नुमाइश का भी अहतमाम किया जाएगा, जिसका मौजू है एशिया का मुश्तरक सकाफती विरसा। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
2: बिम्स्टेक मुल्कों के वज़राए खारजा की पहली मीटिंग दिल्ली एलामिया की मंजूरी के साथ अपने अख्ताम को पहुंची। एलामिया में बिम्स्टेक मुल्कों ने सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्ती से मजम्मत की। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: एलामिया में बिम्स्टेक मुल्कों ने अक़वामे मुत्तहदे के मंशूर और बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक दहशतगर्दी के लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और एक जामे और मुस्तकिल अंदाज में उससे लड़ने के अपने अज़्म को दोहराया। उन्होंने एक मरबूत, महफूज और मजबूत, तरक्की याफ्ता और खुशहाल बिम्स्टेक खित्ते को हकीकत की शक्ल देने के इलाकाई तआवुन के अपने अज़्म को भी दोहराया। उन्होंने रुकन ममालिक में दहशतगर्दाना हमलों के मुतासिरीन और उनके कुनबे के अफराद, निज मुतासिरा मुल्कों की हुकूमतों के साथ گہری تعزیت یکانکت کا بھی اظہار کیا. ان ملکوں نے گھریلو اور بین الاقوامی قانون کے مطابق قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کہا. دلی اعلامیے میں انسانوں اور کیمیابی مادے جن سے

0: नशावर अशिया तैयार की जाती हैं, इस काले धन को जायज़ बनाने की रोकथाम के मैदानों में कतई लाह अमल पर मौसर अमल दरामद के लिए भी कहा। यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हममनसब मार्क कार्ने ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में तेज़ी लाने और दिफाई शराकत दारी के अहम मैदानों में ठोस नतायज की जानिब काम करने से इत्तफाक किया है। इन मैदानों में तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और आवाम से आवाम के दरमियान राबते शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर गर्मजोशी के साथ नतीजा खैज बातचीत की। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और कनाडा मजीद मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की जानिब मिलकर तआवुन दे रहे हैं। इस दौरान कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद कल शाम भारत के दो रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अपने दौरे में आज वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुनरमंदी के फरोग व कारोबार के वजीर जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमरीका तजारती मुजाकरात सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और किसी समझौते पर पहुँचने का इम्कान है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए जनाब जयशंकर ने बताया कि दोनों मुल्कों के वज़राए तिजारत इस पर काम कर रहे हैं और दोनों ममालिक तिजारती समझौते से मुतालिक मुज़ाकरात में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका ने खुद को रीपोजिशन किया है और हर मुल्क को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा नई शक्ल देना होगी। उन्होंने वाजे किया कि भारत की अमेरिका के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी है। चीन के बारे में वजीर खारजा ने कहा कि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेकाम में खलल पड़ने के असरात दोतरफा ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में अमन की वजह से ताल्लुकात मामूल पर आ रहे हैं। जनाब जयशंकर ने मजीद कहा कि भारत और चीन सरहदी इलाकों में अमन इस्तेकाम बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने वाजे किया कि भारत और चीन के दरमियान तजारती तवाजुन झुक गया है और बिल्कुल यकतरफा हो गया है। जनाब जयशंकर ने वजाहत की कि भारत को चीन के साथ मुसाबिकती सतह नहीं मिल रही है। रूस पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने वाजे किया कि भारत को कभी इस बात का सामना नहीं करना पड़ा कि रूस से खरीदी गई अशिया चीनी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। नई दिल्ली से पायल शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई से मुतालिक तआवुन और दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाना है। अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि जनाब रूबियो अपने दौरे में मुंबई और जामनगर भी जाएंगे। महकमे ने बताया कि वो भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने, इलाकाई और आलमी हालात व वाक़ात पर तबादला ख्याल करने और तवानाई से मुतालिक मजीद तआवुन के मंजरनामे पर बातचीत के लिए सीनियर सरकारी अफसरान से मुलाकात करेंगे। जनाब रूबियो सरमाए और इक्तसादी तआवुन में इजाफे के लिए सरकर्दा ताजिरों से भी मुलाकात करेंगे। जनाब रूबियो का मई से लेकर अब तक भारत का ये दूसरा दौरा है, जब उन्होंने नई दिल्ली में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत की थी, जिसका अहतमाम वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बिहार के वैशाली जिले के राघवपुर दियारा में कल रात एक कश्ती डूबने के हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। वैशाली की जिला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने नामानिगारों को बताया कि राघवपुर में गंगा नदी में कश्ती के डूबने में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। जान गंवाने वालों में ज्यादातर नाबालिग बच्चे हैं, जो एक दावत में शिरकत के लिए कश्ती से सफर कर रहे थे। हादसे के वक्त कश्ती पर 15 से 20 अफराद सवार थे। 7 अफराद को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में मरने वालों के अहलखाना के लिए 2-2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए फीकस 50,000 रुपये की मदद का ऐलान किया है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने हादसे में मरने वालों के तई ताजियत का इजहार किया है और जान गंवाने वालों के अहलखाना के लिए फीकस 4 लाख रुपये की माली मदद का ऐलान किया है। कोलकाता में जैसे कि दुर्गा पूजा अपने उरूज की जानिब बढ़ रही है, इस त्यौहार में मजीद जोश व खरोश आता जा रहा है। आज चतुर्थी है, इस दौरान रंग बिरंगे पेंडॉल लगाए गए हैं, जिनमें रंग बिरंगी रोशनियों का इस्तेमाल किया गया है। पेंडॉलों को कतई शक्ल दी जा रही है। बंगाली अफराद के लिए दुर्गा पूजा एक त्यौहार से बढ़कर होती है। ये वक्त खुशी मनाने और रिवायती तौर पर यकजा होने का बड़ा मौका होता है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू अपने 2 रोज़ा आंध्र प्रदेश दौरे पर आज विजयवाड़ा पहुँचेंगी। सदर जमहूरिया कल कौमी सरस मेला 2026 का इफ्तिताह करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
0: सदर जमहूरिया आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा करेंगी। वो कल विजयवाड़ा में कौमी सरस मेला 2026

0: साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के सिमत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज इस बात का तस्करा किया जा रहा है कि ढोलेरा जैसे खसूसी सरमायाकारी के इलाज जैसे मंसूबों के जरिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ज़्यादातर सनती शहरों में पहले वसत पैदा होती है और बाद में ये समरते हैं। ढोलेरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नए विजन खम्बात की खलीज पर एक बिल्कुल नया स्मार्ट सिटी, जहां हर प्लॉट फरोख्त होने से पहले सड़कें, पानी, बिजली और इंटरनेट दस्तयाब हों। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैक्ट्री भी ढोलेरा में ही कायम की जा रही है। ढोलेरा के जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ बनने से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा था,
2: हमें ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। ढोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
1: गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ढोलेरा स्मार्ट सिटी और उसके तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे पर रोशनी डालते हुए कहा,
3: ढोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही हैं और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में ढोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: एक तारीखी आबी रास्ते से लेकर भारत के जदीद टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग मुस्तकबिल बनने तक ढोलेरा में दूरंदेशी पर मबनी मंसूबाबंदी और विकसित भारत की अक्कासी होती है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल सरकार ने मदरसा सर्विस कमीशन को स्कूल सर्विस कमीशन में जम कर दिया है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया। रियासती काबीना ने इस फैसले को 5 अक्टूबर को मंजूरी दी थी। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने कुछ ही दिन पहले ऐलान किया था के मदरसे में आइंदा सभी तकर्रुर स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए किए जाएंगे। अकलियती उमूर के वजीर खुदीराम टुडू ने कहा कि इस कदम का मकसद मदरसों में तालीम की मुमताज़ शनाख्त का तहफ़ करते हुए और होनहार उम्मीदवारों के लिए बेहतर मौाक़ फराहम करते हुए असातिज़ा की शफाफ और गैर जानिबदाराना भर्ती को यकीनी बनाना है। किसी शख्स से कारोबारी को मखसूस लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दिवाली के बाद नाफिज होगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अदायगियों से मुतालिक भारतीय कौमी कॉरपोरेशन ने कहा कि UPI और खिदमात से मुतालिक कायमा कमेटी ने यह फैसला किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन की हूसी बागियों को सऊदी अरब पर हमलों से खबरदार करते हुए कहा है कि वो यमन से मुतालिक कोशिशों में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान की शमूलियत की कोशिश कर सकते हैं। ताहम ट्रंप ने इस बात की तस्दीक से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने हूसियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का कोई फैसला किया है। अमरीकी सदर ने ईरान को नाकाम मुल्क करार देते हुए कहा कि वाशिंगटन जल्द ही अपने अगले कदम का फैसला करेगा। खेलों की वजारत ने पैरा निशानेबाजी कोच जयप्रकाश नौटियाल को पैरा एशियन गेम्स के भारतीय दस्ते के कोच के अहदे से हटा दिया है। नौटियाल पर सिलेक्शन बेजाबतगियों का इल्ज़ाम है और उनके खिलाफ जाँच का मुतालबा किया जा रहा है। मर्दों के क्रिकेट में आज हैदराबाद में चौथे T20 बैन अवी मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज़ से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा इनकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेकर चलना 21वीं सदी का तकाजा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दूसरों की किस्मत पर आगे बढ़ने के बजाय सभी को साथ लेकर तरक्की करने पर यकीन रखता है। अखबार ने सऊदी अरब और यमन के हौसी बागियों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के मद्देनज़र भारतीय सफारतखाने की जानिब से जारी एडवाइजरी को भी अहमियत के साथ शाये किया है। भारतीय शहरियों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, घरों में रहें और मकामी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। रोज़नामा प्रताप ने इत्तला'आत और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर मामलकत एल मुरुगन की जानिब से वज़ारती ओहदे और राज्यसभा रुकनियत से इस्तीफ़ा देने की खबर को नुमायां जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो वसीले से 73 भारत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बिम्स्टेक मुल्कों ने सरहद पार से की जाने वाली

नमस्कार प्रयागराज, मैं हूं आपका साथी हिमांशु और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है साइबर क्राइम, सावधानी ही सुरक्षा। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, खरीदारी, टिकट बुकिंग और डिजिटल भुगतान ने हमारा जीवन आसान बनाया है, लेकिन इसी के साथ साइबर अपराध के मामले भी चिंता का विषय बने हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर ठगी की जाती है, कभी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया जाता है, तो कभी फर्जी लिंक के ज़रिए लोगों की निजी जानकारी और पैसे चुरा लिए जाते हैं। तो आखिर साइबर क्राइम क्या है, इससे कैसे बचें और अगर ठगी हो जाए तो क्या करें, आइए जानते हैं। पर इसके पहले आपको सुनाते हैं एक गाना कुमार सानू का, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा।

0: साइबर क्राइम क्या है? जब कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल किसी गैरकानूनी गतिविधि के लिए किया जाता है तो उसे साइबर अपराध कहा जाता है। इसमें ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, अकाउंट हैक करना, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग और निजी जानकारी का दुरुपयोग शामिल है। साइबर अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है, इसलिए जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। साइबर अपराध के कुछ प्रमुख तरीके हैं, जिनमें से एक है फिशिंग। इसमें बैंक या किसी विश्वसनीय संस्था के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर लिंक पर क्लिक करने और निजी जानकारी देने के लिए कहा जाता है। इसी तरह अगर बात करें UPI और OTP फ्रॉड की, तो इसमें ठग बैंक कर्मचारी बनकर OTP, पासवर्ड या UPI पिन मांगते हैं। याद रखें, अपना OTP या UPI पिन किसी के साथ साझा ना करें। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड भी इनमें से एक है। इसमें अपराधी खुद को पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र करने का दबाव डालते हैं। ध्यान रखें, केवल वीडियो कॉल पर किसी अधिकारी होने का दावा करने से उसकी पहचान प्रमाणित नहीं होती। इसके अलावा फर्जी नौकरी, ऑनलाइन निवेश के लालच, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई नकली आवाज़ या वीडियो के जरिए भी ठगी की जा सकती है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: प्रायोजित कार्यक्रम फेयर एंड लवली मेरे अंदाज में है कुछ खास, सुनिए प्रतिदिन दिन में एक

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: इन साइबर अपराधों से बचने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे अपना OTP, UPI पिन, पासवर्ड और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी को ना दें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और संदिग्ध ऐप डाउनलोड ना करें। बैंक या सरकारी विभाग की वेबसाइट पर जाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें। पैसे भेजने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम और राशि जांचें। याद रखें, पैसे प्राप्त करने के लिए सामान्यतः UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। अपने मोबाइल और ऐप्स को अपडेट रखें, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जहां संभव हो अतिरिक्त सुरक्षा यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें। और सबसे ज़रूरी बात, किसी अनजान कॉल पर डर कर या लालच में आकर तुरंत पैसे ना भेजें, पहले जानकारी की पुष्टि करें।

0: आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
1: Blackmail your present to ruin a beautiful future.

और सबसे ज़रूरी बात, किसी और अगर मान लीजिए सावधानी के बावजूद आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है, तो घबराइए नहीं और शिकायत करने में देर मत कीजिए। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। इसके साथ ही भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को भी तुरंत सूचना दें। ट्रांजैक्शन आईडी, संदेश, फ़ोन नंबर और स्क्रीनशॉट जैसे प्रमाण सुरक्षित रखें। अगर कोई व्यक्ति पैसे वापस दिलाने के नाम पर आपसे शुल्क मांगे तो सावधान रहें। शिकायत के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें। तो श्रोताओं, डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाइए, लेकिन सतर्कता के साथ, क्योंकि डिजिटल दुनिया में समझदारी ही सुरक्षा है और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। स्टूडियो की घड़ी में 9 बजने को है। अब से कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो गीत प्रस्तुत है फिल्म पापा कहते हैं से, आवाज़ है उदित नारायण की, बोल जावेद अख्तर के और संगीत है राजेश रोशन का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के।
1: सुनिए अगला गाना, फिल्म कहो ना कहो से आवाज है शान की, बोल जावेद अख्तर के, और संगीत है शंकर एहसान रॉय का।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद सिद्दीकी का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजमंत्री सतीश शर्मा ने इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं परिजनों को फल वितरित किए। राज्यमंत्री ने कहा कि सेवा समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और सामूहिक दायित्व का प्रतीक है। जरूरतमंदों की सहायता करना ही जनसेवा का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से समाज में सेवा एवं करुणा की भावना को सुदृढ़ करने, विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। बाराबंकी में 11 करोड़ की लागत से 4 निबंधन कार्यालयों का निर्माण कार्य किया गया है। विगत दिनों मुख्यालय से सदर कार्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि ये पूरे यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी के निर्देश पर 104 रजिस्ट्री दफ्तरों का कायाकल्प हो रहा है। बाराबंकी को लखनऊ का विस्तार बताते हुए मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि पूर्व सरकार में 15-16 लाख डॉक्यूमेंट होते थे, जबकि भाजपा सरकार में आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच गया है। क्योंकि दफ्तर अच्छा होगा तो अधिकारी की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गत दिनों तहसील नवाबगंज के पलिया मसूदपुर में फिश कोल्ड प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे। नवनिर्मित प्लांट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा,
2: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश को हम औद्योगिक विकास में भी नंबर एक पर लाएंगे। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है। बाराबंकी लखनऊ राजधानी के पास होने के कारण बड़े बड़े उद्योगपति यहां आकर के उद्योग लगा रहे हैं और इससे बाराबंकी को फायदा हो रहा है। जो बेरोजगार युवक है वो यहां काम करेंगे और मार्केट भी बाराबंकी ही मुख्य बनेगी, तो बाराबंकी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बढ़ेगी।
1: फतेहपुर में बाईपास और रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी मिलने से क्षेत्रीय लोगों ने जश्न मनाया। जहां आजादी के 80 साल बाद फतेहपुर को बाईपास और रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने NH 727H प्रोजेक्ट के लिए 660 करोड़ 17 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। ये प्रयास 2017 से लगातार किया जा रहा था, जो अब जाकर सफल हुआ है। ये नेशनल हाईवे बाईपास 727H बाराबंकी से खीरी तक जाएगा, जो महमूदाबाद बिस्वा लहरपुर लखीमपुर होते हुए गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट में फतेहपुर बाईपास, फतेहपुर रेलवे ओवरब्रिज, कल्याणी नदी पर नया पुल, सिहाली, रामनगर, सूरजगंज, बिलहरा और बिशनपुर बाईपास के क्रॉस और पुल शामिल हैं। पूरा मार्ग 4 लेन और 2 लेन का होगा। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मिनी स्टेडियम रामसनी घाट में सोशल सेक्टर के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति सतीश चंद शर्मा द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा एवं दीपावली पर को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभा

0: सभागार में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं का पूर्व से ही व्यापक निरीक्षण कर लिया जाए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पुलिस अधिकारियों के साथ अपने अपने क्षेत्र में शोभा यात्रा के निर्धारित रूटों, प्रमुख धार्मिक स्थलों, दुर्गा पूजा पंडालों तथा मूर्ति विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर लें। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि शोभा यात्रा एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कानून व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखा जाए। बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों एवं संभ्रांत नागरिकों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि सभी पर्वों को आपसी सौहार्द एवं सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाए। जनपद में हुई भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते सरयू नदी ने तबाही मचाई है। विशेषकर सूरतगंज ब्लॉक में स्थित हेतमापुर सहित 3 दर्जन गांवों में तो भारी तबाही हुई है। जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर बाढ़ राहत कार्य, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्य किए गए हैं।
1: बाराबंकी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि नकारात्मक ताकतें समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगी। महापुरुषों को भी जातियों में बांटने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि महापुरुष सबके होते हैं। कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्वाधीनता आंदोलन के नायक है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह राष्ट्र नायक है। दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी का उत्साह बढ़ाया, इसलिए वे पूरे समाज की आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर का भव्य स्मारक बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थानों, मंदिरों और मूर्तियों के सौंदर्यकरण के लिए धनराशि दी जा रही है। क्रांति धारा मेरठ के इतिहास में पहली बार आसमान वायुसेना के शौर्य और पराक्रम का 20 सितंबर को गवाह बना। परतापुर क्षेत्र के मोहद्दीनपुर स्थित न्यू इंटीग्रेट टाउनशिप में भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने अपने साहसिक कर्तव्य दिखाए। एयर शो के दूसरे दिन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और एयर शो में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सूर्य किरण भारत की शान है। तभी इन्होंने 800 जगह बड़े शो किए बड़े बड़े देशों में और इनका जब नजारा खुले आसमान के ऊपर दिखता है तब अलग ही रोमांच दिखता है। उससे प्रेरणा मिलती है, तब उससे सब मोटिवेट होते हैं, एनर्जी मिलती है, युवाओं को प्रेरणा मिलती है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्रम विभाग मेरठ में असीम अरुण, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण व मेरठ के प्रभारी की अध्यक्षता में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजनीतिक पेंशन, मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल की उपस्थिति में श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लगभग 500 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सीय परामर्श हेतु श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रमिकों कर्मचारियों की मेडिकल टीम द्वारा आवश्यक जांच और मेडिकल किट प्रदान की गई। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण द्वारा श्रमिकों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा श्रमिक हित में संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण श्रमिक प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनके एवं उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर असीम अरुण द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को हित लाभ वितरित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरठ के देवनागरी इंटर कॉलेज में मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मेरठ के अलग अलग स्कूलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पेंटिंग, भाषण और विज्ञान के मॉडल के जरिए अपने विचारों और कल्पनाओं को सामने रखा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा,
3: बच्चों ने बड़े बेहतरीन मॉडल बनाए हैं, देखने के बाद लगता है कि बच्चे सृजन की तरफ हैं। मेरा इतना ही संदेश है कि मेरे सपनों का भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देखो कि आज के बच्चों का जो 2047 में युवा होने वाले हैं उनके सपनों का भारत निर्माण करने के लिए सकल संकल्प।
2: ग्राम पंचायत निधि योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत ग्राम मोहद्दीनपुर मेरठ

0: में नवनिर्मित डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय नाम देव ने ग्रामवासियों के साथ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना विद्यार्थियों और युवाओं को आधुनिक अध्ययन सुविधाओं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों के माध्यम से छात्र छात्राओं को अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह लाइब्रेरी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के ज्ञान कौशल और प्रतिभा को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से गांव के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक एवं गुणवत्ता युक्त अध्ययन सामग्री से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुनिए देश गान।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है।

0: बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में 9:30 बजने को है। अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी गोरखपुर की पेशकश।
1: उर्दू प्रोग्राम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद फर्रुख जमाल का आदाब कबूल हो। आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका एक मकाला उर्दू मसनवियों में असातीरी किरदार। कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब जलाल अहमद सामानी। लेकिन पहले एक मुख्तसर तकरीर। उनवान है 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैद अहमद ख़ान की तालीमी बेदारी मुहिम। सन 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख का एक नहायत नाजुक मोड़ था। इस सानहे के बाद मुसलमान सियासी माशी तालीमी और समाजी एतबार से जवाल का शिकार हो गए थे। ऐसे पुराशोभ दौर में सर सैद अहमद ख़ान ने हालात का गहरा तजिया करते हुए इस हकीकत को महसूस किया कि मुसलमानों की तरक्की और सरबुलंदी का रास्ता जदीद तालीम साइंसी शऊर और फिक्री बेदारी से होकर गुजरता है। सर सैद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को माजी की अजमत पर फख्र करने के साथ साथ मुस्तकबिल की तामीर के लिए जदीद उलूम फ़नून से आरास्ता होने की तरगीब दी। उन्होंने सन 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की क़याम किया जिसका मकसद मगरबी उलूम को हिंदुस्तानी ज़बानों में मुंतकिल करना और इल्मी और साइंसी शऊर को फ़रोग देना था। सन 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल क़ायम किया गया जो सन 1877 में कॉलेज के दर्जे पर पहुंचा और बिलाखिर सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सूरत में एक अजीम तालीमी अदारा बन गया। सर सैद की तहरीक महज तालीमी इस्लाह की तहरीक नहीं थी बल्कि उसने मुसलमानों में जदीद फिक्र साइंसी मिजाज समाजी इस्लाह और कौमी शऊर की नई रूह फूंक दी। उन्होंने तालीमी निस्वा की हिमायत मजहबी समाजी जमूत के खात्मे और मशरक़ो मगरब के इल्मी इम्तिजाज पर भी जोर दिया। उनकी जद्दोजहद ने एक ऐसी नस्ल तैयार की जिसने हिंदुस्तान की इल्मी अदबी समाजी और सियासी ज़िंदगी में नुमाया किरदार अदा किया। मुख्तसरन अलीगढ़ तहरीक सर सैद अहमद ख़ान के उस रोशन तसव्वुर की अलामत है कि कौमों की तकदीर महज जज्बात से नहीं बल्कि इल्म अकल किरदार और मुसलसल जद्दोजहद से बदलती है। सर सैद का पैगाम आज भी उतना ही अहम है कि तालीम ही किसी कौम की खुद एतमादी तरक्की और रोशन मुस्तकबिल की बुनियादी ज़मानत है। समझना भी आप सर सैद के तालीमी मिशन के हवाले से ये मुख्तसर तकरीर समाअत फरमा रहे थे और आइए अब सुनते हैं जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका मकाला उर्दू मसनवियों में असातीरी किरदार।
2: मसनवी शायरी की एक अहम और किसी ज़माने में बड़ी मकबूल सिन्फ थी। मसनवी अरबी लफ्ज़ है, इसके माना दो किया गया है। इसका ये नाम अहले ईरान ने दिया है। इस्तिलाही माना में मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों और तमाम अशार एक ही बहर में हों। मौलाना हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में मसनवी के मुतल्लिक लिखा है कि उर्दू शायरी की तमाम असनाफ में सबसे ज़्यादा कारामद यही सिन्फ है। अल्लामा शिबली ने भी शेरुल अजम में तकरीबन यही बात कही है कि तमाम अनवाए शायरी की बनिस्बत

0: जलाल अहमद सामानी के इनशार के साथ सामईनाज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम के अंतर्गत आकाशवाणी गोरखपुर की प्रस्तुति। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर और 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही देर में सुनिए समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध हैं।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। श्रीमती मुर्मू का कल राष्ट्रीय सरस मेले के उद्घाटन का कार्यक्रम है। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन में भाग लेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधन करते हुए डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। चीन के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर 20 लोग सवार थे जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायल को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। खेलों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले रविवार को इंदौर में खेले गए 3रे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यावोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्नोल्ड मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में अब फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ, केरलम और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बिजली गिरने के साथ बारिश की आशंका है। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4

0: 4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। डॉक्टर छाया मिश्रा की बातचीत अभिनव प्रज्ञ पांडे से न्यूट्रिशन पर। प्रस्तुति है अभयकांत तिवारी की। मिश्रा, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्या न्यूट्रिशनल फूड जो होता है वो ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है? क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन के बाद आज हमारे मार्केट में अगर मैं प्रयागराज की ही बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फल और सब्जियां हैं जो नेचुरली हमारे यहाँ ग्रो नहीं करते हैं, जैसे एवोकैडो हो गया या ड्रैगन फ्रूट हो गया या स्ट्रॉबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी तो अब होने लगी है, कीवीज हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलरीज हो गई, तो क्या इनको केवल देख करके ले लेना ठीक है या फिर ये उतना न्यूट्रिशन हमें यहाँ पर भी दे सकती हैं जितना वो नेचुरली यहाँ पे ग्रो करती हैं उतना वहाँ पर देती होंगी?
1: हाँ, देखिए, जब द मोमेंट वी से दिस ना, ये सबसे ज्यादा फोमो हुआ था कोविड के टाइम में
0: और डेंगू के टाइम पर भी। डेंगू के टाइम, डेंगी जब हुआ था, उस टाइम पर भी ड्रैगन फ्रूट के लिए,
1: ड्रैगन फ्रूट के लिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ उसी में आपको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो हम बोल देते हैं, अच्छा आप परवल का भी सूप पी सकते हैं, जरूरी नहीं कि ड्रैगन फ्रूट ही खाए, जरूरी नहीं कि कीवी ही खाए। हाँ, ये मिथ है। ठीक है, ठीक है, इट इज़ रिच इन सर्टन अमाउंट, सर्टन न्यूट्रिएंट्स, बट उसके अलावा भी अपने पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। जो है नहीं उसके पीछे परेशान ना होकर जो आपके पास अवेलेबल है उसका आप पूरा यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, वो स्मार्टनेस है। एंड दैट इज़ वाई यू शुड नो द बेसिक न्यूट्रिशन, क्या आपके खाने में इंक्लूड करना चाहिए,
0: क्या करना चाहिए,
1: जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, गुड फैट्स, मिनरल्स, विटामिंस एंड फाइबर।
0: आपने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की डॉक्टर छाया, कार्बोहाइड्रेट से उन लोगों को दुश्मनी सी हो गई लगती है जिनका वेट थोड़ा सा भी ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं कि अचानक से कार्बोहाइड्रेट की पूरी सप्लाई रोक देते हैं कई बार, क्या ये टेंडेंसी ठीक है?
1: हाँ, ये जो है ये मार्केटिंग गिमिक है ना। बॉडी की जो नेचुरली जैसे चलता है, it is like, you know, 60% of your energy should come from carbohydrate, 20% from protein and 20% from fats. So now this is for someone who's at their ideal body weight. तो तभी भी देखिए कितना 60% बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। सो हाउ कैन यू से कार्बोहाइड्रेट ना ले, विच मीन्स आप 60% को डिप्राइव कर दे रहे हैं, एंड वॉट विल यू डू विद दैट 40%? है ना,
0: मतलब ये ठीक नहीं है। आप सारी चीजें,
1: बल्कि मॉडिफिकेशन ये होगा, थोड़ा कम लीजिए, यू कांट जीरो इट डाउन, बिकॉज बेसिक एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से ही आती है, मैक्सिमम एनर्जी आपके, बल्कि ब्रेन फंक्शन के लिए इट रिक्वायर्स ओनली ग्लूकोज।
0: बहुत सारे सेलिब्रिटीज डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप सफेद चीजें जितनी भी हैं वो छोड़ दीजिए, आटा, चावल, चीनी, छोड़ना चाहिए
1: वो, मिनिमल खाना चाहिए ना। देखिए, सफेद चीज उसको एक लेबल दे दिया गया है ना। हम शलजम को भी सफेद बोलेंगे अंदर से, तो वो सफेद ही रहता है। कोकोनट इज ऑल्सो सफेद, यू कैन नॉट कॉल इट लाइक दैट। व्हाट आई मीन, व्हाट दे मीन प्रोबेबली इज चीनी, मतलब बिकॉज इट इज ऑल शुगर्स, देन मैदा, रिफाइंड फ्लावर है, उसमें और कोई कैलोरी ही ज्यादा है और कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता है। चावल बेचारा जबरदस्ती बदनाम है।
0: जी, मतलब चावल,
1: चावल इतना बुरा नहीं है जितना लोगों ने बनाया है।
0: डॉक्टर छाया, कोई अगर बहुत तंदुरुस्त है, मोटा ताजा है, व्हाट डज इट मीन, क्या उसका जो पोषण है वो पूरी तरह से उसको ठीक मिल रहा है?
1: हाँ, ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगी आपको यहाँ पे। तंदुरुस्त है इज नॉट मोटा। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे संकोच में बोलते हैं सिर्फ समबडी इज ओवरवेट और ओबीज, वो थोड़ा हेल्दी है बोलते हैं ना। द मोमेंट यू नो हाउ इट रिंग्स इन योर माइंड, इन इट्स नॉट हेल्दी, इट्स अ लिटिल अनहेल्दी, यू कैन से ही इज अ लिटिल अनहेल्दी, ही इज नॉट हेल्दी, है ना। तो पहले तो ये हमको टैग निकालना है।
0: पुरानी जो हमारी जीवन शैली थी, जो लाइफस्टाइल थी, हम खूब चावल खाते थे, हम खूब आटा खाते थे, हम खूब चीनी खाते थे, उसके बावजूद आज भारत जो कि डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का, उस समय ऐसा नहीं होता था, आज हम कहाँ पिछड़े।

0: फर्क है, क्या चीज़ हमसे ऐसी मिस हो गई, क्या छूट गई, कहाँ छूट गई कि आज हम उतनी कैलोरी जो कि हमारे जैसे जो ज्योग्राफिकल हमारा एक रहन सहन है वो पहले उतनी चीज़ उतनी नुकसान नहीं करती थी, अब कर रही है। दूसरी बात इसी में मैं जो प्रश्न जोड़ना चाह रहा था, जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं अब ऑर्गेनिक चीज़ें आने लगी हैं, ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक दाल, ऐसे में कैसे सेलेक्ट करें? मतलब कई बार आप सब्जी भी जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें से मिलावट इतनी ज़्यादा हो रही है खाने की चीज़ों में, सब्जियों में रंग निकलने लगता है, तो ऐसे में हमारे पास न्यूट्रिशन के कितने और किस प्रकार के विकल्प बचते हैं?
1: देखिए, आपका पहला सवाल ये था, पहले हम इतना सारा खाते थे तो भी लोग बीमार नहीं पड़ते थे, फॉर द सिंपल रीज़न दैट
0: वर्कआउट
1: एक्टिविटी थ्रू आउट द डे. जैसे कि अभी फ्रॉम माई हाउस टू द स्टूडियो इट्स अबाउट 2 किलोमीटर्स. आई केम बाई कार
0: जी
1: बचपन में, मतलब 20 ईयर्स बैक प्रॉबली
0: जी
1: आई वुड
0: जी
1: हैव वॉक्ड फॉर 2 किलोमीटर्स. दैट्स वन
0: ये अंतर
1: बेसिक
0: है।
1: चेंज. हर चीज़ में देखिए, बचपन में टीवी जब देखते थे जाके वहाँ पर जाके चैनल चेंज करना पड़ता था. आज हम इतनी दूर बैठकर हम रिमोट से
0: रिमोट से
1: चलाते
0: करते
1: हैं.
0: हैं।
1: सो ओवरऑल एक्टिविटी थ्रू आउट द डे हमारा ज़ीरो हो गया है. बैठे बैठे सब जगह का काम हो जा रहा है. सो इट आई एट्रीब्यूट इट टू एक्टिविटी. एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ही मिनिमल है, पहले ऐसे नहीं होता था. उसके अनुसार हमारा थाली का चॉइस नहीं बदला. ऑन द कॉन्ट्री, जब आप बोल रहे हैं पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड और जितना हर चीज़ में तरक्की होने लगी है एंड वी वांट डिफरेंट क्यूजींस. हम तो पहले तो बचपन में इतनी वैरायटी पता ही नहीं था हम लोगों को खाने का, है ना. दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा वी डिडंट नो एनीथिंग एल्स. तो अभी पिज़्ज़ा पास्ता, अभी तो आपने बोला मैदा बंद कर, सो
0: जी
1: लॉट
0: जी
1: ऑफ थिंग्स फास्ट फूड आर ऑल मेड ऑफ सिंपल शुगर्स, फैट्स एंड आपका
0: ऑयल्स
1: रिफाइंड फ्लावर से बना हुआ. सो कैलोरी डेंस हो गई, एक्टिविटी कम हो गई.
0: डॉक्टर छाया, आप खुद भी अंदर से एक वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिस्ट हैं। इसके पहले हम जब कार्यक्रम कर रहे थे तो हमने एक साइंटिस्ट महोदय को ही बुलाया था और उन्होंने खुद कहा था कि मैं अगर सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं वो सब्जियाँ प्रेफर करता हूँ जिनमें कीड़े लगे होते हैं।
1: जी.
0: ये कहने के पीछे उनका क्या कारण रहा होगा, क्या
1: हाँ
0: मकसद रहा होगा?
1: हाँ देखिए, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, जो आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, सो
0: जी जी
1: दीज थिंग्स कम. सो पेस्टिसाइड्स जहाँ पर लगा तो वहाँ पर उस जगह पे कीड़े नहीं आए, विच मीन्स देयर्स अ केमिकल देयर, राइट. सो इनफैक्ट वन ऑफ माई टीचर्स यूज टू टेल कि उन्होंने ऐसे ही हम लोगों को सिखाया, तो बोलती थी जो सब्जी कीड़ा भी नहीं खाना चाह रहा है उसको हम ले खरीद रहे हैं.
0: बिल्कुल
1: इट
0: सही
1: वॉज हर
0: बात है।
1: स्टेटमेंट, विच मीन्स दीज इंसेक्ट्स आर एबल टू डिटेक्ट वॉट इज ऑर्गेनिक वॉट इज नॉट ऑर्गेनिक, है ना. तो ये सही बात ही है. इसका ये मतलब नहीं कि सड़ा गला आप लीजिए. इट्स लाइक जो
0: जी जी
1: कीड़ा
0: जी
1: खा
0: बिल्कुल,
1: चुका है दैट मीन्स इट इज सेफ, उसमें
0: जिसको
1: कोई
0: कीड़े नहीं
1: पेस्टिसाइड
0: चूज
1: नहीं
0: करें।
1: है. या सो वॉश इट वेल, वी हैव टू प्रोटेक्ट द क्रॉप ऑल्सो फ्रॉम
0: ऑफ कोर्स
1: इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स. सो दिस इज द
0: बिल्कुल,
1: कॉन्ट्रोवर्सी हियर.
0: ये कंट्रोवर्सी तो है लेकिन इससे आगे हम बढ़ें, इससे पहले हम फिर से चाहेंगे कि कोई एक गीत या कोई गाना जो आप अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें डॉक्टर छाया।
1: तो वो टिप टिप बरसा पानी.
0: हाँ, टिप टिप बरसा पानी, क्या बात है।

0: डॉक्टर छाया, बातचीत बहुत हो चुकी है और आपने बहुत जानकारियाँ दी हैं न्यूट्रिशन के बारे में, एक जो संतुलित पोषण आहार हमारे लिए हो सकता है। हम एक बार अंत में चलते चलते फिर से चाहेंगे कि आप एक डाइट प्लान अगर हमारे ऑडियंस से, हमारे श्रोताओं से, हमारे दोस्तों से कुछ साझा करना चाहें कि एक आइडियल डाइट प्लान क्या हो सकता है।
1: हमेशा देखिए, विच इज़ अ गोल्डन रूल हम बोलेंगे, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। एक थाली आप देखिए, इट्स विच इज़ राउंड इन शेप, राइट? सो एक थाली में 50% डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, राइट? वन हाफ विल हैव सैलड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
0: आधे भाग में हम फल सब्जियां और सलाद रख लें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पका हुआ खाना और कच्चा सब्जियां साथ में नहीं खानी चाहिए।
1: ऐसा बिल्कुल भी
0: ऐसा
1: नहीं है,
0: नहीं, ठीक है।
1: बल्कि जितना वैरायटी आप रखेंगे आपके
0: जी,
1: खाने में, उतना अच्छा आपका गट हेल्थ रहेगा,
0: फिर हमने आधा
1: प्लस उतना न्यूट्रिशन आपको, उतना वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगी। सो द अदर हाफ ऑफ द थाली में 3/4 और 1/4 डिवाइड करिए। 3/4 विल बी योर प्रोटीन एंड 1/4 विल बी योर कार्ब्स।
0: ओके, सो आपको प्रोटीन,
1: व्हेन आई से कार्बोहाइड्रेट, वहां पर इट इज द सीरियल, अनाज,
0: अनाज, नॉट आलू, नॉट चीनी,
1: दैट शुड बी वेरी मिनिमल। आलू भी इज नॉट एज बैड एज पीपल हैव मेड इट। देखिए होता क्या है, ओवर डू ऑफ एनी थिंग विल बिकम बैड। अच्छी चीज भी आप बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो खराब ही असर करेगा आपके ऊपर, एनी थिंग। दैट इज वाई यू नो पोर्शन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिक्वेसी समझना है। हाउ मच इज टू मच फॉर यू इज वॉट इज डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ अस, डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट।
0: शुरुआत हमने महिला से की थी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जब भी होती है, जीवन की भी होती है, तो महिला से होती है।
1: जी,
0: हम महिला पर ही ख़त्म भी करते हैं,
1: जी।
0: आधी आबादी हैं, मोस्ट नेग्लेक्टेड एक तरह से कहा जाए, अगर सेल्फ हम नेग्लिगेशन की बात करें तो महिलाओं से अच्छा और कोई नहीं कर सकता।
1: यू नेल्ड इट।
0: तब तक वो सहती रहती हैं जब तक
1: जी
0: सह सकती हैं। क्या महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जो जिम कर रही हैं, जो जिम नहीं भी कर रही हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो जो काम करती हैं, उतना ही काम अपने आप में बहुत होता है और वही धीरे धीरे इतनी मेहनत करवा देता है जितना वो पोषण भी नहीं ले रही होती हैं,
1: बिल्कुल,
0: उनके लिए क्या कुछ अलग से होना चाहिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर जो मदर्स हैं जो घर का काम करती हैं रेगुलर तरीके से। वो काम दिखने में भले हमको रेगुलर लगे, लेकिन एक बार किसी को भी एक दिन करना पड़ जाता है तो हालत खराब हो जाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: ऐसे में क्या एक न्यूट्रिशन लड़कों का, लड़कियों का, पुरुषों का, महिलाओं का, ये अलग होना चाहिए, कुछ अलग होता है?
1: आप जो पूछ रहे हैं इसमें देयर आर टू आंसर्स। इफ यू टेक्निकली आस्क, यू नो, एक मेल बॉडी कॉम्पोजिशन, फीमेल बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी कॉम्पोजिशन की जब हम बात करेंगे, वी आर डिफरेंट, राइट? वी आर टू डिफरेंट जेंडर्स। रिक्वायरमेंट हम लोगों की अलग है अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉम्पोजिशन, क्योंकि मेन आर मोर मस्कुलर, दे रिक्वायर मोर कैलोरी एज कम्पेयर टू वुमेन। ये बेसिक डिफरेंस तो है ही, कैलोरी में डेफिनेटली डिफरेंस है, 19-20 बाकी न्यूट्रिएंट्स में भी डिफरेंस है। बट व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू एवरीवन्स अटेंशन हियर इज एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड एंड बिकम इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स शुड बी द प्राइमरी थिंग।
0: बिल्कुल,
1: जैसे आपने कहा, इतनी चीजें कर देती है घर में और उनको उसमें उनको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटो पायलट मोड में कर ही रही हैं। बट व्हाट शी डजंट नो, नोबडी हैज टॉट हर, इज टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। वो रेस्ट करना नहीं जानती है। एंड आज भी लॉट ऑफ मदर्स, वुमेन रेस्ट करेंगे तो दे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। दे आर डूइंग फॉर देयर चिल्ड्रेन, द हस्बैंड, इन लॉज, वॉट इज शी डूइंग? अल्टीमेटली जब उनकी बारी आती, कुछ भी है चलेगा, थोड़ा सा खा लेते हैं एंड आई एम थ्रू, आई जस्ट वॉन्ट सम रेस्ट। बट उनका थाली बैलेंस्ड नहीं है। आइडियली पहले उनको समझना है मेरा थाली कैसे रहना चाहिए। शी शुड टेक ऑल ऑफ दिस न्यूट्रिशन, शी शुड नरिश हर सेल्फ, ताकि वो और अच्छे से बाकी सबके लिए कर सके। जब खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगी, फिट नहीं रहेंगी, थ्राइव नहीं कर पाएंगी, वो सर्वाइवल मोड में रहेंगी और सबके लिए भी सर्वाइवल मोड में ही करेंगी, विच इज़ वेरी अनफेयर।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत अनफेयर है। और मैं तो कहता हूँ कि अपना ध्यान रखना पहले बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए खासकर। अंत में अंतिम प्रश्न डॉक्टर छाया मिश्रा, समय हमारे पास लगभग ख़त्म होने को है,

0: दिखना ज्यादा जरूरी है या फिट रहना या दोनों?
1: तभी दिखेंगे आप व्हेन यू आर फीलिंग फिट इनसाइड. दिखाने के लिए दिखाएं इज डिफरेंट फ्रॉम फीलिंग फिट. यू शुड बी फिट इनसाइड आउट.
0: बिल्कुल, इसमें हमने जानबूझ करके एक विषय को अलग रखा है क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। इस पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, लेकिन आज का ये प्रोग्राम, आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से फिटनेस के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर केंद्रित था। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ थी छाया मिश्रा। डॉक्टर छाया मिश्रा, अंत में चलते चलते अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो या आप हमारे माध्यम से, हमारे दोस्तों से, हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या कुछ संदेश देना चाहें, न्यूट्रिशनल मैसेज?
1: जी जी, न्यूट्रिशनल मैसेज ये है, हमेशा ट्रस्ट योर बॉडी, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव योर बॉडी, अंडरस्टैंड योर बॉडी. जब तक आप अपने बॉडी को समझेंगे नहीं, यू विल मेक इट एन गिनी पिग, एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग बना देंगे आप. नॉट एवरी इंफॉर्मेशन आउट देयर इज ट्रू. यू हैव टू फॉलो द राइट काइंड ऑफ पीपल. देखिए, इन्फ्लुएंसर्स हर तरह के हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर जॉब, बट हु शुड यू ट्रस्ट टू गिव योर सेल्फ योर बॉडी, है ना? इट्स सी, आप कपड़े खरीदिए, महंगा सस्ता जैसे भी खरीदे, खराब हो गया, यू कैन जस्ट नॉट वेयर इट, यू कैन जस्ट डिस्कार्ड इट. यू हैव ओनली वन बॉडी, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वॉट यू फीड योर बॉडी विथ एंड किसकी एडवाइस आप सुनेंगे. अल्टीमेटली योर बॉडी इज योर्स, यू हैव टू टेक डिसीजन ऑफ इट. अ लॉट ऑफ देम इन टूडेज सिनेरियो इज स्लीप डिप्राइव्ड. चाहे आप जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन आप ले रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, रिकवरी कम्स फ्रॉम योर प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप, डीप स्लीप. खासकर रात को जगना इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ. सो आई ऑलवेज से इट्स नॉट फ्रॉम AM टू AM, PM टू AM सोना है.
0: That too with the screen.
1: Yeah. So thanks to all the blue light exposure, you know. सबसे ज्यादा जो culprit है हमारा मोबाइल है. People keep scrolling, पता ही नहीं चलता एक दो घंटे कैसे निकल गया.
0: बिल्कुल.
1: So इस स्क्रीन टाइम जरूर सेट करना है. सी, द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ लेटर इन द नाइट टू ब्लू लाइट, आपको नींद में दिक्कत होगी, नींद आने में दिक्कत होगी, योर बॉडी इज नॉट रेस्टेड वेल, रिकवरी स्लो होगी हर चीज के लिए, है ना? इवन फॉर पीपल हु आर हेल्दी, हु वांट टू बिल्ड बेटर मसल मास, स्लीप इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर एनी एज ग्रुप. दूसरा, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जैसे मैंने थाली बताया है ना, सो उसमें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन मॉडिफाई इट. तीसरा, वाटर इनटेक, अ मिनिमम ऑफ 2 liters वाटर तो लेना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल 5-6 glasses भी नहीं कर पाते, 1 liter भी नहीं ले रहे होते हैं. एंड एक्सरसाइज, टेक टाइम आउट फॉर योर एक्टिविटी. 24 hours में 1 घंटे भी आपने अपने शरीर के लिए नहीं निकाला तो आपने क्या किया?
0: एंड डिजिटल डिटॉक्स.
1: Yeah.
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर छाया मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए. और श्रोताओं, ये थी डॉक्टर छाया मिश्रा जो कि प्रख्यात न्यूट्रिशनिस्ट हैं प्रयागराज की. और जितनी बातें इन्होंने बताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल ये आपके काम आएंगी. और छोटी छोटी बातें उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं कि आपको खाने के साथ अपना रिश्ता समझना होगा, खाने के साथ एक रिश्ता जोड़ना होगा, क्योंकि खाना अपने आप में सिर्फ पेट भरने की एक प्रक्रिया नहीं है. खाना खाना वो अपने आप में एक कल्चर है. कहीं भी आप जाएंगे, वहाँ का आपको रहन सहन, बोली भाषा के साथ खाना, जिसे हम क्विजीन कहते हैं, वो भी बदलता है. और कहीं ना कहीं वो उस पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को, पूरे समाज को प्रतिबिंबित करता है. आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही. अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपकी सेवा में आपके समक्ष उपस्थित होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत. नमस्कार. और सुनते
2: मीडियम वेव 292.4 meters यानी 1026 kilohertz और FM 100.3 megahertz पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है. प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक गीत. सुनिए मेहरदीन और साथी के स्वर में देवी गीत.

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार।

धन्यवाद हिमांशु। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के अलावा वेब्स OTT पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की कलाकार हैं पार्श्व गायिका अलका याग्निक।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की कलाकार हैं पार्श्व गायिका अलका याग्निक। ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान। प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की है।

अलका याग्निक एक जाना पहचाना नाम। आप भारतीय फिल्म संगीत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई दशकों तक अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं के दिलों पर राज किया है। आपका जन्म 20 मार्च 1966 को तब के कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल का एक शहर और राजधानी है। आपके पिता धर्मेंद्र शंकर और माता प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा याग्निक हैं। मात्र 6 साल की उम्र में आपने ऑल इंडिया रेडियो, यानी जो आज का आकाशवाणी है, इस पर अपने गाने की शुरुआत की थी। 10 साल की उम्र में उनकी माँ उन्हें मुंबई ले आई। उन्होंने फिल्म पायल की झनकार, जो 1980 में आई थी, अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनको बड़ी सफलता मिली 1988 में आई फिल्म तेजाब के एक गाने से, 1 2 3 4। कार्यक्रम की शुरुआत हम आपको इसी गाने से सुनवाकर कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं वो गीत जिसने अलका याग्निक को रातों रात स्टार बना दिया था।

0: जेसिका इंतजार
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

रातों रात स्टार बन जाने के बाद अलका याग्निक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1100 से अधिक फिल्मों में हजारों गीत

गाए और बहुत सारे पुरस्कार भी अपने नाम किए। बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसे कलाकार के लिए कुछ गाने चुन पाना, लेकिन चुनना तो पड़ता ही है। एक फिल्म आई थी ताल, उसमें आपने उदित नारायण के साथ एक गीत गाया था, वो गीत बहुत ही चर्चित हुआ था। गीत क्या था आइए सुनते हैं।

इस फिल्म के लिए गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन था A.R. रहमान का। मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले आई ये फिल्म अपने समय की सुपरहिट फिल्म रही थी।

0: सफलता का पैमाना ये होता है कि उस समय के प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार के गाए हुए लिखे हुए गीत मिलें और अच्छे गायकों के साथ गाने का मौका मिले। और ये चीज़ अलका याग्निक के साथ भी हुई। अभी जो मैंने गीत आपको सुनाया वो उदित नारायण के साथ आपने गाया था, जो अपने समय के एक प्रसिद्ध गायक रहे, आज भी हैं। अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीत को लिखा है समीर ने, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का, और अब ये गीत सोनू निगम के साथ आपने गाया था। फिल्म का नाम है धड़कन।
1: हमारे गहरे विश्वास के रिश्ते में तुमने अपने दिल में कुछ गहरे राज छुपाए हैं, क्यों अंजलि? क्या हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी? तुम किसी और को चाहती थी?
2: नहीं राम, मैं नहीं जानती मैं किसी और को चाहती थी या नहीं। मैं नहीं जानती मेरा कोई अतीत था या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे।

आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार के अंतर्गत अलका याग्निक की जिंदगी और उनकी फिल्मों के गीत। अब अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। एक ऐसी फिल्म जिसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद ऐसी ये तीसरी भारतीय फिल्म थी। इसे 8 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए थे। जानते हैं फिल्म कौन सी थी? फिल्म का नाम था लगान। आमिर खान, एक बड़ा नाम। इसके गीत प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे थे और संगीत निर्देशन था ए.आर. रहमान का। कहना ना होगा कि अब अलका याग्निक के खाते में जो कुछ भी आना था वो आ चुका था। और एक बड़ा कलाकार वही होता है जिसे बड़े लोग साथ देते हैं उस समय के। तो आइए सुनते हैं उस फिल्म का कौन सा गीत हम आपको सुनवाना चाहते हैं, ये तो आप ही बताएंगे सुनने के बाद।

का याग्निक। इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के नगमे से उन्हें उनके नाम हैं तेजाब, ताल, धड़कन और लगान। श्रोताओ, हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने सुझाव, हमारी त्रुटियाँ और हमारी सफलताओं के बारे में स्पष्ट रूप से हमारे आकाशवाणी के व्हाट्सएप नंबर पर लिखें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम बना सकें। हमारे आकाशवाणी का व्हाट्सएप नंबर है 800-49-26-250, यानी 800-49-26-250। अब आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम खत्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौहीर को दीजिए इजाज़त। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और वेब्स OTT पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा राठौर और नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का है। आइए सुनते हैं बोलते नगमे।

0: बोलते नगमे। श्रोताओं नमस्कार, वंदना जी नमस्कार।
1: नमस्कार नेहा जी, और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: अरे भाई, आज दिन क्या है?
1: नेहा जी, दिन तो वही है जब हम कुछ गुनगुनाते हैं, जिसमें कुछ मस्तियां छुपी होती हैं, कुछ तन्हाइयों की बातें की जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें उदासियों से भर देती है, तो कुछ हमें जीवन का पाठ पढ़ा जाती है, यानी बातें नगमों की, वो भी बोलते हुए नगमों
0: की होगी।
1: जी
0: दोस्तों, आज ये जो नगमे गुनगुनाएंगे इस प्रोग्राम के साथ, उसमें दिन जो है फूल सा खिलेगा, कुछ दिन चढ़ेंगे और किसी न किसी वास्ते की बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जैसे कोई रिस्क सा महसूस होगा कि हाँ ये रिस्क है क्या, या फिर
1: आंखों आंखों में कोई इशारे किए जाएंगे।
0: माय गॉड, मतलब ये जो क्लू है ना, आप संभाल कर रखिएगा कि क्या आपके मन में गाना कौन सा चला सूझा और हमारे गाने के साथ क्या वो मेल खाता है या नहीं।
1: नेहा जी, हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो आपने क्लू दिया है, हमारे दोस्तों के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा, बहुत सारे गीतों ने हलचल मचानी शुरू कर दी होगी ना।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बात थोड़ी सी और तवील करते चले हम कि बातें यहाँ मोहब्बत की हो रही है, और मोहब्बत की जब बात आती है तो हम सब जानते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा जज्बा एक होता है। बहुत सारे शायरों ने बहुत सारे शेर, गजलें, रुबाइयां लिखी है, दीवान लिखे हैं बड़े बड़े, जिसमें कि मिर्ज़ा गालिब साहब कहते हैं कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।
0: सच में उसी को देख के दम निकले जिस काफिर पर दिल आता है ना। मिर्ज़ा गालिब साहब ने ये बात कब कही और ये बात आज भी ताज़ा तरीन है। हर मोहब्बत करने वाला दिल इस बात से वाकिफ होगा। डॉक्टर इरशाद कामिल को तो जानती होंगे आप।
1: जी बिल्कुल,
0: गीतकार भी हैं, कवि हृदय भी हैं। उन्होंने भी दो प्रेमी दिल को पढ़ा, देखा, जाना, सुना, तो क्या थोड़ा सा गुनगुना
1: बिल्कुल दोस्तों तक साझा करते हैं।

0: वंदना जी,
1: एक
0: बात मुझे बड़ी समझ से परे लगी।
1: क्या?
0: कि इस गीत के जो बोल हैं वो पंजाबी हैं। आज दिन चढ़िया
1: जी,
0: और जो सीन दिख रहा है वो बिल्कुल बंगाली, मतलब जबान पंजाबी है, स्थान बंगाली है।
1: हाँ, स्थान बंगाली है,
0: है ना।
1: हाँ, और आप ये देखिए कि जो जिक्र हो रहा है
0: जी,
1: ये एक कहानी जो बुनी गई है, जिसे खुद ही लिखा है इम्तियाज अली ने, लव आजकल, यानी कि आजकल के जमाने में प्यार किस रूप में आता है और किस तरह से हम उसको पहले तो नकारते हैं और हमें ये लगता है कि सिर्फ ये टाइम पास वाली एक चीज है।
0: हाँ।
1: और वो लगावट नहीं दिखती, लेकिन जब किसी एक ऐसे व्यक्ति से भेंट होती है तब वहाँ पर वो चीज़ किस तरह से दिल में सरगोशियाँ पैदा करती हैं और दिल को धड़कने पर मजबूर करती हैं। बहुत ही शानदार गीत है, दिल के बहुत करीब गीत है। ये आगे बढ़ेगा, हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी इस गीत के साथ जुड़ते जाएंगे और अपनी जो खुद की कोई कहानी बुनी होगी, कही होगी, सुनाई होगी, किसी दिल तक पहुंचाई होगी, वो सब कुछ उनके सामने से गुजर जाएगा। तो चलिए, लुत्फ अंदोज होइए आप सब भी।

0: प्रीतम का संगीत दिल को छू लेने वाला। मुझे याद है जब इस गाने को मैंने पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर देखा था तो सैफ अली खान साहब और दीपिका पादुकोण लोग उनके दीवाने होते दिखे थे मुझे। और इनकी सादगी, मुझे लगता है कि सिर्फ एक साधारण सा उन्होंने परिधान पहन रखा है, लेकिन जो भाव हैं वो इस तरह से बिखर रहे हैं कि मन करता है कि उस तिलस्म में हम कैद हो जाएं और एक खुशी बरस पड़ती है। जब वो कहते हैं तेनु दिल दवास्ता, वो सीधे रब से संवाद करते हैं कि देखो भाई रब, किसी को इन नज़रों ने पसंद कर लिया है और वो मुझे दिला दो, क्योंकि दिल दवास्ता है आपको, ये दिल की कसम है। तो सीधे ऊपर वाले से कसमें वादे लेना और देना, ये मुझे लगता है कि बड़ा करीबी मामला है ऊपर वाले से भी और जिस पर नजरें इनायत हुई हैं उससे,
1: और साथ ही साथ जो एक तरह से चुनौती दी जा रही है खुदा को कि कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू। तो ये होता है ना कि दोनों, जहां की दौलत मैं उस प्रेम पर वार दूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो एक गहराई यहाँ पर, वो बात एक आ रही है नेहा जी, वो भाव आ रहा है जो मन में खिलखिलाटे पैदा कर रहा है। और सब कुछ जैसे लगता है कि बहुत सारे जो वासंतिक रंग होते हैं, इंद्रधनुष जो बारिशों में खिलते हैं, वो सब दिल के जमीन पर, दिल के आसमान पर खिल उठे हों, बिखर उठे हों। तो
0: हम रुकते हैं ना, फिर से रुकें।

दोस्तों आप जरा इस गीत को देखें तो कहाँ से सैफ अली खान साहब मिलने के लिए ट्रेन का सफ़र करते हैं, वो भी जनरल डिब्बे में, और बैठे कहाँ हैं, बिल्कुल जो ऊपर वाली सीट होती है उस पर आलथी पालथी मार के बैठे हुए हैं और सफ़र करके मिलने जाते हैं और फिर उसी तरह से वापस लौटते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, बस एक झलक, सिर्फ एक झलक उनको मिलती है और उसी में वो अपने आप को इतना

0: वो भी जनरल डिब्बे में। और बैठे कहाँ हैं? बिल्कुल जो ऊपर वाली सीट होती है उस पर पालथी मार के, आलथी पालथी मार के बैठे हुए हैं और सफ़र करके मिलने जाते हैं और फिर उसी तरह से वापस लौटते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, बस एक झलक, सिर्फ एक झलक उनको मिलती है और उसी में वो अपने आप को इतना अमीर समझने लगते हैं। मतलब बहुत सुंदर, डॉक्टर इरशाद कामिल ने बहुत सुंदर तरीके से ये जो संवाद है ना रब से और उससे जिसे ये दिल पसंद करने लगा है, मुझे लगता है कि बैठकर रचा है उन्होंने, और तभी तो ये गाना हर किसी के हृदय और जहन में आ पसा। नहीं
1: जी बिल्कुल, बात है क्योंकि मोहब्बत की चल रही है नेहा जी, और मुंशी प्रेमचंद जी ने भी एक बात कही है मोहब्बत को लेकर ही
0: जी,
1: कि मोहब्बत रूह की खुराक है, ये वो अमृत बूंद है जो मरे हुए भावों को जिंदा करती है, ये जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची और सबसे मुबारक बरकत है। तो देखिए ये बरकतें जो बरस रही हैं नगमों की शक्ल में, वहाँ पर एक और खूबसूरत सा नगमा दस्तक दे रहा है
0: जी।
1: तो चलिए थोड़ा सा इशारेबाजी की बातें यहाँ पर हो रही है, वो भी आंखों ही आंखों में कोई बात कही जा रही है, तो वो आंखों की जो बातें हैं उसको हम आंखों से पढ़ते हैं
0: जी।
2: आंखों

0: जैसे ही गाना अभी हम लोग सुन रहे हैं रफ़ी साहब, आंखों ही आंखों में वो जो एक सादगी भी है, चुलबुलापन है और एक सहज भाव में बह लेना। देवरन साहब इतने हैंडसम शालीन दिख रहे हैं, उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है नज़रें ठहर सी जाती हैं। और जब आप, हम लोगों ने पहले भी देवानंद साहब का वो गाना किया था, आपको याद है, जिसमें कुतुब मीनार वाला सीन
1: अच्छा
0: था कौन सा वाला बताइए?
1: फूल तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है, प्यार का राग सुनो,
0: कुछ वैसा ही गाना। ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे वो शूट हुआ और लोगों के दिलों पे छा गया। और ये गाना भी वैसा ही है जब शकीला जी साथ में होती हैं और कैमरा बहुत ज्यादा पैन नहीं होता है और कैमरे का वर्क इतना अच्छा है, एक जगह स्टैटिक है और देवानंद साहब और शकीला जी की जोड़ी और उनके एक्सप्रेशंस, मुझे लगता है कि आंखें जिस तरह से होठ अपनी बात कह जाते हैं। और उसमें ये लाइन भी कि बिखरे हैं बाल क्यों, चाल इतनी डगमग सी क्यों है, बहकी क्यों चाल है, हुआ क्या हुआ क्या
1: देखिए नेहा जी, जानिसार अख्तर साहब ने इस गीत को लिखा है, वो एक शायर रहे हैं। हाँ। और हमारे जो दोस्त हैं जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो जानते होंगे कि जानिसार अख्तर साहब का वास्ता जावेद अख्तर साहब से प्रगाढ़ है, क्योंकि वो उनके पिता हैं।
0: जी,
1: तो देखिए जो शायर जब कभी कुछ लिखता है तो उसकी बात ही बिल्कुल अलग हो जाती है, उसमें बहुत सारे मानी खेज रंग नज़र आने लगते हैं।

0: ये जो शकीला जी की शोखी है और गीता दत्त जी की बात हो रही थी, वो चुलबुलापन, बातों को सब समझना है लेकिन बात की जैसे शुरुआत हुई है उसके अंत आते आते तक उस सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाना है, चुलबुलापन हो उसमें, थोड़ी सी शरारत हो, ऐसे ही तो कुछ भाव थे जानिसार साहब के। तो ज़रा देखिए कि कैसे वो जब इठलाती हैं, उन्होंने तो शायद देवानंद साहब की आंखों में कुछ पढ़ लिया था
1: है ना? या खुद को देख लिया।
0: ओ माई गॉड एक्चुअली।
1: लेकिन संगीत को भला कैसे भूल सकते हैं ओपी नैयर साहब, सदा बहार संगीतकार, पंजाबियत से भरपूर जो एक रिदम होती है उसमें ओपी नैयर साहब का कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ इस संगीत को जब हम सुन रहे हैं इस गीत में, तो नेहा जी बहुत सारे वाद्य यंत्र जब हमको सुनाई पड़ते हैं तो वहीं पर एक ऐसा वाद्य यंत्र हमें सुनाई पड़ रहा है इंटरल्यूड्स जब गाने के बीच में जब आते हैं, वो बताइए कौन सा है?
0: सच बात बताऊं मुझे नहीं पता चल रहा है।
1: सारंगी
0: जी।
1: तो ये बड़ा श्रेय दिया जाता है रोशन जी के बाद संगीतकार ओपी नैयर जी को कि उन्होंने सारंगी का इतना खूबसूरत प्रयोग किया है अपने गीतों में
0: जी,
1: जो कि लाजवाब बाकमाल रहा है। तो ये आगे जो बात गीता दत्त की, क्या आवाज है, रूह को छू जाती है, ऐसी मीठी बंगाली मिष्टी दोई की तरह जो आवाज है उसमें जब कोई बात कही जाती है, आहा, तो दिल जो है मीठेपन से भर उठता है।

0: मुझे इसमें जो शब्द बहुत अच्छे लगे
1: mm-hmm.
0: वो जोर, कि दिल पे अब ना कोई जोर है, अब ना ही कोई शोर है,
1: और हमको बहुत है सब पता, दिल में जो
0: चोर है, कुछ नाज की भी बात हो रही है। सच में ज़रा देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रेम के भाव पनपने लगते हैं और जब उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, तो शायद उसे क्रोध छू भी नहीं पाता उस समय ना।
1: और नेहा जी, साथ ही साथ उसकी शख्सियत में बला का परिवर्तन आता है, कि जो कोई व्यक्ति देखने वाला, सूक्ष्मता से निहारने वाला हो, तो वो तुरंत जान जाएगा कि सामने वाले को प्यार हो गया है। उसकी चाल बदल जाती है, उसका नज़रिया बदल जाता है, उसका बात करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है।
0: और वो जब कहते हैं ना कि बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया, ये बहुत बड़ी बात जानिसार साहब ने कही, कि जिसको ये सहारा मिल जाता है ज़िंदगी में, यकीन मानिए वो शायद ज़ीरो से सफ़र शुरू करता है और अपने आप को पाता है कि वो सिकंदर बन चुका है ना।
1: या फिर मोहब्बत से शुरू हुआ सफ़र इश्क की इंतहा को पार कर लेता है, जैसा कि इस गीत में सुनाई पड़ेगा दोस्तों, जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: कई बार मुझे लगता है कि अपनी बात रखने में ये जो देशज बोली है वो ज्यादा काम आती है।
1: सच कह रही
0: है ना
1: जी, बिल्कुल।
0: वो जब हम ऐसे तो कहते हैं इश्क, लेकिन इसमें है इश्क
1: जी,
0: रिस्क। शायद पहला गाना भी हम लोगों ने डॉक्टर इरशाद कामिल का लिया था, और ये वाला भी जो गीत है वो डॉक्टर इरशाद कामिल का ही लिखा हुआ है। वो जानते थे कि अगर इसमें ये पुट डाला जाएगा तो लोग इसको कैप्चर कर लेंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही।
1: और देखिए, जब ये शुरुआत ही होती है इसकी, तो रेडियो पे जो तमाम लिसनर होते हैं जो अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, उनके नाम की उद्घोषणा के साथ ये गीत शुरुआत इसकी होती है, इस गीत की।
0: हाँ?
1: तो रेडियो कितना जरूरी है जीवन में,
0: जी।
1: ये चलते फिरते जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं किसी रास्ते से और गीत जब सुनते हैं तो हमारे मन के जो उद्गार होते हैं वो उनसे मिल जाते हैं उस गीत से। और उसी रूप में जैसा भी हमारा, अगर हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और कोई हैप्पी सॉन्ग अगर आ रहा है, रेडियो पे बज रहा है, तो हमारा मूड थोड़ा सा चेंज होने लगता है, हम तरंगित होने लगते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हमारी रूह ही हमसे बात कर रही हो और वो ये बात कह रही हो, कब तक रूठे रहोगे,
1: और देखिए
0: बैक टू लाइफ तो आना ही है,
1: जो बिल्कुल
0: है ना?
1: और देखिए, इरशाद कामिल साहब का तो आपने जिक्र किया, लेकिन संगीतकार इस बार चेंज है, बदले हुए हैं, सोहेल से इनका संगीत है इसमें,
0: बहुत सुंदर,
1: बहुत ही खूबसूरत संगीत है।
0: एक बात वंदना जी, आपको रोकूंगी, माफ कीजिएगा सुधीर श्रोताओं, हम लोगों ने राहत फतेह अली खान साहब की आज दिन चढ़िया में भी बात नहीं कर पाए थे और ये गीत भी राहत फतेह अली खान साहब ने गाया,
1: मेरे ब्रदर की दुल्हन, ये है फिल्म का नाम, और बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये दिलकश नगमा है।

0: ये जब बात होती है कि ये जो दिलकश नगमा है और हम कह रहे हैं कि इतनी सुंदर स्टोरी लिखी गई और उस स्टोरी में एक बात है, कोई इसे कहता है कि भाई ये सोने जैसा है, कोई कहता है ना ये भाई बहुत दुख देता है, ये माटी है, कोई बोलता आ हाँ हाँ ये भैया दूर रहना दरिया है कोई बोलता नहीं जी सहरा है। मुझे लगता है हर किसी के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं ना।
1: इश्क को तो पहले ही कहा गया है एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है।
0: ओह माय गॉड। अच्छा एक और बात, जब आप मुंशी प्रेमचंद साहब के भी कुछ लाइनें आपने कही
1: जी,
0: तो उसमें ये था ना कि मोहब्बत एक बरकत है और जिसको मिलता है वो खुशकिस्मत समझे अपने आप को। तो इन्होंने एक चीज लिखी कि भाई ये ऐसे मौके पर होता है जो रोके से नहीं रुक सकता
1: जी।
0: ये मौका कितना स्पेशल होता होगा नहीं कोई चाहे अगर दिल में कोई छवि बसने लगी है, अगर उसको चाहे जाए कि नहीं ये छवि ना आए, तो आपके पास कंट्रोल बटन नहीं है
1: तो प्यार तो ऐसे ही होता है बिन बताए, अतिथि की तरह जिसकी कोई तिथि ना हो आने की, वैसे ही आ जाता है और वो घर का सदस्य यानी दिल का सदस्य बनकर ऐसे बैठ

0: बिल्कुल बहुत सुंदर है। कैटरीना कैफ इसमें गुड़िया की तरह लग रही हैं और इमरान खान उनके आगे पीछे दूर से डोलते हुए, जिनको ये बात बहुत बाद में इसका पता चलता है कि असल में करने कुछ और चला था और हो कुछ और गया। और जब ये बात पता चलती है तो कैसे दूरी बनाई जाए, मुझे लगता है कि जितनी दूरी बनाई जाती है करीबियत का एहसास उतना अधिक होता है। और जब वो कहते ना कि ये वो ऐसा भाव है कि आपसे कुछ भी करा सकता है, दिल में अगर कोई गांठ है तो वो गांठ भी खुल सकती है। वंदना जी, पहले मुझे इस बात का इतना भान नहीं था कि प्रेम में इतनी ताकत होती होगी कि ये दिल की कहानियों तक को बदल सकता है। मतलब ऊपर वाले ने इस भाव को मुझे लगता है सबसे प्रबल रूप में रखा है ना।
1: प्रेम ही तो एक ऐसा भाव है जिसके लिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए धरती पर आना चाहते हैं, वो जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत जज्बा होता है। और आपने कहा ना कि जितनी दूरी होती है उतनी करीबियत महसूस की जाती है, तो दूरी में ही सबसे बड़ी सुंदरता पाई जाती है। और यही दूरी वाला जो एक रिश्ता है अनदेखा सा हमारा, हमारे दोस्तों के बीच भी है, जो बहुत ही करीबियत से महसूस हम करते हैं। और आज भी हमने इन तीनों गीतों के जरिए जिसे बहुत गर्मजोशी के साथ महसूस किया है, जिया है।
0: तो इन नगमों के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जीवन के करीब ले आएं, इतने करीब कि जो बात जहन में चल रही होती है उसको धरातल पर भी महसूस करिए। क्योंकि ये जीवन जो ऊपर वाले ने दिया है बहुत अनमोल है, बहुत ही प्यारा सा है। जब हम उसे पूरी हिम्मत के साथ जीना शुरू करते हैं ना, यकीन मानिए वो जो मोतियों की बारिश होती है सच में होती है और महसूस होगी और उसका असर आपकी आंखों में दिखने लगेगा।
1: अभी तो असर दिखाई पड़ रहा है वक्त का, समय का। तो अभी समय हो चला है इजाजत लेने का, तो हम अपने दोस्तों से लेते हैं विदा।
2: बोलते नगमे, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर, वंदना राठौर नेहा गुप्ता का था, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। अभी कार्यक्रम समाप्त होता है, ये आकाशवाणी प्रयागराज है। 12 बज चुके हैं, अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे

0: वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said that trust and cyber security are becoming increasingly important in the global semiconductor value chain alongside cost considerations. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Mr. Vaishnav said that India aims to position itself as a trusted partner in semiconductor design, manufacturing and testing of finished products. The minister emphasized that developing a complete ecosystem is essential for sustainable manufacturing.
3: Materials are very important because that ecosystem takes a lot of time and effort to build. So we have to put in that extra effort to get that capability in our country in terms of understanding of the materials, handling of the materials, manufacturing them, processing them, storing them, using them in the chips or every other man.

7 0 4 4 4 6 0, रिपीट 8 1 2 7 0 4 4 6 0। एक और सूचना सुनिए। थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार साहिबा बेगम पत्नी मोहम्मद असलम पुत्र हयात अहमद निवासी 110/72 रसूलाबाद तेलियरगंज थाना शिवकुटी प्रयागराज। सूचित करते हैं कि साहिबा बेगम जो इनकी पत्नी हैं वो 30 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। उम्र 34 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। श्रोताओं, आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर और अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर। रात में 10:30 पर आपको सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग यमन में बांसुरी वादन और अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर उस्ताद शाहिद परवेज का राग तिलक कामोद में सितार वादन। संगीता भारद्वाज के गीत और भजन सुनिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर। बोलते नगमे, यह कार्यक्रम होगा 7:31 पर। स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:30 पर। इस कार्यक्रम में सह फसली खेती से लाभ, मुद्रा योजना पर चर्चा के अलावा परमदीन यादव और साथियों के गाय विकास गीत भी हम आपको सुनाएंगे। युवाणी रोज की तरह 5:15 पर। आज के प्रेरणा पुंज विष्णुगुप्त चाणक्य। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित होगा 2:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी 2:15 पर। मेरा हुनर मेरा व्यवसाय क्रम में आज हस्तशिल्प उत्पाद पर आपको जानकारी साझा की जाएगी। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रसारित होगा 12:30 पर। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। फिल्म संगीत सुनिएगा 10:00 रात 8:00 और दूसरी सभा के आरंभ में 5:00। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, आइए सुनते हैं उस्ताद शाहिद परवेज का राग तिलक कामोद में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विजय घाटे। तो आइए सुनते हैं उस्ताद शाहिद परवेज का राग तिलक कामोद में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद शाहिद परवेज का राग तिलक कामोद में सितार वादन, आपके साथ तबले पर संगत की विजय घाटे ने। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज
0: जी। राकेश जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कोई सा भक्ति गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा जी, बिल्कुल, आपको कोई भक्ति गीत सुनाएंगे। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, तो ज्यादातर हमारे श्रोताओं की फरमाइश देवी गीतों की हो रही है।
1: जी मैडम।
0: तो भाई, अब आपने फरमाइश की है तो आइए सुनवाते हैं आपको ये देवी गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैडम, संगम नगरी प्रयागराज हवलिया झोंसी से महेंद्रनाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: जी महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
0: जी,
1: और गाने के बोल है, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए।
0: बहुत ही पुराना गीत आपने पसंद किया है।
1: हाँ हाँ मैडम, पुराने गाने बहुत बढ़िया लगते हैं
0: जी,
1: और इसकी स्टोरी भी अच्छे रहते हैं सब जो है।
0: जी जी जी,
1: मैडम थोड़ा नाम भी आ लेंगे।
0: हाँ हाँ जरूर ले लीजिए।
1: शुभम कुशवाहा, शुभम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, दीपिका कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं 20 साल बाद फिल्म का ये गाना।
2: जरा नजरों से कह दो जी।

0: आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बताएं।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी,
1: गुतनी कुंडा प्रतापगढ़, मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ
0: जी। राजेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं अपनी सरमत को तो बताऊंगा, उससे पहले के सभी सुनने वाले श्रोताओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत
0: जी जी जी, बिल्कुल, आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी सुने, सबके बिगड़े काज सफारे, यही हमारी शुभकामना है। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है जय माँ वैष्णो देवी।
0: जय माँ वैष्णो देवी का कौन सा है गाना? है
1: धरती गगन में होती है तेरी जय जय।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते?
1: जी, श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति और प्रभारी मानो ओ ट्रक ड्राइवर के गीत नवरात्रि।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं जय माँ वैष्णो देवी से लिया गया ये देवी गीत।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हेलो, अपना नाम बताएं।
1: मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, SP बाल सुब्रमण्यम और लता जी ने गीत गाया है
0: जी,
1: आज शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई, ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी प्रयागराज के माध्यम से
0: जी। तो सुनवाएं आपकी पसंद का ये गाना
1: जी। नाम लेना चाहता हूँ, सर्वश्री हड़िया से हैं, प्रेम चंद यादव हैं
0: जी,
1: मीरापुर प्रयागराज से शिवानी जी हैं और भैया मेजा से हैं राकेश कुमार जी, और प्रयागराज के साथ साथ में प्रतापगढ़ के 3 श्रोताओं का नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले रोशनी जी हैं, दूसरा प्रभाकर जी हैं और राजेंद्र कुमार जी। इन सभी दोस्तों के साथ साथ में ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं लोकेन वर्मा, राजू यादव, इन दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी प्रयागराज से सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: तो आइए सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: सुरेंद्र यादव, पांका जलालपुर मऊ अइमा प्रयागराज
0: जी। मऊ अइमा से सुरेंद्र जी ने कॉल की है। तो सुरेंद्र जी कौन सा गीत सुनेंगे?
1: अवतार फिल्म का सुना दीजिए।
0: अच्छा,
1: खूब बढ़िया भक्ति गाना मैम माता जी के। जी
0: तो भाई अवतार फिल्म जी,
1: हाँ
0: बिल्कुल नवरात्र चल रहे हैं, तो अब आपने जिस गीत को सुनना चाहा है वो भी हम समझ गए हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
1: जी मैम,
0: तो चलिए आपको सुन

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नागमा का प्रोग्राम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: बुद्धि और विवेक ये दो महान शक्तियां हैं जो आपके कर्मों को तय करती हैं। किसी भी स्थिति में अपने विवेक को बनाए रखिए, निश्चित रूप से आप दिग्भ्रमित होने से बच जाएंगे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे, उसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी हमारे लखनऊ केंद्र से। बने रहे हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का

प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी जिक्र है। साबिक सदर रामनाथ कोविंद की किताब के इजरा में उनके अहले खाना जनाब योगी और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, असेंबली स्पीकर सतीश महाना समेत कई लीडर और वजीर मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज दो रोजा दौरे पर काशी पहुंच रहे। इंतजामी जराये के मुताबिक वह सहपहर 3:15 पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से जनता इंटर कॉलेज कुंछुआ जाएंगे। इसके बाद वो पुलिस लाइन के मैदान में वापस जाएंगे। वहां से वो एमएलसी इंतखाबात के लिए 8 अजला के असातजा और ग्रेजुएट वोटरों के अजीमुशान कन्वेंशन में शिरकत के लिए संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जाएंगे। वाराणसी कानून साज काउंसिल के असातजा और ग्रेजुएट हलकों के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। ये हलका 8 अजला पे मुश्तमिल है जिसमें बलिया के साथ वाराणसी और मिर्जापुर डिवीजन के अजला शामिल हैं। इसलिए वजीर आला का दौरा इंतखाबी नुक्ते नजर से अहम समझा जा रहा है। वजीर आला काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भी दर्शन करेंगे। रात भर आराम करने के बाद जनाब योगी कल 15 अक्टूबर को सफाई के कारकुनों को एजाज देंगे। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन उत्तर प्रदेश के अपने 4 रोजा दौरे के पहले दिन कल प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने प्रयागराज में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर में अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने मकामी सतह पर ऐसे प्रोग्राम बनाने की जरूरत पर जोर दिया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ सकें। इत्तला'आत और नशियात और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर मुमलकत एल मुरुगन ने कल अपनी वजारत और राज्यसभा की रुकनियत दोनों से इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत में उन्होंने कहा कि यौमिया उजरत वाले मजदूरों के खानदान से मरकजी काबीना में खिदमात अंजाम देने तक उनका सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर लिया। अवाम की खिदमत के जरिए कौम की खिदमत करना उनके सफर का बुनियादी मंत्र रहा है। खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के विजन के साथ हुकूमत 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ को हासिल करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी बाख्तियार बनाने के जरिए लोगों की जिंदगियों को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज इस खसूसी सीरीज में हम इस बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं कि GST काउंसिल जैसे इकदामात के जरिए इस विजन को किस तरह नाफिज किया जा रहा है।
1: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर GST देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। GST परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य GST पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल GST में किए गए नए सुधारों के तहत GST परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि GST के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
2: GST के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: नई दिल्ली में GST परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने GST के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है। पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज शारदीय नवरात्र के 4थे दिन देवी दुर्गा के कशमंडा अवतार की पूजा की जा रही है। इस मौके पर अकीदतमंद सुबह से ही रियासत भर के बड़े देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं और ये समय होता है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: को मैं शारदा
1: और मैं पूनम का प्यार भरा नमस्कार।
0: पूनम, समय का चक्र कितनी ही सुंदरता से आगे बढ़ती है ना। हर दिन किस तरह से हमारे सामने मौसम भी, मतलब जिस तरह से दिन बदलता है, सुबह शाम होता है, वैसे ही मौसम भी बदलता रहता है। धीरे धीरे देखो शरद का मौसम प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि के नौ रंग लेकर शुरू हो रहा है हमारा ये नई मौसम का आगमन। तो इतनी खूबसूरत मौसम का शुभारंभ हो रहा है और इतनी सुंदर वातावरण है चारों तरफ की पूछे ही नहीं। चारों तरफ तीज त्योहारों का पूरा पर्व है, धमाल है कि मजा ही आ गया है ना।
1: बिल्कुल,
0: आते आते जगह जगह देखो कितनी बाजारें सजी हुई हैं, चुनरी है तो माँ के नारियल है,
1: हाँ, माँ के पंडाल भी तो लगे हुए हैं,
0: पंडाल भी लगे हैं। तो चलो कुछ ऐसे ही सुंदरता वातावरण को और भी करते हैं और सुनाते हैं आप सबको एक गीत।

0: पूनम भाई, इतनी खूबसूरत गीत आज तुम्हारी पसंद का ये बजा है, सच में मन बिल्कुल शांत हो गया। और पता है,
1: क्या
0: आज हम अपनी चर्चा में लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए स्लिप मिक्सिंग। स्लिप मिक्सिंग का मतलब है कि अपनी नींद को, गुणवत्ता और समय को अधिक से अधिक बेहतर और गहरा परफेक्ट बनाने के लिए विभिन्न तरीकों, गैजेट्स और लाइफस्टाइल में बदलाव करना आज के लिए खास तौर पर जेन जी के बीच एक बड़ा ही सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है। वैसे स्लिप मिक्सिंग के कुछ मुख्य उपाय भी हैं, है ना?
1: जैसे कि कमरे को पूरी तरह से अंधेरा, शांत और ठंडा रखना, और सोने से 1-2 घंटे पहले फोन और स्क्रीन से दूरी बनाना।
0: गैजेट्स और तकनीक का उपयोग, जैसे कि नींद को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वॉच या स्लीप स्मार्ट रिंग, वाइट नाइट मशीन, कूलिंग पैड, स्लीप मास्क और रेड लाइट थेरेपी का इस्तेमाल करना, है ना?
1: साथ ही सोने से पहले मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स और कीवी फल खाना, और रात को सोने से कुछ घंटे पहले तरल पदार्थ जैसे कि कैफीन या फिर चाय, इन सब चीज़ों से दूरी बनाना। साथ ही गहरी सांस लेना और मेडिटेशन जैसे नुस्खे अपनाना।
0: बिल्कुल। और इससे फायदे अनेकों होते हैं कि इससे लोगों में नींद को लेकर के जागरूकता आती है। सही माहौल और रूटीन अपनाने के मतलब कि गहरी इसमें जो है कि अपनाने से गहरी और सुकून भरी नींद आ सकती है। वैसे नींद को लेकर के जरूरत से ज़्यादा सोचना या चिंता करना और भी बड़ी समस्या बन सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह से ये सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ वगैरह नींद की ना लें बिल्कुल ही, क्योंकि इससे अनेकों नुकसान भी हो सकते हैं।
1: हाँ, वैसे बहनों, यदि आपको अनिद्रा है तो कुछ नुस्खे जैसे कि मिलिट्री मेथड, चेहरे को आराम दें, कंधे और हाथ को नीचे करें, सांस छोड़ें और अपने मन को शांत करें, पैरों को आराम दें, दिमाग को भी शांत करें, अगले कुछ समय के लिए अपने दिमाग से सारे विचार हटा दें और किसी शांत, सुंदर और खुशनुमा जगह की कल्पना करें। ये है स्लीप मैक्सिंग के फायदे।
0: बिल्कुल। और देखो ना पूनम, अगर हम दिनचर्या अपना अच्छा रखें, मन को शांत रखें, मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें, वॉक करें, तो हमारे अंदर जो नींद की, जो अनिद्रा की जो परेशानी है, वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी दवा ना ले कि नींद नहीं आ रही है, तो चलो कोई दवाई ले लें कि आराम से सो सके। तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बिना सलाह से आप ऐसी कोई भी दवाइयाँ ना लें, ये होता ये है कि ये कुछ अपोजिट आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिससे जैसे कि मानसिक रोग, तनाव बहुत ज़्यादा होने लगता है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपने मन से अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, है ना?
0: बिल्कुल। और पूनम देखो ना कि कभी कभी ऐसा होता है, हमारा मन है, हमारा दिमाग है, हमारी शरीर है, कभी कभी ऐसा होता है कि अनिद्रता जो है कभी कभी कम हो जाता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें शरीर का भी बहुत ही वो होता है कि हमारी शरीर की कमजोरी या कुछ अधिकता होना, इससे भी जो है कि बेसमय कुछ अलग सा खा लेना, जिससे कि उसका भी शरीर पे कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो इसे इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया भी।

0: है कि इसके बारे में नींद को लेकर के अधिक चिंता करना ये सही नहीं है। थोड़ी आप अपने आदतों को सुधारिए और थोड़ी परेशानी उतार चढ़ाव लगा ही रहता है ना?
1: यानी कि इन छोटे छोटे उपायों को करके हम स्लीप मैक्सिंग जैसी समस्याओं से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और पूनम देखो ना, नवरात्रि का पर्व चल रहा है ना, और कितना सुंदर लगता है चारों तरफ माँ भगवती का आगमन, घर घर माता की आरती, पूजा अर्चना, हवन सब कुछ होता रहता है। और हम लोगों का तो आज इस गृहलक्ष्मी के मंच से यही प्रार्थना है कि माँ सभी के दुख को दूर करें, सबको संपन्नता दे, सुख दे, शांति दे। तो आज हम कुछ ऐसी ही वार्ता लेकर आए हैं, शारदीय नवरात्रि का महात्म्य। वार्ताकार हैं शुरभा पांडे जी, तो आइए सुनते हैं वार्ता।
2: बहनों, हमारा देश अनेकता में एकता का अद्भुत संगम है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषा व संप्रदाय के लोग इस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं जैसे विभिन्न रंग के फूलों को एक माला में पिरो दिया गया हो। सभी संप्रदायों की अपनी अलग अलग सांप्रदायिक विरासत है जो भिन्न भिन्न त्योहारों के द्वारा प्रकट होती है। यही कारण है कि यहाँ साल भर त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है। भारत को अगर हम त्योहारों और पर्वों का देश कहें तो बहनों अतिशयोक्ति ना होगी। वर्ष भर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों से सजे धजे त्योहार लोगों के जीवन में उल्लास भरते रहते हैं। ये पर्व ही है जो अनेकता में भी एकता का एहसास कराते हैं और सभी को एक सूत्र में बांधते हैं। कभी हिंदुओं की दिवाली, दशहरा या होली के रूप में, तो कभी मुसलमानों की ईद और बकरीद के रूप में, कभी ईसा के जन्मदिन की चहल पहल होती है तो कभी वैशाखी पर्व के रूप में ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई देती है। इन सामाजिक एवं धार्मिक पर्वों के अलावा हमारे कुछ राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती आदि भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार स्वयं में एक अर्थ एवं उद्देश्य लिए होते हैं जिसके कारण इनकी महत्ता युगों युगों तक कायम रहेगी। बहनों, अगर विविधता का अपना सौंदर्य है तो त्योहारों का भी अपना महत्व है। ऐसे में अगर विविधतापूर्ण भारत के त्योहारों का उल्लेख आएगा तो नवरात्रि जैसा पावन अवसर सर्वप्रथम है। दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक लोक परंपरा एवं आस्था के मजबूत धागे से गुथा है नवरात्रि का ये त्योहार। शरद ऋतु में होने वाले नवरात्रि एवं दशहरे की धूम एवं भव्यता तो बस देखते ही बनती है। शरद ऋतु की शुरुआत को जलवायु परिवर्तन और सूरज के प्रभाव का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इस समय को माँ दुर्गा की उपासना का पवित्र अवसर मानते हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा ऊर्जा और शक्ति को समर्पित की जाती है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। बहनों, नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी माँ दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। तप एवं ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाली अर्थात ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ भगवती के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की अर्चना की जाती है। देवी चंद्रघंटा को स्वरों की देवी भी कहते हैं। सिंह पर सवार होकर सूर्यलोक में वास करने वाली माँ दुर्गा अपने चतुर्थ रूप में माँ कुष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं। बहनों, माँ दुर्गा 5वें दिन अपने ममतामयी स्वरूप में शेर पर सवार होकर स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। सोने के समान चमकीले अपने दिव्य रूप में अमोघ फलदायिनी माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6ठे स्वरूप में की जाती है। बहनों, 7वें दिन माँ भगवती का कालरात्रि के रूप में आह्वान कर विशिष्ट पूजा की जाती है। उस स्वरूप में माँ का रंग काला होता है। अत्यंत श्वेत वर्ण वाली माँ गौरी दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा का विशेष विधान है। बहनों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना का विधान है। इस रूप में माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं और मांगों को पूरा करती है। माँ का पहला, दूसरा और तीसरा रूप बुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की प्रतिबद्धता का रूप है।

रात्रि में माँ की लक्ष्मी, समृद्धि, संस्कृति, शक्ति, कला एवं ज्ञान की देवी के रूप में भी पूजा की जाती है। बहनों, नवरात्रि का यह पर्व वास्तव में नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। इस जगत का संचालन पूर्ण रूप से नारियों द्वारा होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पर अवश्य आती है। वसंत ऋतु और शरद ऋतु अर्थात साल में दो बार आता है नवरात्रि पर्व, परंतु शारदीय नवरात्र का अधिक महत्व होता है क्योंकि इसके साथ कई अन्य पर्व भी आ जाते हैं। ये ऋतु परिवर्तन का भी पर्व है क्योंकि ऋतु परिवर्तन होगा तो शरीर के साथ ही मन की अवस्था में भी बदलाव आता है, मन अध्यात्म की ओर जाने लगता है। ये एक सकारात्मक बदलाव होता है। बहनों, 9 दिन तक मनाए जाने वाले नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है। समापन दशहरे यानी विजयादशमी के रूप में होता है। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार। नवरात्रि के दौरान देश के कोने कोने में एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है एवं भक्तिमय माहौल सभी को आस्था के रंग में रंग देता है। एक तरफ बंगाल में माँ दुर्गा के शक्ति रूप की स्थापना की जाती है, चारों ओर दुर्गा पूजा की धूम रहती है, तो गुजरात में दुर्गा पूजा और नवरात्रि का अलग महत्व होता है। यहाँ के लोगों के लिए ये पर्व सिर्फ माँ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का नहीं बल्कि त्यौहार के आनंद उठाने का भी अवसर होता है। यहाँ 9 दिनों तक माता का पंडाल सजाया जाता है। लोग घाघरा, चोली, केडिया आदि पारंपरिक वस्त्र पहनकर डांडिया एवं गरबा खेलते हैं। युवाओं के लिए ये पर्व अपनी संस्कृति से जुड़ने और समझने का सुनहरा अवसर होता है। बहनों, नवरात्रि पर घर घर कलश स्थापना, माँ दुर्गा की स्तुति, शंख एवं सुमधुर घंटियों की आवाज, धूप बत्तियों की सुगंध एवं कन्या पूजन, ये 9 दिन तक चलने वाले साधना पर्व का चित्रण है। शारदीय नवरात्रि में रामलीला, रामायण, भागवत पाठ, अखंड कीर्तन जैसे सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों का भी बड़ा महत्व होता है। जगह जगह हर्षोल्लास के साथ माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है, रामलीला का मंचन होता है। यही कारण है कि इस दौरान प्रत्येक इंसान एक नए उमंग और उत्साह से भर जाता है। बहनों, वैसे तो ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर सदा ही रहता है, परंतु कुछ विशेष अवसरों पर उनके प्रेम एवं कृपा का लाभ हमें अधिक मिलता है। पावन पर्व नवरात्रि में माँ की कृपा सृष्टि की सभी रचनाओं पर समान रूप से बरसती है। इन दिनों में लोग अपनी मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन एवं योग साधना आदि करते हैं। नवरात्रि में माँ की आराधना से तन मन संतुलित होकर अपनी आराध्या देवी के चरणों में स्थिर हो जाता है। नवरात्रि के दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में दशहरे का उत्साह भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में श्री राम ने महाशक्ति की पूजा कर अपनी खोई हुई शक्ति पाई थी, इसीलिए इस समय आदिशक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम के कारण विजयादशमी भी कहते हैं और इस दिन को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। ये त्यौहार हमें अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। नवरात्र का कालखंड अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान, परिवार व समाज में स्त्री के सम्मान तथा अपने आत्मिक बल के विकास हेतु भी प्रेरित करता है। लेकिन बहनों, ये सोचने की बात है कि भारतीय संस्कृति में स्त्री देवी के रूप में पूजी जाती है। अधिकतर पुरुष वर्ग ही उसे पूजता है, किंतु देवी स्वरूपा स्त्री अपने घर, परिवार और समाज में उसी के हिंसा, उपेक्षा और यातनाओं की शिकार होती है। देवी के रूप में स्थापित मिट्टी की प्रतिमा को तो वो बड़े ही पवित्र भाव से सहेजता है, संवारता है और पूजता है, और उसके खंडित या अनादर होने के भय से 10वें दिन ससम्मान जल में विसर्जित कर देता है। परंतु दैवीय गुणों से संपन्न घर की स्त्री के मान सम्मान की या भावनाओं की उसे कोई चिंता नहीं रहती। वर्तमान परिवेश में नारी दया, त्याग, करुणा, ममता आदि की प्रतिमा मात्र नहीं है, वो घर बाहर का दोहरा दायित्व निभाती हुई पुरुषों से कहीं आगे निकल चुकी है। और ये भी सर्वविदित है कि बहनों कि वो भी देवी की तरह ही माँ के रूप में सृजन, पालन और संरक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है। ऐसे में क्या वो सम्मान, स्नेह और विश्वास की अधिकारिणी नहीं है? बहनों, अब शक्ति के उपासकों को ये सोचना चाहिए कि जिससे वे स्थायी रूप से विकारों और दुर्गुणों से मुक्त हो जीवन को पवित्र व दिव्य बनाएं।
ज्ञान व सद्गुणों से परिष्कृत कर देवी स्वरूपा स्त्री की गरिमा को पुनर्स्थापित करे तो उनका जीवन ही शक्ति का प्रतिरूप बन जाए।

0: का वास्तव में वर्तमान परिवेश में इसे नारी के विरुद्ध होने वाले अत्याचार, अन्याय, हिंसा को रोकने के संकल्प का पर्व बनाना चाहिए। यही कामना है कि शारदीय नवरात्र का यह पावन पर्व मानव को आसुरी शक्तियों से मुक्त कर ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करे जो अपनी सोच में माँ से सकारात्मक सोच और ऐसी ऐसी ऊर्जा मांगे जो उसे संसार में व्याप्त आपदाओं, विसंगतियों और विडंबनाओं को दूर कर एक शांत, सुखमय और पवित्र संसार की सर्जना में सहायक हो। बहनों, हमारे त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं हमारा गौरव है। इन त्यौहारों की अच्छाइयों एवं इसमें निहित उच्च आदर्शों को अपनाकर उत्तम चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। हमें पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहारों को मनाना चाहिए और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे की भावनाएं आहत हों। निसंदेह इसी प्रकार हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए परिवार एवं समाज को जोड़कर गौरवशाली भारत का निर्माण कर सकेंगे। आप सभी बहनों को नवरात्रि एवं दशहरा पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे शारदीय नवरात्रि का महात्म, वार्ताकार थी डॉक्टर सुलभा पांडे।
2: और देखो ना पूनम, कितनी अच्छी बात, कितना सविस्तार से, कितनी सुंदर वार्ता थी ना। यार, एक नारी के बारे में से लेकर के हमारे समाज के बारे से लेकर के देवी के महात्म्य और विजयदशमी के बारे तक में सब कुछ एकदम से एक एक कितना विस्तार से इन्होंने सुलभा जी, डॉक्टर सुलभा जी ने बताया है ना।
1: बिल्कुल।
2: और माता का इतना सुंदर विवरण हो और कोई गीत ना हो, भाई ये तीज त्योहार का समय ही चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो चलिए आइए सुनवाते हैं आप सबको ये गीत।

0: इस प्यारे से गीत के साथ अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज हम मेरा हुनर मेरा व्यवसाय में लाए हैं हस्तशिल्प उत्पाद।
1: और अभी तो देखो ना पूनम, हम लोग बात ही कर रहे थे भाई कि जगह जगह इतनी मार्केट लगी हुई है कि पूछो ही नहीं कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं हाथों से बनी हुई, वो भी है ना, कि और जैसे कि सुंदर सुंदर रंगी चुंगी सी टोकरियां हैं, अच्छे अच्छे से फूल हैं, है ना। तो ये हस्तशिल्प क्यों ना हम हमारी श्रोता बहनें अपने अपने हुनर अपने व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करें। इसमें बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि बहनों भारत अपनी एक समृद्ध संस्कृति और परंपराओं और हस्तशिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में ही प्रसिद्ध है, है ना। यहाँ की महिलाएं प्राचीन समय से ही सिलाई कढ़ाई बुनाई मिट्टी के बर्तन बनाना और डिजाइनर टोकरियाँ भी तैयार करती हैं, लकड़ी पर नक्काशी करना, आभूषण बनाना और सजावटी वस्तुएँ जैसे तैयार करना जैसे उनकी कलाओं में कुशल रही हैं, है ना।
0: हाँ, और साथ ही हस्तशिल्प केवल कला और संस्कृति का ही प्रतीक नहीं है बल्कि यह हमारे लिए रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन चुका है। यदि महिलाएं अपनी कला को सही योजना, आधुनिक तकनीक और बाजार की मांग के साथ जोड़ें तो वो इसे एक सफल व्यवसाय के रूप में भी बदल सकती हैं।
1: बिल्कुल, हस्तशिल्प की उत्पादों की विशेषता यह है कि इसमें कलाकार की मेहनत, रचनात्मकता और स्थानीय संस्कृति दिखाई देती है। आज बहुत से लोग मशीन से बनी वस्तुओं के बजाय हाथ से बनी अनोखी वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं, है ना। इसलिए हस्तशिल्प उत्पादों के द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक अच्छा अवसर बन सकता है।
0: हाँ, और साथ ही इसमें सबसे पहले ज़रूरी है अपनी कला और रुचि को पहचानना। हमें अपनी कला के अनुसार ऐसे उत्पादों को चुनना चाहिए जिन्हें हम अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार कर सकते हैं। साथ ही आकर्षक डिज़ाइंस, पैकिंग लागत और बिक्री के तरीकों की जानकारी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए यह जानना भी बहुत ही आवश्यक है कि ग्राहक क्या खरीदना चाहते हैं। हमें अपने आसपास के बाजारों, मेलों, दुकानों और ऑनलाइन मंचों पर बिकने वाले हस्तशिल्प उत्पादों का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए।
1: उदाहरण के लिए त्योहारों के साथ सजावटी दीपक, तोरण, मोमबत्तियाँ उपहारों की मांग बढ़ जाती है। विवाह के अवसर पर कढ़ाई वाले आभूषण और सजावटी सामान काफ़ी लोकप्रिय हो सकते हैं। कम पूंजी में व्यवसाय की शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। महिलाएं पहले सीमित संख्या में उत्पादन तैयार करने ताकि उसका बिक्री का अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। इससे जोखिम की संभावना कम रहती है, ग्राहकों की प्रतिक्रिया के अनुसार सुधार करने का अवसर भी मिलता है।
0: और बाज़ार की मांग की जो भी वस्तुएं या जो भी चीज़ें डिमांड में हैं वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑनलाइन माध्यम से बिक्री का भी अच्छा ऑप्शन उपलब्ध है। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता और आकर्षक पैकिंग पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो सकता है क्योंकि सही कीमत और लाभ का भी निर्धारण करें। सरकारी योजनाओं और बाजारों का लाभ जैसे कि त्योहारों या स्थानीय जो प्रदर्शनियां लगती हैं, हस्तशिल्प मेले लगते हैं, स्कूल में बहुत सारे आयोजन होते हैं और त्योहारों के समय बाज़ार में जो रौनक होती है उन सब चीज़ों को लेकर अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
1: हस्तशिल्प उत्पाद महिलाओं के लिए व्यवसाय और आत्मनिर्भरता का एक प्रभावशाली माध्यम है। हर व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई हुनर तो होता ही है, आवश्यकता केवल उस हुनर को पहचानने और निखारने की सही अवसर से जोड़ने की है। हस्तशिल्प उत्पादों के माध्यम से हम भारतीय कला और संस्कृति को भी देश विदेश में नई पहचान दिला सकते हैं, है ना पूनम। और देखो ना कि हस्तशिल्प अगर बस एक ज़रूरत, एक छोटी सी कोशिश की, कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत ही परिपक्व है भाई,

0: धीरे धीरे कोशिश करके ही सफलता मिल सकती है।
1: और
0: तो चलो
1: शुरुआत तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है ना।
0: तो चलो इतनी अच्छी बात के बाद, बातचीत के बाद, आइए सुनाते हैं आप सबको ये गीत।

0: खूबसूरत फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम वापस आ गए अपने प्रोग्राम गृहलक्ष्मी में। आज हम लेकर आए हैं गृहलक्ष्मी टिप्स।
1: हाँ, और गृहलक्ष्मी टिप्स में है फ्री गिफ्ट वाले QR कोड से बचे, है ना पूनम? देखो ना, आजकल फोन पर कितना धांधली चल रहा है भाई कि कुछ भी मंगाओ, कुछ भी करो, तो वो इस तरीके से ऑफर देते हैं कि आप जो है कि मतलब दिखाएंगे 10-20 हज़ार रुपए की साड़ी और बोलेंगे कि 5,000 में लीजिए और तुरंत QR पर ऑनलाइन 5,000 फ्री और पता लगा कि हम इस QR पे तुरंत आप पैसे भेजिए, तुरंत ये वो, तो ये सब एक धांधली है, ये एक लूटने का एक धंधा है। तो इसमें जो है कि आज के इस डिजिटल युग में जो है मोबाइल फोन या इंटरनेट और अनावश्यक भुगतान वाले हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है ना। महिलाएं घर बैठे ही खरीदारी करके बिजली का बिल जमा करके पैसे भेजने और विभिन्न अनावश्यक सेवाओं का लाभ उठाने में डिजिटल तकनीक का उपयोग करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे समय और मेहनत दोनों ही बचत हो जाती है। जैसे कि महिलाएं घर में ही ज़्यादा व्यस्त रहती हैं तो बाहर निकलने से भी थोड़ा बचती हैं, तो सोचती हैं कि हाँ चलो इतने में ही अगर हमारा घर में ही काम हो जाता है तो कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सुविधाएं तो हैं, पर इसके साथ असुविधाएं भी बहुत सारी उत्पन्न हो गई हैं।
0: यानी कि इस ऑनलाइन शॉपिंग के चलते धोखाधड़ी का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल लोगों को मुफ्त उपहार, इनाम, कैशबैक और विशेष ऑफर का लालच देकर नकली QR कोड स्कैन करवाने की कोशिश की जा रही है, है ना?
1: इसलिए हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि फ्री गिफ्ट वाले QR कोड की पहचान कैसे करें और ऑनलाइन ठगी से खुद को कैसे सुरक्षित रखें। मुफ्त उपहार के लालच से में ना आए भाई सबसे पहले तो।
0: और हर मुफ्त उपहार का संदेश जो होता है वो सच नहीं होता। यदि किसी अनजान नंबर से संदेश आए कि आपने कोई प्रतियोगिता जीती है या आपको हजारों रुपए का उपहार मिला है, तो तुरंत विश्वास ना करें। उसमें अपना भी दिमाग लगाएं कि क्या आपने ऐसा कुछ फॉर्म भरा है, आपने ऐसा कुछ काम किया है या नहीं किया है। खास करके उन संदेशों पर जिसमें लिखा हो कि इनाम केवल कुछ मिनटों या घंटों के लिए उपलब्ध है, या फिर तुरंत QR कोड स्कैन करें, नहीं तो आपका पुरस्कार या फिर आपका इनाम रद्द हो जाएगा।
1: ऐसे लोग अक्सर कर सोचने का समय नहीं देते ताकि वो बिना ही जांच किए ही जल्दबाजी में गलती कर बैठे। QR कोड स्कैन से पहले जांच जरूर ही करें। पैसे प्राप्त करने के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: और श्रोताओं, नकली और असली ऑफर की पहचान अवश्य करें। महिलाओं को, परिवार और बच्चों को भी जागरूक कराना बहुत ही जरूरी है। इस सिलसिले में मोबाइल और बैंक खाते को सुरक्षित रखें, डिजिटल साक्षरता इससे बढ़ेगी, लेकिन ऑनलाइन का उपयोग करें लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ, और फ्री गिफ्ट वाले QR कोड से हमेशा बचने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल, और पूनम देखो ना, ये जागरूकता बहुत ही जरूरी है। अधिकतर कर हमारी बहनें ऐसी गलती कर जाती हैं कि किसी भी चीज़ की जल्दबाजी या कुछ ऐसा, ये इस तरीके से बातें करते हैं कि अपने बातों में बहुत ही सरलता से महिलाओं को खास तौर से और बच्चों को फंसा लेते हैं, तो इस चीज़ से बचें, है ना? तो चलो, इतनी सुंदर और अच्छी जानकारी के बाद एक और गीत सुनते हैं।

0: तो भाई नवरात्रि के खूबसूरत नौ रंग माता रानी का साथ और इन सब के साथ आज के कार्यक्रम अब हमारा समाप्त हो रहा है, समय भी समाप्त हो रहा है। चलते चलते बहनों, हमारा कार्यक्रम कैसे लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। और अब हमें विदा दीजिए, मैं शारदा को और
1: मैं पूनम को
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: markets, saying it is intended to ease high fuel prices and is not meant for the United States. Trump said last Friday that Russia will supply more than 3 lakh tons of diesel, followed by 5 lakh tons in November and 1 million tons thereafter. The U.S. Treasury Department issued a temporary license easing sanctions on Russian diesel shipments until 7th of April 2027. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Jammu and Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu and Puducherry for the day. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied with hailstorm over Haryana, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Punjab and West Rajasthan till Friday. IMD said that thunderstorms accompanied by lightning and lightning over Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan and Vidarbha, Himachal Pradesh, Keralam and South Interior Karnataka during the next 2 days. In men's cricket, India will face West Indies in the fourth T20 International in Hyderabad today. The match will begin at 7 p.m. Indian time. India lead the five-match series 2-1 after defeating West Indies by 14 runs in the third T20I in Indore last Sunday. In badminton, Tanvi Sharma and Kidambi Srikanth progressed to the second round of the Denmark Open 2026 after securing hard-fought victories in their opening matches. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% down in afternoon session today. Sensex fell 351 points to 72,682, while Nifty lost 125 points to 22,598 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dipped marginally, while small-cap 100 index declined 0.2% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India proposes developing joint India-ASEAN research agenda focused on maritime security and emerging technologies. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says, world is moving towards new international order with wide range of countries playing greater role in global affairs. Wholesale price index inflation rises to 11.39% in September this year. IMD forecasts heavy rainfall over Jammu Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu and Puducherry for today. And in cricket, India to take on West Indies in 4th T20 International in Hyderabad today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
2: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
1: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा

0: साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुँच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 ट्रिलियन थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 ट्रिलियन की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 ट्रिलियन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
0: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
3: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
4: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
5: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर

0: रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1,500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच TB के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि TB के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत में TB के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। TB मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को TB से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में TB की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं TB के भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
3: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में 2 सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ

0: ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। तो आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत

कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहें लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी, और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि यह काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं। साथियों, वो था ग्रेफाइट, यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था। हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे। यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB। तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक। इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई। समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए।
क्या आपके

में यह प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा। तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया

जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के

फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

अंत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय

0: अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: सीमा प्रहरी
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। अपराह्न के 3 बज चुके हैं और इसी के साथ संपन्न होती है हमारी ये सभा। शाम की सभा फिल्म संगीत से आरंभ होगी 5 बजे। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

सोनाली, बच्चे कहते हैं आजकल कि हमें ये तो यकीन है कि अभी शादी हमें नहीं करना है। और एक संदेश ये कहता है कि विगत सालों से सोशल मीडिया और खबरों ने शादी विवाह के मामले में ऐसा दहशत फैला दिया है कि लड़के लड़कियां क्या माँ बाप भी बेहद सहम गए हैं। बच्चों की शादियों की बातों से वो भी डरने लगे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, सभी की कहानी एक समान होती जा रही है। कई सालों तक साथ रहने के बाद भी वैवाहिक जीवन का जो सुनहरा रंग है वो बदलता जा रहा है। यहाँ पर दबाव की ही नहीं, यहाँ बातचीत

0: है कि शुरू से ही लड़के लड़कियों के दिमाग में बैठाना होगा कि वैवाहिक सूत्र दाम्पत्य जीवन एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें दो परिवार बनते हैं, दो लोग मिलते हैं, परिवार बढ़ता है और कई तरह की जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो ये जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही।
1: एक हमारे साथी ने कहा है, आज के युवा वैवाहिक जीवन से ज्यादा करियर पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। वे मानते हैं कि शादी कर लेने से घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी और करियर खत्म हो जाएगा। अभी कुछ कमा कर पग भर हो जाए तभी शादी तो बाद में होगी। मेरे घर में भी मेरी बेटी 29 साल की हो गई पर शादी से मना कर रही है और नौकरी के साथ साथ एग्जाम भी दे रही है ताकि और बेहतर नौकरी कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत कर रही है, पर शादी की ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद में ना बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं। शारीरिक
0: बिल्कुल
1: बदलाव आ जाते हैं, मानसिक बदलाव आ जाते हैं। फिर वो एक उम्र के बाद में ना जो महिला है या पुरुष यानी लड़के लड़के कोई भी एक दूसरे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा। और इसी तरह की सोच की एक और संदेश है कि आज के युवा, उन्होंने लिखा है, दोनों महिला और पुरुष अपने करियर और वित्तीय स्थिरता को पहली प्राथमिकता देते हैं। वे शादी से पहले एक मजबूत बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, जिससे जिसके कारण विवाह में देरी होती है या युवा इससे बचते हैं। और एक और संदेश कहता है कि आधुनिक युवा अपनी जीवन शैली, प्राइवेसी और आज़ादी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके व्यक्तिगत विकास और सपनों में बाधा बन सकती है। बढ़ते तलाक के मामले और रिश्तों में अस्थिरता, समाज में टूटते हुए परिवारों और कोर्ट कचहरी के मामलों को देखकर युवाओं के मन में विवाह जैसी संस्था के प्रति एक

0: अदृश्य डर बैठ गया है। ये बात सही है कि कभी कभी अगर ये मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है तो जो बच्चे जिनकी शादी होने वाली होती है तो वो बहुत डर जाते हैं। और अगर घर में ही कुछ आपके घर में इस तरह का कोई आपने किस्सा देख लिया हो या आपके रिश्तेदारों में तो और डर बैठ जाता है कि अरे भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, अभी हमें थोड़ा वक्त दीजिए।
1: अब ये जो आज का जो मुद्दा है ना, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा, थोड़ा सा हमारा मन भी भारी हो गया बात करते करते, क्यों ना व्यंजन की ओर बढ़ा जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शकरकंद के व्यंजन। तो एक हमारे साथी ने लिखा है, शकरकंद को उबालें, स्टीम कर लें, ठंडा होने पर इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक को मोटा दरदरा कूट लें। अगर फलाहार बनाना है तो इसमें सेंधा नमक और नींबू, कूटी मूंगफली के मसाले मिलकर चटपटा शकरकंदी तैयार है। और इसे मीठा भी बना सकते हैं ना, तो उसे मीठे को उबाल के उसको छोटे यानी मीठा भी खा सकते हैं। तो उबले शकरकंद को टुकड़ों में काट ले, थोड़ा सा घी में भून ले, कढ़ाई में गुड़ को पिघला ले, उसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर उलट पलट कर सुखा ले, मीठे शकरकंदी तैयार है। आप इसे घी में भुनना नहीं चाहते तो ऐसे भी गुड़ में बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब एक गीत
0: सुन सकते हैं।

0: बार में बच्चे नहीं सुन रहे, उन्हें ये गीत सुनाइए जहाँ पे उन्हें से बताइए कि एक छोटा सा बंगला बनाकर एक नई दुनिया बसाए जो बहुत खूबसूरत है।
1: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
2: सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई
0: और ये गीत

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आया सावन झूम के। हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के सनम का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म डेंजरस इश्क से। आवाज़ें राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की।

0: और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

नमस्कार, आदाब और एक बेहद शानदार शाम का सलाम आप सभी को। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज से आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, कभी गौर किया है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, लेकिन उनके बिना हमारा काम रुक सकता है। सुबह का अलार्म हो, मोबाइल चार्जर हो, घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो या फिर रोज़ की शॉपिंग, हर जगह हम चाहते हैं कि चीज़ें सही ढंग से काम करें। अब मज़ेदार बात यह है कि जब सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार होता है ना, तो हमें शायद ही कभी उसके पीछे की मेहनत का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी प्रॉब्लम सामने आती है, हमें समझ आ जाता है कि छोटी दिखने वाली चीज़ें भी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वैसे दोस्तों, जब हमारी लाइफ भी ना कहीं थोड़ी मोड़ी ऐसी ही है, कभी छोटी सी अच्छी खबर पूरे दिन का मूड बदल देती है और कभी किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात यादगार बन जाती है, तो कभी कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी बात समझा देती है जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। और रेडियो की तो यही खूबसूरती है दोस्त,

यहाँ मुलाकात के लिए किसी फॉर्मल इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक फ्रीक्वेंसी पर मिली और बातचीत का सिलसिला शुरू। भले ही हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन विचारों, किस्सों और संगीत के जरिए एक दूसरे से जुड़ जरूर सकते हैं। तो आज की इस मुलाकात को भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कुछ नई बातें जानेंगे, कुछ पुरानी परंपराओं को एक नए पर्सपेक्टिव से समझेंगे और इतिहास के एक ऐसे महान विचारक से परिचित होंगे जिनका नाम आज भी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, अपने रेडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि आज की शाम में इन्फॉर्मेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है और म्यूजिक का खूबसूरत साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युववाणी। अब सबसे पहले तो आप एक छोटी सी सिचुएशन पे गौर करिए। फॉर एग्जांपल, आपने ऑनलाइन एक नया मोबाइल चार्जर ऑर्डर किया, ठीक है, पैकेज आया, आपने बहुत ही एक्साइटमेंट से उसे खोला, लेकिन जैसे ही फ़ोन लगाने में आपने कोशिश करी कि उस चार्जर को फ़ोन में लगाएं, पता चला कि उसका कनेक्टर आपके फ़ोन से मैच ही नहीं करता। आप सोचिए, इतनी सी चीज़ के वजह से कितना समय वेस्ट हो गया। या आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि आप बाज़ार से 1 किलो चीनी खरीदते हैं, दुकानदार आपको पैकेट देता है और आप उसे लेकर घर आ जाते हैं सिंपली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पैकेट में सचमुच 1 किलो चीनी है या नहीं? ये सुनिश्चित करने के लिए किसी भरोसेमंद मेजरमेंट सिस्टम का होना ज़रूरी है ना। या फिर घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ही ले लीजिए, हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित हो, सही ढंग से काम करें और उनकी क्वालिटी ऐसी हो कि बार बार परेशानी ना हो। लेकिन इन सब के लिए केवल मैन्युफैक्चरर के दावे पर भरोसा करना इनफ है क्या? अब सोचिए, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए, हर मैन्युफैक्चरर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स तैयार करे और सेफ्टी की कोई कॉमन गाइडलाइंस ही ना हो, तो क्या होगा? शायद हमारी शॉपिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर जगह कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। और यहीं से सामने आता है एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक। ये ऐसे निर्धारित टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या गाइडलाइंस होते हैं जिनकी मदद से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल, सेफ और कंपैटिबल बनाने का प्रयास किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि स्टैंडर्ड्स हमारी लाइफ में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हम अक्सर इनके बारे में तभी सोचते हैं जब कोई चीज़ हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। तो आखिर ये स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है? इनका हमारी सेफ्टी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है? और दुनिया भर में इनके महत्व को समझाने के लिए एक स्पेसिफिक दिन क्यों मनाया जाता है? इन्हीं सवालों से जुड़ा है आज की हमारी चर्चा का विषय, विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। लेकिन दोस्तों, इस विषय को हम डिटेल में समझने से पहले आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, और गीत के बाद जानेंगे कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे क्यों मनाया जाता है और इसकी 2026 की ऑफिशियल थीम हमारे फ्यूचर से किस तरह जुड़ी हुई है।

वेलकम बैक दोस्तों। गीत से पहले हम बात कर रहे थे उन छोटी छोटी चीज़ों की जिन पर हमारी रोज़मर्रा की लाइफ काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विषय, विश्व मानक दिवस। दोस्तों, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य दुनिया भर में स्टैंडर्ड्स तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स के योगदान को सम्मान देना और लोगों को ये समझाना है कि क्वालिटी, सेफ्टी और स्टैंडर्डाइजेशन हमारे जीवन में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इस दिन को मनाने से तीन प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं, ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, IEC यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, और ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये संस्थाएँ अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विकसित करने और उनके लिए विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर स्टैंडर्ड होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टैंडर्ड एक ऐसा तय किया गया रेफरेंस या टेक्निकल गाइडलाइन होती है जिसके बेसिस पर किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सेफ्टी या कंपैटिबिलिटी से जुड़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तय की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। और एग्जाम्पल के हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो केवल उसका डिज़ाइन ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये भी ज़रूरी होता है कि वो सुरक्षित ढंग से काम करे और निर्धारित टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ हो। और इसी तरह अलग अलग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बीच कंपैटिबिलिटी बनाने में भी कॉमन स्टैंडर्ड्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ज़रा अपने घर की तरफ ध्यान दे लीजिए, किचन में इस्तेमाल होने वाला जो प्रेशर कुकर है, बिजली का स्विच हो गया, फैन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन सभी के लिए जो भी क्वालिटी है और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जब मैन्युफैक्चरर्स संबंधित स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं और प्रोडक्ट्स की सही टेस्टिंग होती है तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों, स्टैंडर्ड्स केवल कंज्यूमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनका इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस में भी गहरा कनेक्शन है। जब मैन्युफैक्चरिंग में कॉमन स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल होता है तो प्रोडक्ट्स की

क्वालिटी में कंसिस्टेंसी बनाए रखने और एरर्स कम करने और अलग अलग मार्केट्स में बिजनेस को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। यानी स्टैंडर्ड्स का कनेक्शन केवल टेक्नोलॉजी से नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड से भी है। अब भारत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और BIS भारत की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो इंटर स्टैंडर्ड्स के विकास और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और क्वालिटी से संबंधित विभिन्न कार्य करती हैं, यानी कि इन रेफरेंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और आपने कई प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क देखा होगा, ये BIS की प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम से जुड़ा एक पहचान चिन्ह है जो संबंधित इंडियन स्टैंडर्ड के अनुरूप होने का संकेत देता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर प्रोडक्ट के लिए ISI मार्क अनिवार्य नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सरकार द्वारा निर्धारित क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, जबकि कई अन्य स्टैंडर्ड्स वॉलेंट्री भी होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जब हम बात करें गोल्ड ज्वेलरीज की, तो गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय BIS हॉलमार्किंग का महत्व सामने आता है। हॉलमार्किंग का उद्देश्य गोल्ड या अन्य संबंधित प्रेशियस मेटल्स की प्योरिटी के बारे में कंज्यूमर को भरोसेमंद जानकारी देना है, और भारत में हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पर मौजूद HUID नंबर की ऑथेंटिसिटी BIS केयर ऐप के माध्यम से वेरीफाई की जा सकती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या स्टैंडर्ड्स केवल फैक्ट्रीज और प्रोडक्ट्स तक ही लिमिटेड हैं? बिल्कुल नहीं, हेल्थ केयर, फूड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों में भी स्टैंडर्ड्स महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ उसकी जो रिलायबिलिटी है और सेफ्टी है वो कितनी ज़रूरी होगी, ये भी हम समझ सकते हैं इसी से। और इसी तरह फूड प्रोडक्शन की बात करें और स्टोरेज में हाइजीन और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स का भी अपना एक अलग महत्व है। और दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में तो स्टैंडर्ड्स की भूमिका और भी बढ़ गई है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डेटा एक्सचेंज और अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए कॉमन टेक्निकल फ्रेमवर्क बेहद उपयोगी माना जाता है। और दोस्तों, अब हम जब आते हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2026 के थीम पर, तो इस साल की ऑफिशियल थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्पॉटलाइट ऑन SDG 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी एक बेहतर दुनिया के साझा संकल्प के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, यानी सबके लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष ध्यान। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर SDG 7 है क्या? दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुल 17 गोल्स निर्धारित किए हैं। इसमें सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और इसका उद्देश्य सभी लोगों तक एक ऐसी एनर्जी की पहुंच सुनिश्चित करना है जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो और मॉडर्न एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके। अब ज़रा सोचिए, बिजली हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। घरों की लाइटिंग, हॉस्पिटल्स की मेडिकल इक्विपमेंट, स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस, फार्मर्स के इरिगेशन सिस्टम्स और बिजनेसेस की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, इन सभी में एनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन दोस्तों, केवल बिजली उपलब्ध होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसका सुरक्षित, भरोसेमंद और एफिशिएंट होना भी उतना ही ज़रूरी है, और यहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की भूमिका सामने आती है। मान लीजिए किसी गांव में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, अगर उनके कंपोनेंट्स की क्वालिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस से जुड़े उचित स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाए तो सिस्टम को और ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट बनाने में मदद मिल सकती है। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने में भी स्टैंडर्ड्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों, SDG 7 का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कम एनर्जी का इस्तेमाल करके बेहतर परफॉर्मेंस हासिल करने का प्रयास। जब हम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अपनाते हैं दोस्तों, तो बिजली की खपत कम करने और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करने में हमें मदद मिल सकती है। यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2026 में हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि स्टैंडर्ड्स केवल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तक लिमिटेड नहीं है, वो क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भविष्य की टेक्नोलॉजीज़ को अधिक भरोसेमंद बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। अब इस पूरी चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है कंज्यूमर अवेयरनेस। कई बार जब हम कोई प्रोडक्ट केवल उसकी पैकेजिंग, डिस्काउंट, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं ना कि सेल है, इतना डिस्काउंट है, या ऑनलाइन रेटिंग होती है, उसको देखकर हम खरीद लेते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसकी क्वालिटी, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरर डिटेल्स और

जहाँ लागू हो वहाँ पे सर्टिफिकेशन को भी चेक करें। और आज की यंग जनरेशन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है दोस्तों, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, आपका स्टार्टअप शुरू होना है या किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बस एक जागरूक कंज्यूमर बनना चाहते हो, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट केवल वो नहीं होता है जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, वो ऐसा भी होना चाहिए जो अपने पर्पस को सही ढंग से फुलफिल करे, सेफ हो और कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे पर एक छोटी सी बात याद रखिए कि क्वालिटी केवल किसी प्रोडक्ट की विशेषता नहीं बल्कि उस भरोसे का आधार भी है जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच बनता है। और जब यही भरोसा सही स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ता है तो उसका बेनिफिट पूरे समाज तक पहुँचता है। तो दोस्तों, ये था हमारी चर्चा सेगमेंट का एक हिस्सा। अभी हमारे दूसरे चर्चा सेगमेंट में आपको और भी जानकारियाँ मिलेंगी, मगर उसके पहले म्यूजिकल ब्रेक।

0: की एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। ये हमारी धार्मिक आस्था के साथ साथ परंपराओं और पारिवारिक जीवन से भी जुड़े होते हैं। नवरात्र की आराधना के बीच आज 14 अक्टूबर 2026 को कपर्दश चतुर्थी व्रत है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर भगवान गणेश के कपर्दश विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि हिंदू पंचांग में प्रत्येक चंद्र मास में दो चतुर्थी तिथियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। दोनों भगवान गणेश की उपासना से जुड़ी हैं, लेकिन उनकी पूजा और व्रत की परंपराओं में अंतर होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को प्रसिद्ध गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है, जबकि आज अश्विन मास की विनायक चतुर्थी है, जिसे हम कपर्दश चतुर्थी भी कहते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश की कृपा, शुभता और जीवन की बाधाओं को दूर करने की कामना से रखा जाता है, और इस दिन श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपराओं के अनुसार व्रत और पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत में मध्यान्हकाल यानी दोपहर की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। श्रद्धालु स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पुष्प, दूर्वा, फल और नैवेद्य अर्पित करते हैं। मोदक और लड्डू का भोग लगाया जाता है और साथ ही कृष्ण मंत्रों का जाप, आरती और व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। पूजा की विधि क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार अलग हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन विनायक और संकुष्टी चतुर्थी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी है कि संकुष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय के बाद व्रत खोलने की परंपरा प्रचलित है, जबकि विनायक चतुर्थी में मध्यान्ह पूजा को प्रमुख माना जाता है। अब बात करते हैं इस व्रत से मिलने वाली सीख की। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी कार्य की शुरुआत सोच समझ कर करें, सही प्लानिंग करें और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, व्रत रखना व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। उपवास करते समय अपनी हेल्थ और शारीरिक अवस्थाओं का और आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना जरूरी है, और साथ ही ऐसे व्रत हमारी धार्मिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और परिवारों में सांस्कृतिक जुड़ाव बनाए रखने का माध्यम भी है। तो दोस्तों, विनायक चतुर्थी हमें श्रद्धा के साथ बुद्धि, विवेक और धैर्य का महत्व भी याद दिलाती है। भगवान गणेश के प्रति आस्था बनाए रखने वाले सभी श्रोताओं को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, त्योहारों की जब बात हो रही है तो नवरात्रि की रौनक को कैसे भूल सकते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है और आज इसका चौथा दिन है, जो माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना को समर्पित है। इन दिनों अलग अलग जगह पर हम देख सकते हैं कि भव्य पूजा पंडाल सज रहे हैं, ढोल नगाड़े हैं और आरती की गूंज सुनाई दे रही है।

तो कहीं गरबा और डांडिया नाइट्स में लोग पूरी एनर्जी के साथ शामिल हो रहे हैं। भक्ति संगीत और उत्सव का यही खूबसूरत संगम नवरात्रि को और भी ज़्यादा खास बनाता है। और आप सभी श्रोताओं को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। क्या किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, या उसके पास मौजूद धन होता है, या फिर उसका नॉलेज या सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता? अब सोचिए, एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े साम्राज्यों की शक्ति उनकी सेनाओं, धन संपत्ति और राजकीय व्यवस्था से मापी जाती थी। ऐसे समय में कोई विद्वान अपनी बुद्धि, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजी के आधार पर इतिहास की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तो उसके व्यक्तित्व कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, आज के प्रेरणा पुंज में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और परंपरागत रूप से मौर्य साम्राज्य की स्थापना से जुड़े महान व्यक्तित्व विष्णुगुप्त चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास में दोस्तों विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के उदय से जुड़ा हुआ है। विभिन्न ऐतिहासिक और साहित्यिक परंपराओं के अनुसार उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मार्गदर्शन दिया और नंद वंश के पतन के बाद नए शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारतीय पॉलिटिकल थॉट में उनकी पहचान एक ऐसे विचारक के रूप में बनी हुई है जिनका नाम शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और स्टेट क्राफ्ट के अध्ययन से गहराई से जुड़ा हुआ है। चाणक्य से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसे परंपरागत रूप से कौटिल्य की रचना भी माना जाता है। और ये ग्रंथ केवल धन कमाने या इकोनॉमी की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य के प्रशासन, राजस्व, कृषि, व्यापार, सुरक्षा, विदेश नीति और शासन से जुड़े उनके अनेक विषयों का व्यवस्थित विवेचन मिलता है। हालांकि आधुनिक हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स जो हैं, उनके बीच इस ग्रंथ को लेके, इसकी जो रचना तिथि है, उसके विभिन्न हिस्सों के लेखन और संकल्प को लेके मतभेद है, लेकिन भारतीय राज्य चिंतन के इतिहास में इसका महत्व बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है दोस्तों, कि आज जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारे सामने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, पब्लिक वेलफेयर और अकाउंटेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दिलचस्प बात यह है, ये प्राचीन भारत राज्य चिंतन में भी शासन की व्यवस्था और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर गंभीरता से विचार किया गया था। अर्थशास्त्र में राज्य के विभिन्न अंगों, अधिकारियों की जिम्मेदारियों, आर्थिक संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। इससे ये समझा जा सकता है कि बड़े राज्य को चलाना केवल राजा के आदेशों पर निर्भर नहीं होता था, बल्कि उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की भी आवश्यकता होती थी। चाणक्य की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था कि परिस्थितियों का सही असेसमेंट करना, किसी भी बड़े डिसीजन से पहले उपलब्ध रिसोर्सेज, संभावित रिस्क और उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, उसको समझना एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक स्किल है दोस्तों। और यही बात आज की लाइफ में भी रिलेवेंट लगती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास लिमिटेड टाइम है, सिलेबस बहुत बड़ा है और कॉम्पिटिशन भी काफ़ी है। ऐसे में केवल मेहनत करना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि सही प्लानिंग और प्रायोरिटीज़ और स्ट्रैटेजी भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये समझना भी ज़रूरी है कि प्राचीन राजनीति के सभी उपायों को आज के डेमोक्रेटिक और एथिकल स्टैंडर्ड्स पर बिना आलोचनात्मक विचार के लागू नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र में कठोर दंड नीति, गुप्तचरी और शक्ति संतुलन से जुड़े ऐसे विचार भी मिलते हैं जिन पर आधुनिक दृष्टिकोण से गंभीर डिस्कशन किया जा सकता है, और अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं। बीट स्कॉलर्स, बीट एनीवन, उस पर अभी डिस्कशन चल रहे हैं। इसीलिए ऐसे राजनीतिक विचारक से प्रेरणा लेने का मतलब है कि उसके हर विचार से सहमत नहीं होना है, बल्कि उसके योगदान को समझना है और उससे मिलने वाली उपयोगी सीख को विवेकपूर्ण ढंग से अपनाना है। चाणक्य से जुड़ी कथाओं में उनका दृढ़ निश्चय और गोल के प्रति कमिटमेंट विशेष रूप से सामने आता है, और लोकप्रिय परंपराओं में यह भी माना जाता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान में मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, चाणक्य से जुड़ी भारतीय बौद्धिक परंपरा में हमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का महत्व भी समझने को मिलता है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए हमें कि इंटेलिजेंस का उपयोग केवल पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि व्यापक सोशल रिस्पॉन्स

रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट, और आपको जैसा कि पता है कि हम अंत में आपके लिए एक छोटा सा Q&A सेशन भी लेके आते हैं। तो कल का जो हमारा प्रश्न था वो था, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है, और इसका उत्तर है भाग दो। आज का हमारा प्रश्न है, भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं। आप इसका उत्तर हमारी ईमेल आईडी yuvvanialdi@gmail.com पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे फ़ोन नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं जो कि है 8004926250 पर। और इसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर आप हमको आज के प्रोग्राम के रिव्यूज़ भी भेज सकते हैं। तो घड़ी इशारा कर रही है, और टाटा बाय बाय करने से पहले एक और गीत आपके लिए।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कैनेडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पैराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4th T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है और इसके

0: साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, चर्चा का विषय है, कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे बम बहादुर उपाध्याय से नीति वचन। 7:31 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। शाम 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे संगीता भारद्वाज के गाए भजन और गीत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन आप सुन सकते हैं रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4:00 बजे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसान वाणी, ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप की वार्ता, पशुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्व। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर सुधा यादव की वार्ता, ल्यूकोडर्मा कारण और उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित अनोखे लाल का तबला वादन सुनवाया जाएगा सुबह 7:30 बजे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन होगा दोपहर 12:15 बजे और रात 10:30 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में मनीषा निर्खी के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे सुबह 9:50 पर। श्रीकांत वैश्य के गाए भजन और गीत आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार प्रयागराज, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:45 पर। लोगे सुनिए रश्मि भारतीय, कुंवर सिंह और साथी और संगीता मिश्रा से सुबह 10:30 बजे। श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे, आपकी पसंद कार्यक्रम में प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी परिचर्चा, खेती में ग्रामीण बहनों का सहयोग, प्रतिभागी होंगी मंजू देवी, मंजू यादव, निर्मला देवी और नेहा गुप्ता। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम शाम 5:15 बजे होगा। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे किसान चर्चा के अंतर्गत इंद्र बहादुर सिंह और राजेंद्र कुमार की बातचीत। शाम 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे कहानी प्यार के रंग और रात 9:30 बजे गजलों पर आधारित कहकशां का प्रसारण किया जाएगा। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान संवेद स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ। तू आशिक है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप संस्कृत

0: संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य महती स्वीकृतिः। 11.40 लक्ष परिमितेभ्यः रेल कर्मचारिभ्यः 78 दिनानां पारितोषिकम् अनुमोदितम्। राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमः च 31.5 वर्ष पर्यन्तं विस्तारितः। वित्तीयक्षेत्रे मन्त्रिमण्डलस्य ऐतिहासिकः निर्णयः। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां नूतन उद्यमानां च संवर्धनाय IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर् संरचनायै मन्त्रिमण्डलस्य स्वीकृतिः। जागतिक ज्ञान सांस्कृतिक आदान प्रदानेषु भारतस्य ऐतिहासिकम् अवदानम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सप्रश्रयं समुद्घोषितम्। भारत कैनडा देशयोः रणनीतिक सहभागितायाः नूतनः अभ्युदयः। वाणिज्य ऊर्जा रक्षा शिक्षा क्षेत्रेषु परस्पर सहयोगस्य दृढीकरणाय सङ्कल्पः। अपि च हैदराबाद नगरे अद्य भारत वेस्टइंडीज दलयोः 4th T20 अन्ताराष्ट्रिय सम्मुखीकरणं भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। उत्कृष्ट प्रदर्शनाय 44,011,00,000 रेल कर्मचारिणः 78 दिनानां वेतनातुल्यं उत्पादकता सम्बद्ध पारितोषिकं लप्स्यन्ते। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयं श्रावयता अश्विनी वैष्णवेन प्रोदीरितं यत् पर्वणः प्राग् दीयमानम् एतत् पारितोषिकं कर्मचारिणां कार्यप्रेरणाम् उत्कर्षयिष्यन्ति।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडलेन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से आगामी 5 वर्षाणां कृते 28,43,50,00,000 व्ययेन विस्तारः स्वीकृतः। अनेन दिव्यांगजन पेंशन राशिः वर्धिता। दिव्यांगतायाः मानदण्डसीमा 80% न्यूनीकृत्य 40% यावत् विहिता। तथा हि न्यूनतम वयः सीमा जन्मतः एव निर्धारिता इति सूचना मंत्रिणा अश्विनी वैष्णवेन समाख्यातम्।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: मन्त्रिमण्डलस्य महती स्वीकृतिः। IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर्संरचना च निर्णीता। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन समाख्यातं यत् देशस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां तथा नूतन औद्योगिक उपक्रमाणां समभ्युदये अस्याः संस्थायाः महती भूमिका वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य प्रतिपादितं यत् देशस्य सभ्यतायात्रा शतकानां सांस्कृतिकविनिमयेन ज्ञानसहभाजनस्य च परम्परया निरूपिता वर्तते। विश्वे भारतस्य सांस्कृतिकसम्पर्काणामुपरि आयोजितायाः अन्ताराष्ट्रियसङ्गोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रे प्रेषिते सन्देशे प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् नालन्दासदृशैः प्राचीनज्ञानकेन्द्रैः भारतस्य एशिया महाद्वीपस्य च अन्यभागानां मध्ये ज्ञानविनिमयः सुदृढः जातः।

0: Baja.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, पंचायत घर।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: पंचो राम राम।
1: हम कहे मोहन भैया।
0: हाँ भैया।
1: भैया वो देखा आजकल भाई बहुत ई चर्चा के विषय हो जोन कृषि विशेषज्ञ भैया बाटेन वो भी भैया ये बात पे जोर देत बाटेन कि जौन वो कई फसल भैया एक साथ ना लिए जाते।
0: बिल्कुल भाई, हम कही साफ फसली जब खेती का आप भैया बात करत हैं,
1: हाँ
0: हम तो कही भाई देखा ये बात समय बहुत महत्वपूर्ण हो गए बा कि भाई देखा जोत अगर हम बात करी एक
1: हाँ
0: अगर इस फसली जब हमसे बात करते हैं कि
1: हाँ
0: भाई पहले का अपेक्षा अब उतना जोत नहीं न जो है,
1: नहीं नहीं भैया
0: और भाई हर एक चीज़ के जैसे भंडारण भाई पूर्ति करे अनाज भंडारण के बाद भाई और भी जो साग सब्जी हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो भाई ऐसे में भी सह फसली जो उन खेती बाटे भाई कम जोत में अच्छा उपज और अधिक उत्पादन एक
1: हाँ
0: महत्वपूर्ण भाई बात बैठे जो ना है।
1: बिल्कुल सही कहा बेटा मोहन भैया। देखा मुख्य फसल के साथ जौन और सह फसल ली जात साथ है ना, तो पता चला कि भाई जौन मुख्य फसल बा वो तो मान लो कट गए भैया पक गए कट गए, लेकिन जो सह फसल होते है जौन साथ में वो ली रहा थी पता ला भैया भाई उन्होंने फलत आवत बा उन्होंने जौन आए फल आवत बा या भैया वो में जौन लाभ के लिए वो अगर वो चीज़ मिलत बाटे
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ऐसन में जौन लाभ बा भैया वो कई गुना मिल जात है और एक ही बार खेत के तैयारी से।
0: हाँ भाई ये तो बहुत नीक बात बाटे, साथ से एक बात यह कहा ना भैया कि हम कही भाई देखा एक लंबी अवधि वाली होत है और एक
1: हाँ
0: कम अवधि वाली होत,
1: हाँ हाँ
0: और भाई ओके लिए अलग से कोनो खेती नहीं करेगी बा।
1: नहीं
0: हाँ
1: नहीं
0: भाई
1: भैया
0: वही खाद पानी में
1: वही
0: हम कही
1: खेत के तैयारी
0: वही
1: में
0: खेत की तैयारी में दोनों

0: काम हो जाते जो। तो
1: हाँ
0: भाई देखा आपने, किसान भाई के तो इस तरह की खेती के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले जाए जो।
1: एक बता बात बताई भैया मोहन,
0: हाँ
1: भैया देखा ये कौन नई बात ना यहाँ, ये अपने भैया दादा बाबा भी इस तरह के खेती करत आई है।
0: बिल्कुल भाई, हम तो कहे दादे बाबा नहीं, हम तो कहे अबो भैया ये सब चीज कहीं जात बाटे।
1: बिल्कुल
0: अब
1: भैया
0: भाई आलू
1: अबो,
0: की खेती में धनिया मूली और तमाम
1: हाँ
0: तरह के जो
1: सही
0: उत्पादन,
1: सही
0: हाँ
1: कह रही है।
0: तो हम कहे
1: हाँ
0: भाई दादा बाबा जो चीज़ शुरू करे हैं वो कुछ परंपरा जो चली आती बाटे।
1: हाँ
0: अब एक एक वैज्ञानिक रूप दे दिया गया भैया
1: सही सही
0: भाई,
1: कह
0: मतलब
1: सही कह
0: वैज्ञानिक रूप कहे का मतलब ये है कि भाई समय समय पे नवीन शोध भय कि
1: हाँ
0: कौने फसल के साथे कौन ज्यादा अच्छा उत्पादन दे।
1: हाँ
0: ये ना है कि कौनों भी चीज बोए दे जाऊ ना।
1: नहीं नहीं
0: हाँ
1: नहीं नहीं
0: अब भाई
1: भैया
0: अगर गेहूं के साथे अगर सरसों अधिक मात्रा में बोए देवा तो गेहूं की फसल भाई दब जाए।
1: बिल्कुल दब
0: हाँ
1: जाए भैया, बिल्कुल दब
0: और
1: जाए।
0: सरसों के भाई अधिक हो जाए जाऊ ना है।
1: अब भाई छिटकवा कहिया था ना, एक
0: हाँ
1: इक्का दुक्का इसे दूर दूर तक रहे तो
0: बिल्कुल।
1: पौधा भी मजबूत होए और फलक भी अच्छी हो जाए।
0: अब भाई अब आलू के साथे या गेहूं के साथे छिड़काव अगर मटर बोई दिन जाए
1: हाँ
0: तो हम
1: हाँ
0: कहीं भाई देखा दुइनों को लाभ हो जाए जो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ
1: हो जाए भैया।
0: तो किसान भाई के लिए तो भाई देखा सब फसली जो खेती का उदाहरण बा भैया, यही बाटे कि एक जो उद्देश्य बाटे कि किसान भाई के कुल मिलाए के जो आर्थिक स्थिति बा
1: हाँ
0: ओका अगर सुधारे बा और लागत कम करे बा भैया
1: सही
0: तो इस तौर तरीका के अपनावे के पड़ी जो ना है।
1: भाई, एक बात जो कहे ना कि भाई लागत इसमें घट जात है, तो लागत खर्च घटाई के और एक ही तरह एक ही समय में खेत के तैयारी कई के एक ही साथ सिंचाई कई के जौन खाद उर्वरक दी जाए वही वह पौधा ले भैया, तो एक तरह से लागत खर्च तो अपने आप घट जात है।
0: बिल्कुल भाई, हम कहे अगर किसान भाई जो ना है इस तरह से अगर अपन सब फसली खेती कर ही जो ना है तो निश्चय रूप से उनका मुनाफा हो। एक बात कहा भाई, हम कहीं देखा आज तो बुधवार के दिन बा, आज
1: हाँ
0: तो नीत बचन की भी हुए जो ना है
1: जरूर
0: भैया।
1: जरूर
0: हाँ
1: जरूर भैया।
0: नीत बचन भाई देखा बम बहादुर उपाध्याय को है, साथे साथे भाई देखा खान पान के भी जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण बा।
1: बहुत महत्व भैया, बहुत
0: हाँ
1: महत्व
0: तो
1: है। हाँ
0: समुचित पोषण भाई जीवन का आधार बा, मैं डॉक्टर निधि मिश्रा से राकेश कुमार मौर्य भाई बात कही सुनी जाए।
1: हाँ
0: साथे साथे हम कही भाई देखा किसान भाई के गीत गौने से देखा स्वागत की जाए जो है। हाँ
1: तो
0: तो बरम
1: भैया
0: दिन आदो संघातन के गाय गौने बा और सुना दे भैया।
1: बिल्कुल भैया सुनाओ।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ भैया,
2: देखा गौनाई भी हो गया और संदेश भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
2: अब वो जोन का हाथ रहा ना,
1: ए भैया हम कही बात आए, हम कही देखा अपन।

0: देश में भाई जिस तरह से अपन किसान भाइयों के कल्याण के खातिर अलग अलग तरह की योजना चलाओ जाता है, वैज्ञानिक शोध किया जाता है,
1: हाँ
0: वही तरह से भाई अपन देश जाना था कि भाई युवा देश अब पीढ़ी ज़्यादा भाई है।
1: हाँ हाँ
0: हाँ,
1: हाँ युवा लोग
0: ऐसे
1: ज्यादा
0: में
1: हैं।
0: भाई अपन युवा अपने से उद्यम करे और दूसरे का नौकरी दे लाए बनाए,
1: हाँ
0: यहू खातिर भी सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा, तरह तरह की योजना चलाई जात
1: बिल्कुल
0: बाटे।
1: चलाई
0: हाँ
1: जाता रहा भैया।
0: भाई, एक समय रहा कि भर कोनो काम काज शुरू करे चाहता है तो अगर रुपये पैसा आपके पास नहीं ना
1: हाँ
0: तो भाई ओके साल से आपके जौन है इच्छा मर जात रही।
1: बिल्कुल भैया,
0: हाँ,
1: खाली सोचत रहा कहीं नहीं
0: कहीं
1: पावत
0: नहीं
1: रहे।
0: पावत रहे, लेकिन भाई अब देखा समय बदल के बाटे। हाँ भाई, सरकार इस दिशा में बड़ा अच्छा जौन है काम करे बाटे,
1: हाँ
0: भाई अपन देश में मुद्रा लोन की शुरुआत की गई बाटे।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी जी
0: यह भाई योजना के माध्यम से जौन भी अपन किसान भाई भैया बहनी हरे
1: हाँ
0: कौनो रोजी रोजगार करे चाहते हैं
1: हाँ
0: तो उनके खातिर हमा ये प्राविधान किया गया बाटे भाई कि उनका 50,000 तक के जौन ऋण बाटे भाई।

0: भी सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा, तरह तरह की योजना चलाई जा रही
1: बिल्कुल चलाई
0: है
1: जा रहा था भैया।
0: भाई। एक समय रहा कि भर कोनो काम काज शुरू करे चाहता है, अगर रुपये पैसा आपके पास नहीं ना
1: हाँ
0: तो भाई ओके साल थे आपके जौन है इच्छा मर जात रही
1: बिल्कुल भैया,
0: है,
1: खाली सोचत रहे कहीं नहीं
0: कई
1: पावत
0: नहीं
1: रहे।
0: पावत रहे। लेकिन भाई अब देखा समय बदल के बाटे है भाई, सरकार इस दिशा में बड़ा अच्छा जो है काम करे बाटे
1: हाँ
0: भाई, अपन देश में मुद्रा लोन की शुरुआत की गई बाटे
1: जी
0: है
1: जी जी
0: ए भाई, योजना के माध्यम से
1: जी
0: जौन भी अपन किसान भाई भैया बहनी हरे
1: हाँ
0: कौनो रोजी रोजगार करे चाहत हैं
1: हाँ
0: तो उनके खातिर हमारा ये प्राविधान किया गया बाटे भाई कि उनका 50,000 तक के जौन ऋण बाटे भैया
1: हाँ हाँ
0: वो बगैर कौनो गारंटी के मिलत भैया जौन
1: हाँ
0: है
1: मतलब कोनो कागज पत्तर ना दे के
0: बिल्कुल,
1: ले भैया
0: और
1: उनका।
0: ज़्यादा कागज पत्र को हम आवश्यकता नहीं ना। साथे साथे एक बात यह कह भैया कि ओके आगे के जो इससे बड़ा ऋण अगर ले चाहता है
1: हाँ
0: तो ओके खातिर भाई कुछ भाई बैंक से जुड़ा जो उन कागज पत्र बाटे उनका पूरा करे
1: भाई
0: पड़े जौन
1: बिल्कुल वो
0: है,
1: तो जरूरी बा।
0: और साथे साथे जो तरह के उद्योग करे चाहता है उससे जुड़ा प्रशिक्षण भी चाहिए जौन है
1: हाँ
0: भैया
1: हाँ
0: हाँ,
1: हाँ हाँ
0: कि भाई मान लीजिए सरकार आपको भाई पैसा दे दे आपको जानकारी नहीं है तो भाई दोनों तरफ से नुकसान हो
1: भैया
0: जाएगा
1: देखा, एक तो बैंक पैसा भाई खराब होए,
0: हाँ
1: दूसर तू को रोजगार ना शुरू कर पौबा, जमा ना कर पौबा
0: बिल्कुल,
1: समय
0: जमाना
1: पे।
0: कई पबुआ सा यही बिना ये सब वहाँ एक व्यवस्था दीन गई बाटे कि जो भी भैया रे रोजगार करे चाहता है
1: हाँ
0: उससे जुड़ी अपन बढ़िया भाई प्रशिक्षण ले लें।
1: हाँ
0: साथ साथ एक बहुत नीक बात भैया एहमा ये बाटे कि यह योजना के जरिए
1: हाँ
0: अगर जैसे 50,000 के भाई ऋण आप ले लें
1: हाँ
0: और एक समय रहते पूरा कर दे तो अगला भाई जौन है आपके एकर जो सीमा बाटे वो
1: हाँ
0: भी बढ़ जाते जौन है।
1: भाई क्रेडिट बन गई, तो क्रेडिट बन गया भाई, तो समय पे जमा की है, समय पे वापस की है, तो भाई तुम्हार उसी जो ना है गुण बढ़ गए।
0: बिल्कुल भाई, इस तरह से अगर हम कहीं भाई देखा कोनो भी योजना है अगर ओहमा भाई अगर हम सभी तन मन धन से काम कीन जाए
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: निश्चय रूप से ओका जो परिणाम आवत भैया वो बहुत सकारात्मक होते जो है
1: भाई सकारात्मक भी होता है और दो चार लोगन का और जुड़ के भैया उसी रोजगार भी दिए
0: बिल्कुल
1: जाते।
0: भाई। तो देखा जो सरकार के जो ना है मनसा बाटे तो वो यही बाटे कि भाई जे भी युवा पीढ़ी बाटे वो ऐसे अपन जुड़ करके अपन जो ना काम करें जो ना है। और एक बात यह बताओ भैया कि जैसे माँ ऋण जो ना है तीन तरह के मिलत है,
1: अच्छा
0: पहला जो उनसे बताए ना जो 50,000 रुपये तो आदमी ऋण बा उनका शिशु ऋण बोला जाता है
1: अच्छा मतलब छोटे स्तर पे।
0: छोटे स्तर बाटे, और दूसरा जौन है जौन ऋण बाटे वो किशोर ऋण है भैया,
1: अच्छा
0: एमा मतलब 50,000 रुपया से लेके भाई 5 लाख रुपया तक के ऋण जौन है
1: अच्छा
0: दिन
1: मिलत
0: जाता है,
1: है।
0: और जौन ओकर भाई दर है ब्याज दर बाटे और जौन ओकर कंडीशन हो था जौन है
1: हाँ
0: कि कौन शर्त पर दिन जाए कहे
1: हाँ
0: मतलब
1: हाँ हाँ
0: वो सब हमारा समाहित बा। साथे साथे एक और होता भैया तरुण ऋण, तरुण
1: अच्छा
0: लोन जो ना है तो एहमा भाई 5 लाख रुपया से लई के 10 लाख या आपके काम धंधा के जो बाटे
1: हाँ
0: ओके
1: गुणवत्ता के
0: हिसाब
1: देखते
0: को
1: हुए। हाँ
0: देखते हुए भाई का 20 लाख रुपया तक के ऋण दिन जाते जो ना है। तो हम कही भाई साथे साथे जब इतना आपके सुविधा सरकार देती है हाँ, तो हम तो कही भैया जो ना है ऐसे जुड़ें और जौन भी उद्यम भाई करे चाहत हैं ओका जो ना है अच्छे से शुरुआत करें, और कहा जाता है ना कि भाई अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहा
1: हाँ
0: तो भाई चाहे 20 लाख के ऋण हो चाहे उसे ऊपर के हो वो आप समय से पूरा कर लेबे।
1: बिल्कुल भैया
0: और
1: बाकायदे
0: एक
1: पर
0: बार जब भाई कहा थे ना कि जब बैंक से और आपके कम जौन भी उद्योग है उसे अगर बरसर तालमेल जब बैठ जाते ना भाई तो
1: हाँ
0: कभी भी तोहरा अपने काम धंधा में कोनो दिक्कत नहीं आओ
1: हाँ
0: जो
1: भाई धन के कोनो भी तरह से दिक्कत ना आए,
0: बिल्कुल भाई तन
1: लेकिन
0: कह
1: ईमानदारी से भैया मोहन, ईमानदारी से करें, प्रशिक्षण ले के करें, और भाई साथे साथे जौन है जौन सहयोगी लोग हैं उनका भी समय पे वेतन दें और सहयोग से मिल काम करें।
0: बिल्कुल भाई हम कहीं यही हिसाब से जुड़े हैं किसान भाई तो निश्चित रूप से जो है एक लाभ मिले। अब हम कहीं अपने भाई बम बहादुर उपाध्याय के नीत वचन बा आओ सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल भैया सुनाओ।
2: भैया धर्मशास्त्रों एवं पुराणों में लिखा गया है अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए तथा माता पिता और गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि

मनुष्य का जीवन तभी सफल माना जाता है। लिखा गया है, सजीवति गुणा है अस्य अस्य धर्मा सजीवति गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष प्रयोजनम।

कार जिसके पास गुण है और धर्म है वही जीवित है, जिसके पास न गुण है न धर्म है उस पुरुष का जीना व्यर्थ है। भैया मनुष्य को चाहिए कि दीन दुखी पर दया तथा सज्जनों एवं संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि संतों के संसर्ग एवं साथ रहने से जीवन सुधर जाता है। श्री रामचरितमानस में लिखा गया है।

भाई संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है भैया, वही मनुष्य भक्ति करके 15 इंद्रियों पर विजय प्राप्त तथा समाज में सम्मान का पात्र बन जाता है। समाज के सभी प्राणी उसी का गुणगान करते रहते हैं। और भैया, मनुष्य को चाहिए कि सभी प्राणियों से मधुर वाणी में बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा शब्द सबको प्यारा है। अच्छे लोग मीठा बोल बोल के जगत को भस्म कर लेते हैं। लिखा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यं वचने किं दरिद्रता। अमृत सममीठो वचन प्रिय लागई सबका, मधुर बोलिए हर समय जो निज हित जग चाहु। मधुर वचन से सब जीव संतुष्ट रहते हैं, इसलिए सर्वदा प्रिय वचन बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। भैया, मीठी वाणी से न केवल सज्जनों को सुख मिलता है बल्कि स्वयं को आनंद प्राप्त होता है। भैया, मनुष्य को चाहिए कि किसी से कुछ लेने या किसी से बैर न करे और किसी से मतभेद आदि भी नहीं करना चाहिए। सभी से मीठे बोल बोलने चाहिए। श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, बैर न विग्रह आसनतासा सुखमयताहि सदा सब आसा।

दक्षविज्ञानी। भैया न किसी से बैर करे, ना तो विग्रह करे, ना आशा रखे, ना भय करे, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, इसलिए मनुष्य को गुणवान होना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है गुण के बारे में।

0: स्थितई प्रसाद शिखर अस्थाप्यपि किं काकः गरुड़ायते मिलत बड़ाई गुणहिते ऊचे आसन नाय काक बड़ेरी बैठ के नहीं गरुड़ हो जाय। गुण से बड़प्पन मिलता है ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जैसे महल की ऊंची अटारी पर कौआ बैठकर गरुड़ नहीं हो सकता। भैया, मनुष्य के स्वाभाविक गुणों के बारे में कहा गया है कि दातित्वम प्रियवक्तित्वम धीरम उचितम अज्ञता अभ्यासे न लभ्यन्ते चत्वारा सहजा गुणा। दान प्रकृति प्रिय बोलियो धैर्य उचित उर ज्ञान सुंदर चार स्वभाव बस नई शिक्षा के मान।
1: देखा नित्य वचन सुनावत रहे बम बहादुर उपाध्याय भैया, तो भाई देखा का सुन लिया गया। अब जो कहत रहे भैया ना कि पोषण से संबंधित एक बातचीत में कि समुचित पोषण जीवन का आधार, तो डॉक्टर निधि मिश्रा से राकेश कुमार मौर्य बतियान बाटेन, अब यह सुन लिया जाए।
2: सुनवा दे भैया।
3: किसान भाई, खेती किसानी के साथ साथ ये जरूरी बा कि हम सब घर भर माने चाहे घर के औरतें हों लड़कियाँ गदेला हों किसान भाई हों सबके स्वस्थ रह बहुत जरूरी बा। और स्वास्थ्य के लिए देखे में आवत कि सही पोषण का बहुत जरूरत होता है। ये पोषण का होता है, का जरूरी चीज हमें आवत है, इस सब के जानकारी दे खातिर आज हमारे कार्यक्रम में आए बाटिन है समुचित पोषण सही जीवन के बारे में डॉक्टर निधि मिश्रा जी। डॉक्टर निधि मिश्रा जी, आप विशेषज्ञ बाटिन पोषण के बारे में, आप हमारे किसान भाई इनके बताएं कि समुचित पोषण का है, एकर का महत्व बाटे बतावें आप।
4: किसान भाइयों और बहनों, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ये जानने की है कि पोषण मतलब उसमें पोषण के जितने भी अव्यय होते हैं वो समुचित मात्रा में मौजूद हो, और सिर्फ यही नहीं कि पेट भर जाए और ऊर्जा मिल जाए अगले दिन के लिए। पोषण में जरूरी है कि हमारे जो भी हम कुछ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी चर्बी, विटामिन, मिनरल, ये सब समुचित मात्रा में हो, तो उसी को हम समुचित पोषण कहते हैं। और इसके लिए हमें जरूरी है कि हमारे भोजन में कई प्रकार की चीजें शामिल हों।
3: तो इका अलग अलग वर्ग में, जैसे लड़कियन में अलग पोषण की जरूरत होता, सयानन में अलग होता, औरतन में अलग होता, ऐसा कुछ बाका?
4: वो उम्र के हिसाब से तो वही रहते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम या ज्यादा होती है। मसलन बच्चों में, बढ़ते बच्चों में कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि ग्रोथ हो रही है, या युवावस्था में गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान और जिस समय वो स्तनपान करा रही हैं, कुछ खास प्रकार के पोषण की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरी चीज की शारीरिक श्रम जिस हिसाब से होता है,

0: तो उस हिसाब से भी पोषण की हमारी कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वो शारीरिक श्रम के अनुपात में भी होती है। कि जैसे छोटे बच्चे हैं, वो जो टीनेज बच्चे हैं वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वो हो गए। या जो महिलाएं खेतों में भी काम कर रही हैं, जो पुरुष फावड़ा कुदाली चला रहे हैं, उनके लिए थोड़ा अलग ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की। और उसी तरह से जो तुलनात्मक रूप से कम श्रम कर रहे हैं, जैसे बुजुर्ग हो गए हमारे, तो उनके लिए वो मात्राएं अलग होती हैं।
1: अगर सही पोषण की बात किया जाए तो उनके भोजन में कौन कौन चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके बच्चन के, महिलाओं के, बताएं आप जीवन में।
0: देखिए, अच्छा पोषण, समुचित पोषण का मतलब कभी भी महंगा पोषण नहीं होता है।
1: हाँ
0: और हमारे गांव में अधिकांशतः जो हमारे अगल बगल चीज़ें उपलब्ध हैं, उन्हीं से समुचित पोषण लिया जा सकता है।
1: यानी घर में जो चीज़ बा, खेत में जो चीज़ बा
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: उससे सही पोषण लिया जाए सकता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: तो जो हमारे पोषण के अंग हैं, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा होता है। करीब 60% जो हमारी ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दलिया खाते हैं, उनसे आती है।
1: आलू भा, सब्जी भा,
0: हाँ,
1: सब।
0: आलू हो गए, सब्जी हो गए, फल हो गए, उनसे आती है। तो हमको जैसे ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें थोड़ा मोटे अनाज ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। गाँव में तो खैर प्रचलन नहीं है उतना पॉलिश चावल वगैरह खाने
1: हाँ,
0: का।
1: खेत में जौन हो तो वही
0: हाँ,
1: खाते हैं
0: तो
1: जी।
0: जो बिना पॉलिश की दालें, चावल, मोटे अनाज, गेहूं का दरिया, रागी, कोदो, जौ, बाजरा, इनकी रोटी, जैसे जाड़ों में वैसे भी खाते हैं बाजरा की रोटी खाते हैं, गर्मियों में चने बेसन का सत्तू खाते हैं। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस समय तो विशेष रूप से जो है वो सत्तू बहुत लाभदायक है। आपका
1: अच्छा।
0: जो जौ और चने का मिश्रित सत्तू होता है, और बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा पोषण है। समुचित ऊर्जा भी मिलती है और बहुत सारा फाइबर मिलता है, रेशा जिसको हम कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी, चावल, आलू, ये सब हमारे उसके मुख्य अंग होते हैं,
1: अच्छा
0: फल होते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: इसी तरह से प्रोटीन, जो कि लगभग लगभग 35% हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए, तो उसमें हम हर प्रकार की दालें खा सकते हैं, और चना, राजमा, छोले, सोयाबीन, सोयाबीन की वड़ियाँ खा सकते हैं।
1: जी,
0: दूध एक मुख्य वो
1: मैंने
0: है
1: संपूर्ण आहार
0: सोर्स।
1: माना
0: हाँ,
1: जाता है
0: दूध
1: जी।
0: एक है। अंडा बहुत अच्छा सोर्स
1: अच्छा
0: है
1: अच्छा
0: प्रोटीन
1: अच्छा
0: का।
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा
0: अंडा, जैसे दूध की तरह से अंडा भी संपूर्ण आहार माना जाता है।
1: जैसे काफी लोग शाकाहारी हैं, अंडा नहीं
0: हाँ
1: खाते हैं, तो उनके लिए क्या
0: हाँ
1: जरूरी
0: तो
1: है?
0: उनके लिए दालें हो गई, सभी प्रकार की दालें, विशेष रूप से अगर अंकुरित की हुई दालें खाते हैं, तो उसमें
1: अच्छा।
0: जो बहुत सुपाच्य और सरल सुलभ होता है उसका प्रोटीन, उसकी तुलना में बिना भिगोए या बिना अंकुरित चने और मूंग वगैरह का, गेहूं और इसको साबुत गेहूं और मूंगफली को भिगोकर भी उनका अंकुरण किया जा सकता है।
1: तो उसे बढ़िया प्रोटीन मिल
0: तो
1: जाए।
0: बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स होते हैं वो।
1: अच्छा। एक अलावा देखें, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा
0: वसा
1: भी बहुत
0: वसा वसा
1: महत्वपूर्ण।
0: हाँ,
1: हाँ
0: वसा भी बहुत ज़रूरी है, खास खासकर छोटे बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। करीब 5 से 15% वसा भी होनी चाहिए भोजन में। वैसे आम तौर पर जो ये वसा है, हम जो भोजन पकाते हैं उसमें जो हम सरसों का तेल या देसी घी ये इस्तेमाल करते हैं, उससे मिलती है। जो हम दूध पीते हैं उससे होती है। अंडे में भी कुछ हद तक ये होती है वसा की मात्रा। इसके अतिरिक्त हम बहुत उसमें रोटी में घी लगा के खाने का वो है। तो वसा, दही, दही, दूध, ये एक अच्छा स्रोत है वसा का। लेकिन
1: अच्छा।
0: ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं है तो वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और
1: जी।
0: यहाँ पर विटामिन्स और मिनरल्स की अगर हम बात करें, तो फल और हरी सब्जियाँ, ये दोनों ही विटामिन, मिनरल और रेशे, फाइबर बहुत ज़रूरी है हमारे भोजन में। भोजन को हजम करने के लिए, उसको पचाने के लिए, और हमारा जो है वो शौच जो है ठीक से हो सके,
1: पेट
0: पेट
1: सा
0: साफ रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है रेशेदार सब्जियां खाना। फलों में जैसे पपीता हो गया, अमरूद हो गया, जो भी मौसमी फल, हमेशा मौसमी फल। यहाँ पे ये बात मैं जोर देके कहना चाहूँगी कि कभी भी महंगे भोजन या जो उस मौसम का फल या सब्जी नहीं है उसको खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसी सब्जियों को उगाने में कीटनाशक का प्रयोग बहुत होता है। तो आप जो भी मौसमी फल उपलब्ध है और जो भी मौसमी सब्जियां उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग जरूर करें। हरी सब्जियां लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलू का

0: कार्बोहाइड्रेट के लिए तो ठीक है, लेकिन कई कई बार सब्जी के नाम पर, देखिए सब्ज मतलब होता है हरा, तो
1: जी
0: जो हरा नहीं है उसकी एक वास्तविक उसमें सब्जी में गिनती नहीं की जानी
1: हाँ
0: चाहिए।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हरी चीज़ों, रेशेदार चीज़ों में आपके जितने प्रकार के साग हो गए, पालक, मेथी, बथुआ,
1: जी,
0: सरसों,
1: समय के
0: चौलाई,
1: हिसाब से जौन मिले।
0: हाँ सारे साग हो गए आपका,
1: जी,
0: लौकी, करेला, भिंडी, तुरई, नेनुआ, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारी चीज़ें हो गई। और फल भी हैं, अगर आप एक मोटे तरीके से बात समझें तो आपके खाने की थाली जितनी ज़्यादा रंगीन होगी
1: हाँ,
0: उसका पोषण उतना ज़्यादा अच्छा होगा। रंगीन
1: रंगीन
0: मतलब
1: मतलब
0: उसमें
1: के,
0: जो
1: हाँ
0: भोजन के जो सामान रखे हैं वो जितने ज़्यादा, तो मतलब जैसे टमाटर भी है, गाजर भी है, लाल हो गया, फिर आम है आपका, खरबूजा है, तरबूजा है, फल हैं खाने के साथ में, मूली, गाजर, प्याज, इन सब, चुकंदर, इन सब का सलाद लेना फायदेमंद
1: रंग
0: रहता
1: बात
0: है।
1: ही है आवाज कि अलग अलग रंग के सब्जी में या फल में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व भी
0: बिल्कुल
1: मिलते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे
1: जैसे सफेद में
0: हाँ
1: ज्यादा हड्डी मजबूत करे वाले
0: बिल्कुल,
1: मिलते हैं।
0: कैल्शियम का जो है आपका
1: जी,
0: मात्रा ज़्यादा होती है,
1: हरे में बात भाई आंखों के लिए फायदा
0: हाँ
1: करते
0: जो
1: हैं।
0: लाभ के
1: जी,
0: लाल फल होते हैं उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है।
1: गाजर हो गया।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: वो खासकर जैसे रतौंधी वगैरह की जो
1: जी,
0: घटनाएं देखने में आती
1: हाँ
0: हैं
1: अक्सर
0: वो,
1: गांव में भाई
0: हाँ
1: उम्र के
0: तो
1: हिसाब से जौन बहुत
0: विटामिन
1: जाते
0: सी,
1: थे।
0: और सब्जियों को जो है बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, और फलों को कोशिश करना चाहिए कि रेशे समेत खाएं, मतलब
1: अच्छा
0: उसको
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: अगर खासकर अगर अपने घर में उगे फल हैं, कीटनाशक का
1: हाँ
0: प्रयोग नहीं है और छिलके समेत खाए जा सकते हैं, तो उनका छिलका ना उतारें, रेशे समेत उनको खाएं। यहाँ पर बस मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ के रोगी हैं
1: माने
0: वो
1: शुगर के,
0: शुगर के, मधुमेह
1: हाँ
0: के जो रोगी
1: मधुमेह
0: हैं
1: के। जी
0: वो भी फल खाएं, दिन भर में एक या दो फल का सेवन 150 से 200 या अधिकतम 250 ग्राम तक ज़रूर करें। लेकिन जो बहुत अधिक मीठे फल हैं जैसे आम, लीची, केला, चीकू, शरीफा, इनका परहेज करें। और
1: अच्छा,
0: सब्जियों में थोड़ा चुकंदर, आलू, कटहल, अरबी, सूरन, बंडा, इन सब्जियों से परहेज
1: दूर
0: करें।
1: रखें।
0: और
1: जी,
0: ये एक भ्रांति है कि मधुमेह के रोगी जो हैं वो ज़मीन के नीचे उगने वाले सब्जियां नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, प्याज वगैरह खा सकते हैं, चुकंदर से थोड़ा परहेज करने की ज़रूरत होती है क्योंकि
1: जी,
0: उसमें शर्करा की मात्रा,
1: जी
0: शक्कर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा एक बात आवत है कि पानी भी महत्वपूर्ण तत्व है शरीर के लिए। तेकरे बारे में बताओ कितना पानी पिए के चाहे, कैसे पिए के चाहे। आजकल प्रदूषित पानी बहुत ज़्यादा हो गया बाटे, इस सब के बारे में भी स्वास्थ्य पे का असर पड़ता है।
0: जी, और आजकल तो जितना गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़रूरी है कि हम, हमारा जो है वो हाइड्रेशन, बोला आर्द्रता हमारे शरीर में रहे, हाइड्रेशन समुचित रहे,
1: जी,
0: और घर से बाहर निकलते समय अच्छे से जो है वो 2-3 ग्लास पानी निकल के पी के निकलना चाहिए। और इस समय आम का मौसम है और आप आम उबाल के उसका पन्ना बना सकते हैं, जो है वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। सत्तू का घोल पानी में या दूध में बना के पिया जा सकता है। दिन भर में आमतौर पर 8 से 10 गिलास पानी की
1: पानी पिए
0: ज़रूरत,
1: चाहिए।
0: आवश्यकता होती है, गर्मियों में ये मात्रा बढ़ जाती
1: जी
0: है।
1: जी
0: आप इस तरह से समझें कि अगर पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा पीला रह रहा है और तो आपको
1: पानी
0: शरीर में
1: कमी
0: पानी
1: है।
0: की कमी हो रही है, तो
1: जी,
0: अपना जो है वो पानी ज़रूर पीना चाहिए। और जितने भी तरल पदार्थ हैं वो पानी ही देते हैं, माँ का जो दूध होता है उसमें भी पानी की मुख्य मात्रा होती है।
1: जी,
0: तो और एक बात यहाँ पर और मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए भी पानी विशेषकर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं में पानी के अभाव में मूत्र नली से संबंधित संक्रमण, इन्फेक्शन होने की संभावना
1: बढ़
0: बहुत
1: जाए।
0: होती है। तो
1: जी,
0: पानी सभी को ज़्यादा जब हम पीते हैं तो पेशाब का रास्ता बार बार पेशाब होने से साफ होता है,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: अधिक पेशाब, अधिक मात्रा में पानी पीने से ये समुचित रूप से होता है।
1: जी, बात आवत कि कोनो भी पोषण अगर सही से नहीं मिलते, तमाम तरह के बीमारी होते, तो अगर सही पोषण लड़कियन गया महिलाओं में या पुरुष में का बीमारी कुछ संभावना हो सकत। अगर सही से पोषण ना मिले, प्रोटीन भाई या कार्बोहाइड्रेट भाई, तो कुछ बीमारी का हो सकत।
0: हाँ देखिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो सबसे आम तौर पर जो हमें सामान्य तौर पर कुपोषण जिसको कहते हैं, जो जो
1: जी,
0: आँख से दिख जाता है, हर किसी को दिख
1: हाँ हाँ
0: जाता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: वो होता है कैलोरी या प्रोटीन माल न्यूट्रिशन,
1: जी जी
0: यानी कि जिसमें खाना कैलोरीज में ही कम है या समुचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो
1: जी
0: ऊर्जा
1: जी
0: की ही कमी हो जाती है
1: जी
0: शरीर
1: जी
0: में।
1: जी जी
0: यानी जो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बताए, ये तीनों चीज़ें जब कम हो जाती हैं तो वो आप देखते हैं जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है, कि
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: बच्चों में हो जाता
0: क्वाशियोर्कर,
1: है।
0: मेरास्मस, इस तरह के मर्ज, जिसमें कि बाल भूरे भूरे से होने लगते हैं, जरा सा छूने से।

0: बाल निकल जाते हैं बच्चों
1: जी
0: में,
1: जी
0: और ना बहुत ज़्यादा दुबले पतले बच्चे होते हैं, अक्सर पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है,
1: जी
0: बच्चा
1: जी
0: एकदम
1: जी
0: हड्डी हड्डी आपको दिखेगा,
1: जी
0: कृशकाय बच्चा दिखेगा, लेकिन पेट बहुत ज़्यादा निकला होगा,
1: हाँ
0: तो ये सब रोग के लक्षण हैं। तो
1: यानी सही
0: आम
1: पोषण ना मिलने के
0: जी तो
1: लक्षण।
0: इसमें आमतौर पर ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होने से होता
1: जी
0: है,
1: जी जी जी
0: लेकिन जो विटामिन और मिनरल की कमियों से जो रोग होते हैं, अक्सर वो खुद मतलब हर किसी को आंख से दिख जाए ज़रूरी
1: जी
0: नहीं है,
1: जी जी
0: लेकिन उसमें आमतौर पर जैसे बढ़ते हुए बच्चों के हड्डियों में दर्द की शिकायत
1: जी
0: होना,
1: जी जी
0: रतौंधी होना, रात में कम
1: हाँ
0: दिखना,
1: हाँ
0: मसूड़ों से खून आना जो विटामिन सी की
1: जी
0: कमी
1: जी
0: से
1: जी
0: होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: जिसको हम
1: जी
0: स्कर्वी बोलते हैं,
1: जी जी
0: विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होने लगता है। अगर
1: जी
0: बहुत
1: जी जी
0: ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो तो हाथ पैर जो है वो
1: कमजोर
0: खासकर
1: हो
0: पैर
1: जाए।
0: टेढ़े भी होने लगते हैं,
1: जी
0: आपने
1: जी
0: देखा
1: जी
0: होगा,
1: जी
0: मतलब वो पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या लवण और खनिज
1: सूक्ष्म
0: पदार्थ
1: पोषक
0: होते हैं, जो
1: तत्व जो
0: सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं,
1: जी
0: उनको भी, उनकी भी मतलब जो हमारे बॉडी के फंक्शंस ठीक से नहीं होते हैं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो ये जो चीज़ें हैं आपको कुछ देखने में आती है। विटामिन डी आमतौर पर धूप में
1: मिल
0: हमारा
1: जाता
0: शरीर
1: है।
0: खुद बनाता है, भोजन में नहीं
1: अच्छा
0: मिलता है,
1: अच्छा
0: लेकिन
1: अच्छा
0: यहाँ पर अक्सर होता है कि महिलाएं खासकर ऊपर से नीचे तक चूंकि कपड़ा पहने रहती हैं,
1: आजकल धूप में लोग
0: घूंघट,
1: वही सो कम
0: हाँ
1: निकलते हैं।
0: घूंघट
1: जी
0: भी
1: जी
0: किए रहती हैं, तो उनको उतनी धूप नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसको कि फिर हम बाद में गोली या पाउडर के रूप में उसको
1: अक्सर तो
0: सप्लीमेंट
1: देखे
0: कर
1: में और
0: सकते
1: जरा
0: हैं।
1: सा छटक के गिरे ना ही कि हड्डी टूट जाते बटे हड्डी कमजोर हो जाते, तो सब कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी से या
0: हाँ, विटामिन डी
1: कैल्शियम
0: या
1: कमी से।
0: कैल्शियम की कमी से है।
1: जी जी जी
0: दांतों
1: जी
0: की भी समस्याएं
1: दांत
0: बहुत
1: की
0: सारी आपको
1: समस्या
0: देखने
1: होते
0: को
1: हैं। जी
0: मिलेंगी।
1: जी एक बात और आवत है, आजकल देखे में आवत चाहे लड़कियाँ हों सयान हों जौन बाटे है, छोटे से चश्मा लग जाए तो उनके, चाहे आजकल गांव में भी मोबाइल का बहुत चलन हो गया वो बाटे है, तेरे बारे में कुछ बताएं कैसे बचें कैसे स्वस्थ रहें।
0: देखिए, चश्मा जो आमतौर पे लगता है वो पोषण से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
1: अच्छा।
0: लेकिन जो रतौंधी की समस्या है वो पोषण से ही संबंधित होती है, जिसमें कि रात में साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, तो चश्मे का संबंध उतना ज़्यादा पोषण से नहीं है,
1: अच्छा,
0: लेकिन रतौंधी का है।
1: रतौंधी का है। तो किसान भाई देखें आप सब अब ही बत कही सुनें डॉक्टर निधि मिश्रा से समुचित पोषण और स्वस्थ जीवन के बारे में, का का भाई जितना हमारे घर में ही मिले तो खेत मिल जाए अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम सब स्वस्थ रह सकते हैं और तमाम तरह के रोग दुख बेरामी से बचा जा सकता है। डॉक्टर निधि मिश्रा जी आप आए इतना बढ़िया जानकारी दें, किसान भाई एक लाभ लें, आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ
1: हाँ
0: भैया,
1: भैया चंद्र,
0: देखा ये जोन पोषण से संबंधित बातचीत रही ना,
1: हाँ,
0: कितना भैया फरियाई के बहनी जोन है पूरा समझाए दी कि कौन कौन चीज़ कैसे कैसे फायदेमंद हो सकत है।
1: बिल्कुल भाई, हम कही भाई हिसाब से पोषण नहीं तो किसान भाई स्वस्थ रहें, हम कही भाई देखा अपन कार्यक्रम में हमेशा कुछ न कुछ गुणवत्ता ले आवा जाता है कि अपने किसान भाई की अच्छी से जानकारी मिले,
0: बिल्कुल,
1: अगर वो अपन प्रतिक्रिया दे चाहत तो कैसे दे सके कोनो एक नंबर पर भैया और बताओ अपने किसान भाई
0: हाँ
1: से।
0: देखा हम नंबर बता दिए थे, व्हाट्सएप नंबर है, ए नंबर पे अपन प्रतिक्रिया कार्यक्रम से संबंधित दे सकते हैं,
1: बताओ भैया।
0: 800-492 6250।
1: ये भैया एक बार और बता दे नंबर।
0: नंबर हम फिर से देखा बताओ तो, ये 800-492-6250।
1: हम कहे भाई किसान भाई देखा ए नंबर पे आप भाई व्हाट्सएप के माध्यम से अपन सुझाव अपन जौन भी और का चाहता है कार्यक्रम में ओका दे सकते हैं जानकारी, साथ साथ आकाशवाणी के जौन भाई ऑफिशियल पेज बा फेसबुक पे वहूँ पे जाए के भाई अपन प्रतिक्रिया दे सकते हैं जौन है।
0: बिल्कुल। और एक चीज़ और याद दिलाओ भाई, देखा मौसम बदलत बाटे तो अपने स्वास्थ्य के भी ध्यान दें, लड़कियों बच्चन के स्वास्थ्य ध्यान दें, पशु प्राणी अपन
1: बिल्कुल
0: खुशहाल
1: भाई,
0: रहे
1: हम कहीं
0: भैया।
1: स्वास्थ्य सही रहे तभी भाई अच्छे से धान के कटाई होकर भंडारण कहीं पे ही है।
0: बिल्कुल
1: अब समय
0: बिल्कुल,
1: भाई कि अपने किसान भाई से लीन जाए विदा, तब पंचो राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: तुषार है मैं तेरी शायरी।
2: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल। लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आपकी एक छोटी सी आदत

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने को सरकार ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2031 तक जारी रखने को भी मिली स्वीकृति। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का दिया आदेश। प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालते रहेंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल करने को लेकर चलेगा विशेष अभियान। 17 और 24 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे विशेष कैंप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख 40 हजार से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस देने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्योहारों से पहले गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जा रहा है।
1: रेलवे के करीब 11 लाख 40 हजार 770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दे दी। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा के लिए 53,428 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायतों के चुनाव 3 महीने के भीतर कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहें। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में उनकी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विमोचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश को नई ऊर्जा मिली है।
2: वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास के कार्यों को, कानून व्यवस्था को और सुशासन को एक नई ऊर्जा मिली। योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है और उत्तर प्रदेश को, जैसा कि अटल जी कहा करते थे, उत्तम प्रदेश बनाने के प्रयासों को अभूतपूर्व गति दी है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
3: हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी बन रही है, डिजिटल लाइब्रेरी भी बन रही है। 57,600 ग्राम सचिवालय बन गए हैं। सचिवालय में एक रूम केवल और केवल लाइब्रेरी का है। गाँव के बच्चे वहां पर जाके अब पढ़ते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। बड़े पैमाने पे इस कार्य को आगे बढ़ाया गया है। हर शिक्षण संस्थान में भी लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। अच्छी पुस्तकें किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हो सकती हैं।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग आमजन को मात्र 52 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ता लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान परिसर में स्थित चीनी निगम सहकारी चीनी मिल संघ के चीनी विक्रय केंद्र से उक्त दर पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अमेठी में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी के 3 विधायक अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी और राकेश प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी

0: की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी, अमरपाल मौर्य समेत कई बड़े नेता, मंत्री और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 456 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने अपने दौरे के दूसरे दिन आज प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन पूजन किया और संगम गए। उन्होंने प्रयागराज के अंदावा केंद्र का निरीक्षण भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका ये सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जन धन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत के बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है।
2: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: वाराणसी के रहने वाले संजय सिंह ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
3: मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभार्थी हूं। इस योजना के तहत मेरा बैंक में शून्य बैलेंस खाता खुला है, जिससे मुझे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। सरकारी योजनाओं की सहायता राशि सीधे मेरे खाते में प्राप्त हो रही है।
1: इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिल रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों तथा प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
4: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे हुए पात्र नागरिकों और युवा मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 17 अक्टूबर शनिवार को और 24 अक्टूबर शनिवार को प्रत्येक बूथ में एक विशेष कैंप का आयोजन होगा।
0: शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां कूष्मांडा के स्वरूप की आराधना की जा रही है। प्रदेश के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ मां के दर्शन पूजन कर रही है। वहीं जौनपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शीतला चौकिया धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने को सरकार ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2031 तक जारी रखने को भी मिली स्वीकृति। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का दिया आदेश। प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालते रहेंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल करने को लेकर चलेगा विशेष अभियान। 17 और 24 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे विशेष कैंप।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

0: बोलते नगमे।
1: नमस्कार दोस्तों, वंदना जी नमस्कार।
0: नमस्कार नेहा जी, और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी नमस्कार हमारा।
1: अब आप कहेंगे कि अरे ये खिलखिलाहट किस लिए है?
0: ये तो अच्छी चीज लगी मुझे, और दिल के तार जैसे झंकृत हो जाते हैं, और जो आपकी हंसी है वो दिल तक सुनाई पड़ी, और दिल का जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया।
1: दरअसल होता क्या है दोस्तों कि आप एक ऐसे जोन में चले जाते हैं, या आपने कुछ देख लिया हो और एक गुदगुदाती हुई सी हंसी आपके चेहरे पर बिखर जाती है, और वो ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि आप पूरे दिन खुश रहते हैं। ऐसा होता है,
0: बहुत बार ऐसा होता है नेहा जी, जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कभी हम सिनेमा के कुछ ऐसे सीन देख रहे होते हैं, या फिर कोई गीत ऐसा होता है जो हंसा जाता है और होठों को मुस्कुराहटे बख्श देता है।
1: अच्छा, आप एक मिलियन डॉलर प्रश्न जानते हैं क्या है?
0: हाँ, मिलियन डॉलर तो मैं भी जानना चाहूंगा है क्या वो चीज।
1: वैसे आप भी जब ग्रेजुएशन में पढ़ती थी ये बात जरूर सुनी होंगी, लड़कियां कहती हैं ये लड़के बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होते, ये दिल फेक होते हैं, है ना
0: जी।
1: और लड़के लड़कियों को लेके क्या कहते हैं, भाई ये तो तिलस्म है, पहेली है, क्या है, कुछ जाना समझा नहीं जा सकता।
0: नेहा जी, इसमें बीएमए की कोई बात ही नहीं है, ये शाश्वत सत्य जैसी बात है जो हर समय
1: जी
0: स्त्री पुरुष के साथ चलती आई है।
1: हाँ।
0: अमूमन यही बात होती है, दोनों साथ साथ रहेंगे जरूर। टॉम जेरी वाला जो एक साथ होता है,
1: हाँ,
0: वो होता है एक तरह से, लेकिन फिर भी बात बात पे ये जरूर बात होती है कि उफ, ये लड़के ऐसे क्यों होते हैं, या लड़के सोचते हैं लड़कियां हैं तो हम जैसे क्यों नहीं होती हैं।
1: और बॉलीवुड में
0: जी
1: बहुत सारे अपने जो गीतकार रहे, उन्होंने इस नजरियो को देखा, और जो अर्ध नारीश्वर की कल्पना है कि एक ही शरीर में स्त्री भी है पुरुष भी है, तो उन्होंने दोनों रूपों को देखा। इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की है, तो मेरे जहन में एक गाना आप कहें तो हम बताएं,
0: तुरंत बताएं, क्योंकि अगर आज बोलते नगमे में कुछ इस तरह के चुलबुले गीत
1: जी
0: और इस तरह के प्रश्न वाले
1: जी
0: जो आप कह रही है ना, वो अगर ख्यालात और उजागर होंगे गीतों के जरिए तो मजा आ जाएगा आज।
1: ये जो लड़कियां हैं लड़कों की तरह क्यों नहीं होती, बस यही गाना है।
0: अरे क्या बात है, यानी कि सैफ और रानी।
1: यस, पहले सुना जाए थोड़ा
0: जी।

0: जब ये फिल्म रिलीज होती है, बड़ी फ्रेश सी फिल्म हम तुम, यशराज बैनर के तले बनी प्यारी सी रानी, और वो चुलबुले और बेपरवाह सैफ। इसमें प्रसून जोशी जी ने लिखा कि भाई सोचती है ज्यादा, कम हो समझती है। तो आपके साथ भी ऐसा रहा है क्या?
1: सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अमूमन सभी के साथ ये स्थितियां आती होंगी कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो इस तरह की जो नोकझोंक होती है, इसे मैं प्यार भरी नोकझोंक ही कहूँगी, और ये शैतानियाँ, ये शरारतें, वो आँखों के

0: जरिए होठों तक पहुंचती है, दिल में तो पहले से ही रहती है कि किस तरह से इतनी शांत शांत सी क्यों बैठी हैं, थोड़ा सा छेड़ा जाए। मुकाबलेबाजी जो होती है उभर कर सामने आती है। हमारे जितने भी लिसनर हैं वो भी कभी ना कभी इस सिचुएशन से ज़रूर दो चार होते रहे होंगे।
1: बहुत सुंदर शान ने गाया है ना इस गाने को, और अलका याग्निक जी ने। फिर जब वो कहते हैं ये जो लड़कियां हैं वो आती हैं जीवन में कि बहुत खुश रहेंगे हम दोनों, लेकिन होता क्या है कि सब अजीब हो जाता है, कई बार आपको बिल्कुल बदल देती हैं कि शर्ट ऐसे नहीं ऐसे पहननी है वो तौलिया गीली हुई सी बेड पर नहीं रखना है लेकिन ये तो अच्छी बात है लड़कियों की।
0: देखिए अच्छी बात तो होती ही है, अधिकतर यही कहा जाता है कि हमने इंसान बना दिया, सुधार दिया है लेकिन सारी गड़बड़ी जो होती है वो इसी एक शब्द सुधारने में ही छुपी होती है क्योंकि पुरुष कभी बात ये मान नहीं सकते हैं कि कोई स्त्री उन्हें सुधारे खैर ये बहुत ही व्यक्तिगत बातें होती हैं और बहुत ही मज़ेदार स्नेहिल होती हैं जो कि प्यार को बहुत बढ़ा रही होती हैं। उसमें कहते हैं ना छौंक लगाने वाली जो बात होती है रिश्तों में, एक तड़के की तरह से काम करती हैं ये जो छोटी छोटी तकरार होती है प्यार भरी। देखिए आगे बात क्या हो रही है,
1: सुनते हैं
0: वो भी सुन लें।

0: बहुत सुंदर ये सारी जो बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में रहता है कि भाई आप जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते और ऐसे जिंदगी तो चलती नहीं, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा तो है नहीं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो हो सकता है कि दोस्त ये समझे कि नेहा जी लड़कियों का पक्ष ले रही है ये इसके चांसेस हैं। तो वंदना जी आपको ना न्यूट्रल होना है।
1: देखिए बात यही होती कि मेरे नजदीक अगर इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के सवाल जवाब होते हैं नेहा जी जैसे अभी भी गाने में सुन रहे हैं, तो उससे कितना गहरा प्यार छुपा हुआ है। तो निगेटिव चीजें निकाल कर जो ला रही बातें वो निगेटिव है, लेकिन वो जीवन को और पास कर देती है, दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना देती है, क्योंकि इसी तरह से जीवन की सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते रहते हैं, साल दर साल हम संबंधों को जीते रहते हैं, इसी तरह की नोक झोंक कहा सुनी होती रहती है, मीठी सी जो तकरार होती है उसका ये जो रूप होता है वो बहुत ही खूबसूरत है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे मैंने पहले ही कहा।
0: ये जो झगड़ा भी है ना जो आप कह रही हैं कि बहुत करीब ले आता है, और आप स्पष्ट होते जाते हैं ये कहें, और जरा देखिए इस गाने में सुंदर ढंग से इसको दिखाया गया है कि सैफ को रानी पसंद नहीं आ रही होती लेकिन भागते भी उन्हीं के पीछे
1: पीछे,
0: और रानी को भी सैफ के अंदर हजार बुराइयां हैं लेकिन उन्हीं के साथ
1: देखिए कितनी खूबसूरत सी बातें और की जा रही है मस्ती भरी।

0: बुलाए। 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
1: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
2: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: है। तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिस्निंग,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये तकरार थी मस्ती भरी। और दोस्तों को हम ये भी बताते चलें कि इस फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार सैफ अली खान को मिला था, जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस तरह से सिल्वर स्क्रीन को जगमगा दिया कि बस जिसने देखा वो उनका होकर रह गया।
3: बिल्कुल, तो अब इसी एक्टिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नाम अलग होगा लेकिन बात कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों आज मैं आपको और दोस्तों को कहीं और जाने नहीं देना चाहती कई बार क्या होता है कि इसी पहलू में रहते हैं और खोज करते हैं।
2: ऐसा लगता है कि सप्ताह भर आपकी जो मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से हुई है जहाँ पर आपने इस तरह की बातें देखी हैं या सुनी हैं या गीत ऐसे सुने हैं कि जिसमें ये नोक झोंक वाला जो एक भाव है वो दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरा गाना कौन सा है ये पहले बताएं।
3: दूसरा गाना जो है उसमें आमिर खान साहब हैं और प्रीति जिंटा हैं। फिल्म का नाम याद आया या मैं बता दूं?
2: नहीं, प्रीति जिंटा के साथ मैं याद कर रही हूँ कि कौन कौन सी फिल्में आमिर खान ने की है।
3: ओ भगवान, एक बार तो जीत लेने दीजिए।
2: पूरी कोशिश करेगी मेरे कि जीतने ना दूं आपको।
3: देखिए, जब ये वाली भी फिल्म रिलीज होती है बहुत सारे लोग ये उनके मन में प्रश्न है कि भाई जाने क्यों ये लोग प्यार करते हैं, इतनी सारी मुसीबतें हैं इसमें, दर्द है, सितम है। और जावेद अख्तर साहब को जरा देखें, जैसे जहन और दिल को जब वो देखते हैं तो पाते हैं कि अरे इसका तो जो माजरा है बिल्कुल अलग है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे। आमिर खान पहले कितना ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं इस गाने में कि जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, इतनी सारे दिक्कतें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रीति जिंटा बिल्कुल शांत, बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा
2: तो ऐसा करते हैं कि पहले मुखड़ा सुन लेते हैं
3: जी,
2: इस नोक झोंक को एंजॉय करते हैं।
3: आप ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा रुक जाइए, है ना? मैं जानती हूँ, देखा आपने।
2: चलिए सुनते हैं।

0: जाने क्यों।
1: अच्छा देखिए, उस समय तो आपने मुझे रोक दिया
2: जी।
1: कई बार मैं चाहती हूँ कि मेरी रेलगाड़ी अभी ना रुके और आपके हाथ में होता है ब्रेक, लगा देती है ब्रेक।
2: क्योंकि नेहा जी क्या होता है, ब्रेक इसलिए लगाना पड़ता है जब बातें ज्यादा लंबी खींचने लगती हैं तो अपना असर खो देती हैं। अभी तो हम असर में हैं इस चंचलता से भरपूर जो गीत है
1: जी,
2: जिसमें एक दूसरे की भावनाएं इस तरह से प्रेषित हो रही हैं कि हमारा दिल भी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा है, कहे हमारे दिल के भीतर भी उठ रहे हैं।

0: क्योंकि नेहा जी क्या होता है, ब्रेक इसलिए लगाना पड़ता है जब बातें ज्यादा लंबी खिंचने लगती हैं तो वो अपना असर खो देती हैं। अभी तो हम असर में हैं इस चंचलता से भरपूर जो गीत है
1: जी
0: जिसमें एक दूसरे की भावनाएं इस तरह से प्रेषित हो रही हैं कि हमारा दिल भी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा है, कह कहे हमारे दिल के भीतर भी उठ रहे हैं और होठों तक आ रहे हैं, और जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं प्रोग्राम वो भी जरूर मुस्कुरा रहे होंगे इन गीतों को सुनते हुए।
1: जी
0: और इसीलिए मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, आप बात क्या कहने जा रही थी वो बताइए।
1: उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कई बार मुझे प्रोग्राम के दौरान ही इनसे पूछना पड़ता है,
0: लाजवाब होना लाजवाब हो गई
1: आपकी हुकूमत बुलंद रहे आमीन
0: आमीन
1: आमीन आमीन मैं ये कह रही थी वंदना जी और दोस्तों कि कई बार ये जो करली बाल होते हैं अच्छे लगते हैं ना।
0: बहुत अच्छे लगते हैं, और वो एक खूबसूरत चेहरा अगर साथ साथ चल रहा है, इस कर्ली बाल
1: हाँ
0: को जो संभाल कर रख रहा है, कैरी कर रहा है, प्रीति जिंटा जो बबली सी नजर आती हैं, बहुत क्यूट सी हैं, लेकिन कितनी समझदारी भरी वो बातें कर रही हैं।

0: क्यों?
1: ईश्वर को भी क्या कहें, दो ऐसे लोगों को मिलाते हैं, एक को यकीन ही नहीं है और एक को यकीन है, और जिसको यकीन है वो बेयकीनी वाले को यकीन दिलाना चाह रही है, नहीं?
0: बिल्कुल। और ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म ये बनी थी, फरहान अख्तर साहब ने ये फिल्म बनाई थी, और उन्होंने अपनी एक डायरी जो लिखी थी, जो यात्रा के दौरान बहुत सारे पड़ाव आए थे, उस दौरान बहुत सारी बातें उन्होंने नोट की थी, बहुत ही खूबसूरत कहानी का निर्माण किया जो हमें दिल चाहता की शक्ल में नजर आती है। और संगीतकार के रूप में पहले AR रहमान साहब को लिया जा रहा था
1: जी,
0: लेकिन उनके पास शायद डेट्स की कमी थी, फिर शंकर एहसान लॉय जी को इसका संगीत सौंपा गया और संगीत ने कमाल कर दिखाया।
1: बहुत हल्के हल्के वाद्य यंत्रों का प्रयोग है ना, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मतलब जादू बिखेरते हैं और लोगों के दिलों में ये गाना बस जाता है।

0: मुझे जावेद अख्तर साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी है इस गाने की कि प्यार जो है ज़िंदगी को सजाता है और 100 रंग लेकर के आता है। ज़िंदगी अगर सजने लगती है तो खुशी होती है ना।
1: बात ज़िंदगी की आप कर रही हैं, बात सजने की कर रही हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में शामिल हो रही होती हैं जो सकारात्मक होती हैं, हमारे जीवन को कुछ खूबसूरत एहसास से भर रही होती हैं, इसलिए ये सजावट बहुत ही सुंदर नज़र आती है।
0: अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ और दोस्तों से भी कि जो थर्ड गीत देखिए, आज मेरी पसंद के ये सारे गाने हैं, आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकती।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं ले रही हूँ।
0: थर्ड वाला ना सरफरोश फिल्म जानती हैं?
1: अरे क्यों नहीं जानती, फिल्म देखी है। आमिर खान से चलकर आमिर खान तक पहुंच रही हैं आप।
0: तो तीसरा जो गाना है दोस्तों, आप सभी ने सुना जरूर होगा, देखा जरूर होगा, उसमें सोनाली बेंद्रे हैं
1: जी,
0: बहुत प्यारी सी लग रही हैं और इसकी लाइन

0: सुने या सुना दें पहले?
1: चलिए इस गीत का मुखड़ा सुनवाते हैं, डोंट माइंड।
0: ये जो आप डोंट माइंड बोल देती हैं ना तपाक से।
1: अरे नेहा जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही हैं सोनाली बेंद्रे। सुनिए ना दोस्तों के साथ आप भी।
2: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनो।
2: सुना।
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

0: जब हम सभी लोग इस गाने को देखते हैं तो भाता है ये गाना, और दिल के करीब शायद इसलिए भी है क्योंकि वो जो सच्चाई वाली बात है कि जब कोई किसी से लगाव रखता है तो सोचता है कि ज़रा लगाव की गहराई देखी जाए और चाहत के जो रंग हैं, क्योंकि वो रंग हमेशा और इतनी आसानी से नज़र नहीं आते हैं ना।
1: और इसमें जो संगीत है जतिन ललित साहब का जी, वो भी बड़े ही खूबसूरती के साथ उन्होंने संगीतबद्ध किया है इसके गीतों को, जो कथानक को आगे बढ़ाते हुए से महसूस होते हैं। तो चलिए फिर हम भी इस गुनगुनाहट को
0: और महसूस करते
1: और
0: हैं।
1: महसूस करते हैं।
2: अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो, कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: अच्छा वंदना जी, कुछ गीतों की एक और ख़ास बात होती है इसमें, बीच बीच में आप देखिए तो मजाहिया अंदाज में आमिर खान साहब शेर कहते नजर आ रहे हैं, और वो शेर जो वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं और इंटरेस्ट पैदा कर रहा है कि अरे ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार कुछ एक्सेप्टेंस वाला शेर होगा, लेकिन वो इंतजार
1: वाला के विपरीत चीजें हो रही हैं नेहा जी। लेकिन जिस तरह की भाव भंगिमा है आमिर खान की, जब सोनाली बेंद्रे से थोड़ा सा दूर होते हैं वो, तो वो प्रेम में उनकी पूरी तरह से डूबे हुए नजर आते हैं, और जैसे सोनाली बेंद्रे नजर आ रही होती हैं तो थोड़ा सा एकदम से अचकचा कर उठ जाते हैं, और फिर वही नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे वाली जो बात होती है,
0: जो ठहराव है रिजेक्शन का तो नहीं है, इंतजार का, वो इंतजार बहुत कुछ कहानी कहता है ना। वो कहानी अगर कोई समझ ले तो शायद जो प्रेम का आधार होता है, नींव होती है, वो बहुत मजबूत हो जाती है,
1: क्योंकि कुछ बनने की बात यहाँ पर हो रही है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक तरह से हमारी रोजगार जो एक समस्या सबसे बड़ी होती है किसी भी युवा के लिए, तो उसके लिए बहुत ध्यान की जरूरत होती है, और प्यार कहीं ना कहीं उस ध्यान को भंग कर रहा होता है कभी कभी। तो ये वाली एक बात यहाँ आमिर खान के चेहरे पर नजर भी आ रही है,
2: और समीर साहब ने भी प्यार के इस रूप को दिल से महसूस किया और कागज पर उतार दिया।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: आज सवेरे मैंने इन कुछ गानों को देखा था, आपसे थोड़ा छुपाया लेकिन फिर अब छुपाती तो जाती कहाँ, प्रोग्राम बनता कैसे?
2: बिल्कुल, प्रोग्राम तो आपको मेरे साथ ही करना है नेहा जी।
1: अब दिन और रात को अलग तो नहीं किया जा सकता।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जो एक मिलन होता है वो संध्या के रूप में निकल कर आता है। तो नेहा जी,
1: जी
2: ये सारी बातें, तकरार की, इकरार की, इनकार की, फिर प्यार की, ये सब जो फैलाई थी हमने गीतों के माध्यम से, उन सबको समेटने का आ गया है वक्त, यानी वक्त है दोस्तों से विदा लेने का। तो दोस्तों, सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम बोलते नगमे और दीजिए हमें इजाजत।
1: नमस्कार।

بولتے نغمے अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे। वाचन स्वर नेहा गुप्ता के थे और आपके साथ थी वंदना राठौर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए फिल्म ये दिल आशिकाना के इस गाने से। रचना समीर की है, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म धुरंधर से, आवाजें अरिजीत सिंह और शाश्वत सचदेव की। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई इरशाद कामिल ने।

चलिए सुनते हैं फिल्म हिना की कव्वाली। सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर, मोहम्मद सईद, सतीश और साथियों की आवाजों में। रचना और मौसिकी रविंद्र जैन की।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म आक्रमण का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना आनंद बख्शी की है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म आक्रमण का ये गाना।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता भारद्वाज के गाए भजन और गीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये भक्ति रचना।

इसी गीत के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें

0: तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखा ग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल

0: नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे, टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
1: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र

0: में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है, और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट चल रही हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरै राजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
4: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
2: नई दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49 प्रतिशत

0: की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
1: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर दें।
0: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिली सेकेंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Vel Kumar wins silver medal in men's 1,000 meter sprint at World Skating Games in Paraguay. And in men's cricket, fourth T20 international between India and West Indies underway in Hyderabad. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030.

0: शमूलियत की शराइत और इमदाद की शरहों में नजर ऐसानी की है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए ये ऐलानात किए। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस मंजूरी से समाजी तहफ्फुज का तरीकाकार मुस्तहकम होगा और सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के तकरीबन 3,20,00,000 मुस्तफिदीन को इससे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि माजूरी पेंशन स्कीम के तहत अब मुस्तफिदीन के लिए 79 साल की उम्र तक 375 रुपये और 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लिए 625 रुपये होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि बुजुर्ग शहरियों और बेवाओं के लिए पेंशन स्कीमें उनके कुनबे को फायदे की स्कीम के साथ इसी तरह जारी रहेंगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: काबीना ने IDBI बैंक की अहम तंजीमें 9 को भी मंजूरी दी है। मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि भारत सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तंजीमें 9 शुदा इदारे में मुश्तरका तौर पर 34% हिस्सेदारी रहेगी। मरकजी काबीना ने 11,40,000 से ज्यादा अहल रेलवे मुलाजमीन के लिए उनकी कारकर्दगी को तस्लीम करते हुए 78 दिन के कारकर्दगी से मुंसलिक बोनस को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि ये बोनस त्योहारों से पहले अहल रेलवे मुलाजमीन को सालाना तौर पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल भी 78 दिन की उजरत के बराबर ये रकम गैर गजट रेलवे मुलाजमीन को दी जाएगी।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: 78 दिन के लिए हर अहल मुलाजिम को दिया जाने वाला ज्यादा से ज्यादा बोनस 17,951 रुपए है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी की जानिब से IDBI बैंक की स्ट्रेटेजिक तंजीमें 9 की मंजूरी के साथ ही आज भारत की इस्लाहाती पेशरफ्त ने नया संगे मील उबूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत अब बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए बैंक की तरक्की के अगले मरहले की राह हमवार कर रही है, जबकि बैंक में अपनी अकलियती हिस्सेदारी बरकरार रखेगी। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस काम से न सिर्फ बैंकारी के निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी बल्कि बैंकारी खिदमात को आलमी मेयार से भी आगे ले जाने में मदद हासिल होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक तामीरी और कलीदी शराकतदारी की खातिर भारत के अजम का इयादा किया है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के अवाम को वाज़ह फवायद फराहम करना है। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में कनाडा की वजीर खारिजा अनीता आनंद से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के सिलसिले में जारी कोशिशों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने तजारत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबतों समेत अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने बाहमी राबतों में मजबूती की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ये ठोस नतायज में तब्दील होने चाहिए, जिनमें जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदा CEPA के सिलसिले में बातचीत जल्द मुकम्मल होना शामिल है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी नजरियात का तबादला किया। इससे कबल दिन में कनाडा की वजीर खारिजा ने कौमी राजधानी में वजीर खारिजा डॉ एस जयशंकर और हुनरमंदी के फरोख और कारोबार के वजीर मुमलिकत जयंत सिंह से बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की मौसीखी, रक्स, सिनेमा और खान पान दुनिया भर में मुआशरों के साथ मुल्क के मुसलसल राबते का अहम वसीला हैं और जोर देकर कहा है कि मुल्क के सकाफती विरसे को आलमी सतह पर ज्यादा से ज्यादा तस्लीम किया जा रहा है। वजीर आजम ने आज नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के सकाफती राबतों से मुतालिक 3 रोजा बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में एक तहरीरी पैगाम में ये बात कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते में कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, तवानाई के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, सकाफती विरसे को तहफ्फुज़ फराहम

0: अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर दिया है कि भारत और आसियान के दरमियान एक पुरमन मुस्तहकम और आज़ाद भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक वाज़े मफादात मुश्तरक हैं। जनाब सिंह आज नई दिल्ली में आसियान इंडिया दिफाई थिंक टैंक फोरम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसियान भारत के भारत बहरुल काहिल विजन में मरकजी हैसियत रखता है और भारत की मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की पॉलिसी जनूब मशरकी एशिया के साथ मिलकर काम करने से मुतालिक एक तवील मुद्दती अहद है। फोरम के लिए अमली इकदामात का जिक्र करते हुए जनाब सिंह ने बहरी सलामती, कुदरती आफात से निमटने, साइबर खतरात और फरोख पाती टेक्नोलॉजीज पर मरकूज एक मुश्तरका भारत आसियान रिसर्च एजेंडा वजा करने की तजवीज पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में मुनक़िद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर है। भारत के अनंत कुमार वेलकुमार ने पराग्वे के आसनसियों शहर में जारी आलमी स्केटिंग मुकाबलों के मर्दों के 1000 मीटर स्प्रिंट जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। तमिलनाडु के स्केटर बहुत कम फर्क से सोने का तमगा जीतने से चूक गए और दूसरे मकाम पर रहे। 1000 मीटर स्प्रिंट मुकाबले में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने मुकर्ररा दूरी 1 मिनट और 21.922 सेकंड में तय की। सोने का तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ी और आनंद कुमार के दरमियान वक्त का फर्क सिर्फ 4 मिलीसेकंड रहा। मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में खेले जा रहे चौथे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत की जीत के लिए 248 रन का निशाना रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 247 रन बनाए। वेस्टइंडीज के कप्तान ने 102 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 4 ओवर्स में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। काबिना ने समाजी मदद से मुतालिक कौमी प्रोग्राम को मजीद 5 बरस जारी रखने को मंजूरी दी है। उसने माजूरी पेंशन के मुस्तफिदीन के लिए अहलियत की शराइत और इमदाद की शरहों में भी नज़रसानी की है। हुकूमत ने IDBI बैंक की अहम तंजीमें 9 और रेलवे मुलाजिमीन के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ कलीदी शराकत दारी के भारत के अज़्म का इयादा किया है। दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई और सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत ने सऊदी अरब में सिविल बुनियादी ढांचे पर हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया है। उसने इन्हें फौरन रोके जाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र ने 305 तालुकाओं को कहत से मुतासिर करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान चौथा टी20 बैन अल अक्वामी मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
4: So I'll read the message of Honorable Prime Minister. I'm pleased to learn that the Ministry of Culture, through the National Center for the Arts, is organizing an international conference in New Delhi on the theme Bharat's Culture Connections Across the Globe. I warmly welcome the scholars, researchers, diplomats, and other distinguished participants from India and

0: abroad who are participating in this important conference. For centuries, India's civilizational journey has been a story of cultural exchange. Centers of learning, such as Nalanda, strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks, scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Sambor Prey Kuk in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue, where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema, and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: Sachiv ne Brihattar Bharat ke bare mein bataya.
0: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता के दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?
2: सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है। इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे, और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है। तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं। तो भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विभिन्न विचारों और परंपराओं के साथ संवाद किया है, और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं। आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है
1: जी।
2: तो समय के साथ इसमें से अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे, दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया, और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे
1: जी।
2: बल्कि आपसी सिद्धि और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इसी के विषय में।
1: परमेश्वर जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं, और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा जिक्र किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर। जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं। तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
3: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है
1: जी।
3: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहां भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं। विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है, और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया, और उन्होंने मुख्य रूप से, जो मुझे लगता है, कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया
1: जी।
3: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस देश में लाने की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थीं वो

0: ली गई थी, कलाकृतियां थी, पांडुलिपियां थी। तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी धाती, पुराने पुरानी ज्ञान परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है
1: जी।
0: और यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनैतिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित की। और हम जानते हैं कि आज बहुध्रुवीय दुनिया है, ऐसे में भारत भी एक प्रमुख ध्रुव के तौर पर उभर रहा है। ये बहुत सी घटनाओं से हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
1: जी वाधवा जी, भारतीय विचारों और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में थल और समुद्री मार्गों से हुआ था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने सभी सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, व्यापारिक संबंधों की बात हो, या ऐसे कूटनीतिक संबंध हो जिन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना भी आवश्यक हो, उसके लिए भी पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए लगातार समुद्री मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहां तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
2: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है और बौद्ध धर्म ने भी भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है। तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे
1: जी।
2: हम देखें तो इसका सांस्कृत मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बृहत्तर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा भारत का विश्वास है। और सांस्कृतिक की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां आरित की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण इस दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है और भारतीय परंपरा में जो वैसुदेव कुटुंबकम का विचार है इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
1: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है तो बहुत ही कम शब्दों में से समझना चाहें तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है, और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं उनको आगे ले जाने की बात करते हैं।
2: जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य, नाटक और छाया पुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिला

0: नए रूप दिए गए हैं। इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से सीखकर, परिवर्तन स्वीकार करके और नए विचार अपनाकर समृद्ध होती हैं। और भारत ने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी 2014 में, उस समय में विदेश मंत्रालय में सचिव था, और मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमने काफी काम किया और कई देशों को बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसके चलते इन सभी देशों को भारत के साथ फिर से जोड़ने का काफी प्रयास किया था, क्योंकि भारत से बौद्ध विचार कई देशों में पहुंचे थे और बौद्ध भिक्षुओं ने लंबी यात्राएं की थी और विभिन्न देशों में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन के केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया था। अब हम चीन को ही देखें तो चीन से फाहियान और ह्वेनसांग जैसे यात्री
1: जी
0: भारत आए, उनने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया। और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए। तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी मान्यता दे रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था,
1: जी
0: तो इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है।
1: जी पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है। तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूं तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है, या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है, या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
2: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार का प्रचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रसार भी किया। भारतीय लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी, और
1: जी
2: विदेशी जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है। शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं। हुनरमंद भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा के बूते बड़ी और सम्मानजनक जगह बनाई है। ऐसे में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा इम्पोर्टेंस है।
1: जी
2: जैसा आपने बताया कि विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध बृहत्तर भारत के जरिए जानने समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहत्तर भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य, मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है। जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनैतिक संबंधों को नए आयाम देना है। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक वैश्विक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे एक दूसरे से संबंधित देशों के जो बनते हैं, तो केवल भाषाई आधार पर नहीं, साहित्यिक आधार पर नहीं, विकास के और दूसरे जो बुनियादी माध्यम है उनके द्वारा नहीं, एक बहुआयामी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। और भारत सरकार ये काम कर रही है और काफी सफलतापूर्वक कर रही है, ये हम कह सकते हैं।
1: जी वाधवा जी, भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आपने सिल्क रूट का भी जिक्र किया था। आज के समय में जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और एशिया में भी इसका असर देखा जा रहा है, तो साझा इतिहास जो हमारा रहा है बृहत्तर भारत में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे किस नजरिए से आज देख सकते हैं? क्या ये सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा, या इतिहास को वर्तमान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से हम अलग रखें या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
0: बेहतर भारत का एक महत्वपूर्ण

देश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में

0: मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान विशेष महत्व रखता है। कभी विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें आपसी सम्मान और साझा हितों पर बहुत जोर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में, और हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में ये जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा और हमारी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
1: जी पराशर जी, बृहत्तर भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है। तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो?
2: निखिल जी, बृहत्तर भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026 से 2031 के बीच तक चलेगी और इसके बाद इसका कोई दूसरा चरण पर विचार किया जा सकता है। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां तक बात है, तो ये भारत सरकार की बृहत्तर भारत योजना का ही हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य हैं उन्हें पहले समझ लेते हैं।
1: जी
2: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन दाखिल करना भी इसका लक्ष्य है, और एक समर्पित डिजिटल बृहत्तर भारत पोर्टल तैयार करना ताकि वैश्विक स्तर पर इस साझा विरासत को शोधकर्ताओं और आम जनता तक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये सम्मेलन नई दिल्ली में क्यों किया जा रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी जान लें।
1: जी
2: ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद यानी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, काउंसिल नहीं, परिषद के लिए काउंसिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की थी। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए, और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व, व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान प्रणालियां जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार इसका उल्लेख हुआ, इससे संबंधित अध्ययन करना, दर्शन, भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन, मूर्त वास्तुकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही इसका अध्ययन, प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे
1: जी
2: उसका अध्ययन करना, वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता इसकी स्टडी करना, भोजन और पहनावे के माध्यम से

0: संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना, अमूर्त विरासत का संरक्षण करना, जैसे लोक कलाएं हैं, त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति, ये हासिल करना, और समकालीन दौर में यानी आज के दौर में कंटेम्पररी टाइम में सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है।
1: जी वाधवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है, हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
2: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में रहते हैं और मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन देश हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है, क्योंकि वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत, नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु है। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही है। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य, सिनेमा, साहित्य और खानपान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं और भारत की संस्कृति में करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बृहत्तर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना।
1: जी पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं, तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं जहां पर बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों?
0: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से, बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं, लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर, भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से, सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी उल्लेख हुआ, प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी, उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, निल जी ने भी उल्लेख किया। भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य

0: या जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी। रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं आजकल। भारतीय संगीत, नृत्य परंपराएं, खान पान, शाकाहार, संयम, प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु, विदेशी नागरिक उसमें शामिल होने आए। और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं, लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन हैं वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
1: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

हम तुम्हारे हैं सनम। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे कार्तिक अवस्थी ने, धुन बनाई बाली ब्रह्म भट्ट ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म तुम सा नहीं देखा से। दोस्तों कहते हैं ना कि फिल्मी संगीत की दुनिया कुछ इस तरह की है कि उसके कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि कभी हमें हंसाते हैं तो कभी रुला देते हैं, कभी कुछ पुरानी यादों में ले जाते हैं, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनकी धुन बजते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कदम अपने आप थिरकने लगते हैं।

आप सुन रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म तुमसा नहीं देखा में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है ओ पी नैयर ने।

दोस्तों कहते हैं ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके आने से हमारी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। एक अनजान सा रिश्ता धीरे धीरे अपना बन जाता है और फिर वही अपनापन ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी ले आता है। प्रेम सिर्फ बड़े बड़े वादों का नाम नहीं दोस्तों, कभी किसी का ख्याल रखना, उसकी छोटी सी खुशी में अपनी खुशी ढूँढ लेना और कभी बिना कुछ कहे उसके मन की बात समझ जाना, यही तो सच्चे रिश्ते की खूबसूरती है। फिल्म पैडमैन का वो गीत ऐसे ही खूबसूरत एहसास को बयां करता है, जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं और जिंदगी में एक नए सफर की शुरुआत होती है। तो आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म पैडमैन का वो गीत, जिसे लिखा है कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

कहते हैं कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें ही नहीं होती, बल्कि दिल में छुपी हुई कई बातों का जवाब बन जाती हैं। कभी एक नज़र दिल की बात कह देती है, तो कभी एक मुलाकात बरसों की दूरी को मिटा देती है। मोहब्बत में इंतज़ार भी कितना खूबसूरत होता है दोस्तों, जब दिल बस यही कहता है कि एक बार तो सामने आ जाओ, कुछ पल साथ बैठो, दिल की अनकही बातें कह सुन तो लो। और इसी खूबसूरत एहसास को अपने सुरों में समेटे हुए हमारी अगली पेशकश फिल्म सिर्फ तुम की, ये कव्वाली, जिसे आवाज़ दी है अमीन साबरी और फरीद साबरी ने।

फिल्म सिर्फ तुम के इस कव्वाली के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन। आपके साथ तबले पर संगत की है कुबेरनाथ मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन, आपके साथ तबले पर संगत की कुबेरनाथ मिश्र ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण

समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और दो अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपये नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि मामले की आगे का जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रोपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।